निश्चल हब जाना मिथ्या माना, संत प्रभु हो दासा, जीवत मरिय भौजल तरिय, जे थी वह कर्म लिखिया सा, गुर से बीजै अमृत पीजै, जिसला वह सहित्यानो, नानक शरण पया हरिद्वार, हों बलबल सद कुरबानो, सुन बावरे मत जाने प्रभ मैं पाया, सुन बावरे थियो रेण जिनी प्रभ त्याया, जिन प्रभ त्याया तिन सुख पाया, वडभागी दर्शन पाई है, थियो न माना सद कुरबाना, सगलाया मिटाई है, ओह तन भाग सुदा जिन प्रभ लद्दा, हम तिस पाया विचाया, नानक दीन सरन सुख सागर, राख लाज अपनाया, सूही महला पंजवा, हर चरण कमल की टेक, सतगुर दित्ती तुसकै बलराम जियो, हर अमृत भरे भंडार, सब किश है कर तिसकै बलराम जियो, बाबल मेरा वड समर्था, करण कारण प्रभारा, जे सिमरत दुख कोई ना लागे, भौजल पार उतारा, आद जुगाद भगतन का राखा, उस्तत कर कर जीवा, नानक नाम महारस मीठा, अंदन मंतन पीवा, हर आपे लय मिलाए, क्यों विछोड़ा थी वही बलराम जियो, जिसनो तेरी टेक, सो सदा सजी वही बलराम जियो, तेरी टेक तुझे ते पाई, साचे सृजनहारा, जिसते खाली कोई नाही, ऐसा प्रभु हमारा, संत जना मिल मंगल गाया, दिन रैन आस तुम्हारी, सफल दर्श पेटिया गुरपूरा, नानक सद बलिहारी, संभलिया सच थान, मान महत सच पाया बलराम जियो, सतगुर मिलिया दयाल, गुण अबनासी गाया बलराम जियो, गुण गोविंद गाओ नित नित, प्राण प्रीतम स्वामिया, शुभ दिवस आए गह कंठ लाए, मिले अंतर जमिया, सत संतोख वजह वाजे, अनहदा चुनकारे, सुन पै बिनासे, सगल नानक प्रपुरख करने हारे, उपजिया

ठाकुर पाणी सा गुणवंती तिन्ही सब रंग माणा। नानक की तर तू है ठाकुर तू नानक का माणा। हम वारी वन्या कोली वन्या तू पर्वत मेरा ओला राम। हम बल जाई लख लख लख बरिया जिन परम परदा खोला राम। मिटे अंधारे तजे बिकारे ठाकर से मन माना। प्रभ जी पानी पई निकाणी सफल जन्म परवाना। पई अमोली पारा तोली मुक्त जुगत दर खोला। कहो नानक कहो निरपा होई सोप्रभ मेरा ओला। सोही महला पंजवा साजन पुरख सतगुर मेरा पूरा। तिस बने अवर न जाना राम। मात पिता भाई सुत बंदप जी प्राण मन भाणा राम। जियो पिंड सब तिसका दिया सर्व गुणा परपूरे। अंतर जामी सोप्रभ मेरा सर्वरया परपूरे। ताकि सरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याणा। सदा सदा प्रभ कौ बलिहार है नानक सत गुरबाणा। ऐसा गुरबट भाग

हर तूड़ी नाई है प्रभु ते आई है, बाहड़ जोड़ ना आई है, गुरचरणी लागे परंपाव भागे, मन चंदिया फल पाई है, हर गुण नित गाए नाम ते आए, फिर सोग नाही संताप, नानक सो प्रभु जी का दाता पूरा जिस प्रताप, हर हरे हर गुण निधे हर संतन कै वसियाए राम, संत चरण गुर सेवा लागे तिनी परम पद पाए राम, परम पद पाया मिटाया हर पूर्ण कृपा तारी, सफल जन्म होवा पौ भागा हर भेटिया एक मुरारी, जिसका सा तिन्ही मिल लिया ज्योति ज्योत समाया, नानक नाम निरंजन जपिया मिल सतगुर सुख पाया, गाओ मंगलो नित हर जनो पुनी इच सबाई राम, रंग रते अपने स्वामी सेती मरे नया वह जाई राम, अबनासी पाया नाम ते आया सगल मनोरथ पाए, सांत सहज आनंद कनेरे गुरचरणी मन लाए, पूर रहया कटकट अबनासी थान थनंतर साई, कहो नानक कार्य सगले पूरे गुरचरणी मन लाई, सूही महला पंजवा कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी, नेत्र देखे दर्स तेरा राम, लाख जेहवा देहो मेरे प्यारे मुख हरिया राधे मेरा राम, हरिया राधे जम पंथ साधे दुख ना व्यापै कोई, जल थन मयल पूर्ण स्वामी जद देखा तत सोई, परम मोह बेकार नाठे प्रभ नेर हूं ते नेरा, नानक कहो प्रभ कृपा कीजै नेत्र देखै दर्श तेरा, कोट करन दीजै प्रभ प्रीतम हर गुण सुनिए अबनासी राम, सुन सुन एहो मन निर्मल होवै कटिया काल की फासी राम, कटिया जम फासी सिमर अबनासी सगल मंगल सुगयाना, हर हर जप जपिया दिन राती लागै सहित आना, काल मल दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुर्मत नासी, कहो नानक प्रभु कृपा कीजै हर गुण सुनिए अबनासी, करोड़ हस्त तेरी टहल कमावै चरण चले प्रभ मार्ग राम, पव सागर नाव हर सेवा जो चढ़ै तिस तार ग्राम, पव जल तरिया हर हर सिमरिया सगल मनोरथ पूरे, महाबिकार गए सुख उपजे बाजे अनहद तूरे, मन बाहित फल पाए सगले कुदरत की मया पारग, कहो नानक प्रभ कृपा की जय मन सदा चलै तेरे मार्ग, एहो वर एहा वड़ियाई एहो तन होए वडभागा राम, एहो रंग एहो रस भोगा हर चरणी मन लागा राम, मन लागा चरणे प्रभ की सरणे करण कारण गोपाला, सब किश कीता तेरा सब किश तेरा तू प्रभ मेरा मेरे ठाकर दीन दयाला, मोहे निर्गुण प्रीतम सुख सागर संत संग मन जागा, कहो नानक प्रभ कृपा कीनी चरण कमल मन लागा, सूही महला पंजवा हर जपे हर मंदिर साजिया, संत भगत गुण गावै राम, सिमर सिमर

भला संयोग मूर्त पल साचा अब चल निवर खाई जन नानक प्रभय दयाला सर्व कला बने आई। आनंदा वजह नितवाजे पार ब्रह्म मन वूठा राम गुरमुखे सच करनी सारी बिरसे परम पै झूठा राम। अनहद बाणी गुरमुख वखाणी जस सुन सुन मंतन हरिया सर्व सुखा तिस ही बन आए जो प्रभ अपना करया। घर मैं नवनिध परे भंडारा राम नाम रंग लागा नानक जन प्रभ कदे न विसरै पूर्ण जाके पागा।

जिस तू मिलै सो तुद मिलै सोई सचियारा। श्लोक महला तीजा। सूह विए सूहा सब संसार है, जिंदुरमत दूजा पाओ। खिन मैं झूठ सब बिन सजाए, जो टिके ना बिरख की छाओ। गुरमुख लालो लाल है, जो रंग मजीठ सचड़ाओ। उल्टी सख्त सवै कर आई, मन वस्या हर अमृत नाओ। नानक बलिहारी गुरे अपने, जित मिलिया हर गुण गाओ। महला तीजा। सूहा रंग विकार है, कंत न पाया जाए। इस लैंदे बिलम ना हो वही, रंड बैठी दूजै पाए। मुंद एयानी दुमनी सूहै वे सुलभाए, शब्द सच्चा रंग लाल कर पह पाए। सिंगार बनाए नानक सदा सुहागनी, जे चलन सतगुर पाए पौड़ी। आपे आपो पाया ने आप कीमत पाई, तिसदा यंत्रा जा पई गुर शब्द बुझाई। माया मोह गुबार है दूजै परमाई, मन मुख ठौर ना पाई नी फिर आवै जाई। जो तिस पावै सो थीऐ सब चलै रजाई। सलोक महला तीजा। सूहै वेस कामन को लखनी, जो प्रभ छोड़ पर पुरख धरे प्यार। ओस सील ना संजम सदा झूठ बोलै, मन मुख कर्म खुवार। जिस पूर्व होवै लिखिया ते सतगुर मिलै पतार। सूहा वेस सब उतार धरे, गल पहरै खिमा सिंगार। पेयै सहुरै बहु सोभा पाए, तिस पूज करे सब संसार। ओहर लाई किसै दी ना रलै, जिस रावे सृजनहार। नानक गुरमुख सदा सुहागणी, जिस अविनाशी पुरख

रात सब राती सोहागणी एक मैं दोहागण रात पौड़ी दर मंगत जा चैदान हर दी जय कृपा कर गुरमुख लेहो मिलाए जन पावै नाम हर अनहद शब्द बजाए ज्योति ज्योत धर हिरदय हर गुण गाए जय जय शब्द हर जग मैं वरतै आप हर सेती प्रीत कर श्लोक महला पहला जिनी ना पायो प्रेम रस कंत ना पायो साओ सुन्ये कर का पाहुना ज्यो आया त्यों जाओ महला पहला सौ उलामे दिने के राती मिलन सहंस सिफत सलान छड के करंगी लगा हंस फिट अवेहा जीवे आ जित खाई वधाया पेट नानक सच्चे नामिण सबो दुश्मन हेत पौड़ी ढाडी गुण गावे नित जन्म सवारिया गुरमुख सेव सलाहे सच्चा उरतारिया कर दर पावे महल नाम प्यारिया गुरमुख पाया नाम हों गुर कौ वारिया तू आप सवार आप सृजन हारिया श्लोक महला पहला दीवा बलै अंधेरा जाए वेद पाठ मत पापा खाए उगवै सूर न जापै चंद जह ज्ञान प्रगास अज्ञान मिटंत वेद पाठ

कहो कबीर मैं सो गुर पाया, जा का नाओ बबे को। राग सूही बाणी श्री रविदास जीओ की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सहकी सार सुहागन जान है, ताजा मान सुख रलिया मान है, तन मन दे न अंतर रख है, अवरा देखना सुने अपख है, सो कत जाने पीर पराई, जाके अंतर दर्द ना पाई, रहाओ दुखी दुहागन दोए पखहीनी, जे ना निरंतर भगत ना कीनी, पुरस लात का पंथ दुहेला, संगना साथी गवने अकेला, दुखिया दर्द वंद दर आया, बहुत प्यास जवाब ना पाया, कह रविदास शरण प्रभ तेरी, जो जानो त्यों कर गत मेरी, सूही जो दिन आवै सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही, संग चलत है हम्पी चलना, दूर गमन सिरी ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग एना, तैं जीवन जग सच कर जाना, रहाओ जिन जियो दिया सो रिजक अंबरावै, सब कट पीतर हाट चलावै, कर बंदगी शाड मैं मेरा, हृदय नाम समार सवेरा, जन्म सिरानो पंथ ना सवारा, सांझ परी दह दिस अंधियारा, कह रविदास निदान दिवाने, चेतस नाही दुनिया फन खाने, सूही ऊचे मंदर साल रसोई, एक करी फुन रहन ना होई, एहो तन ऐसा जैसे कास की टाटी, जल गयो कास रल गयो माटी, रहाओ भाई बंद कुटंब सहेरा, ओए पी लागे काड़ सवेरा, घर की नार उरै तन लागी, ओ तो पूत पूत कर भागी, कह रविदास सवै जग लूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग सूही बाणी शेख फरीद जी की। तप तप लोहे लोहे हाथ मरो रहो, बावल होई सो सहलो रहो, तैं सह मन में किया रोस, मुझ अवगन सह नाही दोस, तैं साहेब की मैं सार ना जानी, जोबन खोए पाछे पछतानी, रहाओ काली कोयल तू कितगुन काली, अपने प्रीतम के हम बिरह जाली, पिरै बिहून का तैं सुख पाए, जा हुए कृपाल ता प्रभु मिलाए, विदन खूही मुंद अकेली, ना को साथी ना को बेली, कर कृपा प्रभ साध संग मेली, जा फिर देखा ता मेरा अल्लाह बेली, वाट हमारी खरी उडीनी, खन्यो तिखी बहुत पैणी, उस ऊपर है मार्ग मेरा, शेख फरीदा पंथ।

पर सरवर जब उछलै तब तरन दुहेला, हाथ ना लायक सुंबड़ै जल जासी ढोला रहाओ। एक आपी ने पतली सह केरे बोला, दुद्धा थनी ना आवई फिर होए ना मेला। कह फरीद सहेली हो सहो अलाए सी, हंस चल।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद राग बिलावल महला।

अगमा गोचर लाख्या पारा चिंता करो हमारी, जल थल मैयल भरपुर लीना कड़कड़ जोत तुम्हारी। सिख मत सब तुम्हारी मंदिर छावा तेरे, तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहेबा गुण गावा नित तेरे। जी जंत सब सरण तुम्हारी, सर्ब चिंत तुद पासे, जो तुद पावे सोई चंगा। एक नानक की अरदासे, बिलावल महला पहला। आपे शब्द आपे निशान, आपे सुरता आपे जान। आपे कर कर वेखे तान, तू दाता नाम प्रमाण। ऐसा नाम निरंजन देओ, हम जाचक तुम लाखा पेओ रहाओ। माया मोह तरकटी नार, पूंडी कामण कामण यार। राज रूप झूठा दिन चार, नाम मिले चानन अंधियार। चख छोड़ी सहसा नहीं कोए, बाप दिसै वे जात ना होए। एके कहो नाही पौ कोए, करता करे करा वैसोए। शब्द मोए मन मन ते मारिया, ठाक रहे मन साचै तारिया। अवरना सूजै गुर कौ वारिया, नानक नाम रति निस्तारिया। बिलावल महला पहला, गुरबचनी मन सही ध्याने। हर कै रंग रता मन माने, मनमुख परम भुले बौराने। हर बिन क्यों रही है गुर शब्द पछाने। बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई, हर बिन जियारा रह ना सकै। खिन सतगुर बूझ बुझाई रहाओ, मेरा प्रभ बिसरै हमरो दुखाली। सास गिरास जपो अपने हर पाली, सद बैरागन हर नाम निहाली। अब जाने गुरमुख हर नाली, अकथ कथा कहिए गुर पाए। प्रभ आगमा गोचर दे दिखाए, बिन गुर करनी क्या कार कमाए। हम मैं मेड़ चले गुर शब्द समाए, मनमुख विछड़े खोटी रास। गुरमुख नाम मिले साबास, हर कृपा तारी दसन दास। जन नानक हर नाम धन रास। बिलावल महला तीजा, कर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद, त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया। त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया, त्रिग शरीर कुटुंब सहित सिओ। जित हुण खसम ना पाया, पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आवै। अहला जन्म गवाया, दूजा पाव ना दे लिव लागण। जिन हर के चरण विसारे, जग जीवन दाता जन सेवक तेरे। तिनके तैं दुख निवारे, रहाओ तू दयाल दया पदाता। क्या ए जंत विचारे, मुक्त बंद सब तुते होए। ऐसा आख वखाणे, गुरमुख होवै सो मुक्त कहियै। मनमुख बंद विचारे, सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी। सदा रह हर नाले, तिनकी गहन गत कही ना जाई। सच्चा आप सुवारे, परम पुलाणे से मनमुख कहियै। नारो वार ना पारे, जिसनो नजर करे सोई जन पाए। गुर का शब्द संभाले, हर जन माया माहि निस्तारे। नानक भाग होवे जिस मस्तक, काले मार बिदारे। बिलावल महला तीजा, अतुल क्यों तो लिया जाए। दूजा होए ता सोजी पाए, तिसते दूजा नाही कोए। तिसदी कीमत किकू होए, गुर प्रसाद वसै मन आए। ता को जाने दुबदा जाए, रहाओ आप सराप कसवटी लाए। आपे परखे आप चलाए, आपे तोले पूरा होए। आपे जाने को सोए, माया का रूप सब तिस्ते होए। जिसनो मेले सो निर्मल होए, जिसनो लाए लगे तसे आए। सब सच दिखा ले ता सच समाए। आपे लिव तात है आपे, आप आप बुझाए आपे जापे। आपे सतगुर शब्द है आपे, नानक आख सुनाए आपे। बिलावल महला तीजा, साहिब ते सेवको सेव साहिब ते।
क्या को कहे बहाना, ऐसा एक तेरा खेल बनया है समय एक समाना। सतगुर परचय हर नाम समाना, जिस कर्म होवे सो सतगुर पाए, अंधन लागे सही ध्यान ना रहाओ। क्या कोई तेरी सेवा करे, क्या को करे अवमाना, जब अपनी जोत खिंचे तू स्वामी, तब कोई करो दिखा वखियाना। आपे गुर चेला है आपे, आपे गुणी निधाना, जो आप चलाए तवे कोई चाले, जो हर पावे भगवाना। कहत नानक तू साचा साहेब, कौन जाने तेरे कामा, एक ना करमै दे वड़ियाई, एक परम पवै अभमाना। बिलावल महला तीजा, पूरा थाट बनाया पूरा, वेखो एक समाना, इस परपंच में साचे नाम की वड़ियाई, मत को तरो गुमाना। सतगुर की जिसनो मत आवै, सो सतगुर माए समाना, एह बाणी जो जियो जाणै, तिस अंतर रवै हर नामा रहाओ। चहो जुगा का हुण नबेड़ा, नर मनुखा नो एक निधाना, जत संजम तीर्थ ओना जुगा का धर्म है, कल मैं कीर्त हर नामा। जुग जुग आपो अपना धर्म है, सोध देखो वेद पुराना, गुरमुख जिनी ध्याया हर हर जगते पूरे परवाना। कहत नानक सच्चे स्यों प्रीत लाए, चूकै मन अभमाना, कहत सुनत सबे सुख पावै, मानत पाहे निधाना। बिलावल महला तीजा, गुरमुख प्रीत जिसनो आपे लाए, तित घर बिलावल गुर शब्द सुहाए, मंगल नारी गावै आए, मिल प्रीतम सदा सुख पाए। हाँ तिन बलिहार है जिन हर मन वसाए, हर जन को मिलिया सुख पाई है, हर गुण गावे सह सुभाए रहाओ। सदा रंग राते तेरे चाए, हर जो आवसै मन आए, आपे सोभा सद ही पाए, गुरमुख मेले मेल मिलाए। गुरमुख राते शब्द रंगाए, निकर वासा हर गुण गाए, रंग चलू लै हर रस पाए, एहो रंग कदे न उतरै साज समाए। अंतर शब्द मिटिया ज्ञान अंधेरा, सतगुर ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा, जो सच राते तन बौन ना फेरा, नानक नाम दरड़ाए पूरा गुर मेरा। बिलावल महला तीजा, पूरे गुरते वड्याई पाई, अचिंत नाम वस्या मन आई, हाँ मैं माया शब्द जलाई, दर साचे गुरते सोभा पाई, जगदीश सेवो मैं अवर ना काजा, अन दिन अंध होवे मन मेरा, गुरमुख मांगाओ तेरा नाम निवाजा रहाओ। मन की प्रतीत मन ते पाई, पूरे गुरते शब्द बुझाई, जीवन मरण को संसार वेखै, बहु न मरे ना जंपे खै, कर ही मैं सब कोट निधान, सतगुर दिखाए गया अभमान, सद ही लागा सही ध्यान, अंधन गावे एको नाम। इस युग में वड्याई पाई, पूरे गुरते नाम ते आई, जै देखा तरिया समाई, सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई, पूरे भाग गुर पूरा पाया, अंतर नाम निदान दिखाया, गुर का शब्द वत मीठा लाया, नानक तृष्ण बुझी मन तन सुख पाया। राग बिलावल महला चौथा, कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, उद्दम मत प्रभ अंतर जामी, ज्यो प्रेरे त्यों करना, ज्यो नटुआ तंत वजाए तंती, त्यों वाजै जंत जना। जप मन राम नाम रसना, मस्तक लिखत लिखे गुर पाया, हर हृदय हर बसना रहाओ। माया ग्रस्त प्रमत है प्राणी, रख ले वो जन अपना, ज्यों प्रहलाद हर नाक्ष ग्रस्यो, हर राख्यो हर सरना। कवन कवन की गत मित कही है, हर किए पतत पवन्ना, ओह ढोवे ढोर हाथ चम चमरे, हर उदर्यो पर्यो सरना, प्रभ दीन दयाल भगत पवतारनो, हम पापी राख पपना। हर दासन दास दास हम करियो, जन नानक दास दसन्ना। बिलावल महला चौथा,
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਅਗਿਆਨ ਮਤੀ ਸਰਨਾਗਤ ਪੁਰਖਿਆ ਜਨਮਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਰਖ ਲੇਵੋ ਮੇਰੇ ਠਾਕਰੋ ਹਮ ਪਾਥਰਹੀਨ ਅਕਰਮਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮੈ ਰਾਮਾ ਗੁਰਮਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਤਿਆਗੋ ਨਿਫਲ ਕਾਮਾ ਰਹਾਉ ਹਰ ਜਨ ਸੇਵਕ ਸੇ ਹਰ ਤਾਰੇ ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਉਪਮਾ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰ ਜਪਿਐ ਵੱਡੇ ਕਰਮਾ ਨਾਮਹੀਨ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਤੇ ਤਿੰਨ ਵਰ ਦੁਖ ਸਹਮਾ ਓਏ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋਨ ਪਵਾਈਐ ਮੰਦ ਭਾਗੀ ਮੂੜਿਆ ਕਰਮਾ ਹਰ ਜਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਤੁਰ ਪੂਰਬ ਲਿਖੇ ਵਡਕਰਮਾ ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਫਲ ਜਨਮਾ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਮਰਾ ਚਿੱਤ ਲੁਭਤ ਮੋਹਿ ਬਿਖਿਆ ਬਹੁ ਦੁਰਬਤ ਮੈਲ ਪਰਾ ਤੁਮਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਨਾ ਸਕੈ ਪ੍ਰਭ ਹਮ ਕਿਉ ਕਰ ਮੁਗਧ ਤਾਰਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ ਨਰਹਰ ਨਾਮ ਨਰਹਰਾ ਜਾਨੀ ਉਪਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੀ ਮੇਰਾ ਸਤਗੁਰ ਪਾਰ ਪਰਾ ਰਹਾਉ ਹਮਰੇ ਪਿਤਾ ਠਾਕਰ ਪ੍ਰਭ ਸਵਾਮੀ ਹਰ ਦੇਹੁ ਮਤੀ ਜਸ ਕਰਾ ਤੁਮਰਾ ਸੰਗ ਲੱਗੇ ਸੇ ਉਧਰੇ ਜਿਉ ਸੰਗ ਕਾਸ਼ਟ ਲੋਹ ਤਰਾ ਸਾਗਤ ਨਰ ਹੋਛੀ ਮਤ ਮਧਮ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸੇਵ ਨਾ ਕਰਾ ਤੇ ਨਰ ਭਾਗਹੀਨ ਦੋਚਾਰੀ ਓਏ ਜਨਮ ਓਏ ਫਿਰ ਮਰਾ ਜਿਨ ਕਹੋ ਤੁਮ ਹਰ ਮੇਲੋ ਸਵਾਮੀ ਤੇ ਨਾਏ ਸੰਤੋਖ ਗੁਰਸਰਾ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਗਈ ਹਰ ਭਜਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਪਰਾ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਆਵੋ ਸੰਤ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮਿਲ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਕਰੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਬੋਇਥ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਖੇਵਟ ਗੁਰ ਸਭ ਤਰੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਗੁਣ ਹਰ ਉਚਰੋ ਮਸਤਕ ਲਿਖਤ ਰਖੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਪਾਰ ਪਰੋ ਰਹਾਓ ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਾਸੀ ਉਤਮ ਕਿਉ ਪਾਈਐ ਉਪਦੇ ਜਨ ਕਰੋ ਸਤਗੁਰ ਸੇਵ ਸਫਲ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪੀਓ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਮੀਠਾ ਹਰ ਸੰਤੋ ਚਾਖ ਦਿਖਾਓ ਗੁਰਮਤ ਹਰ ਰਸ ਮੀਠਾ ਲਾਗਾ ਤਿਨ ਬਿਸਰੇ ਸਭ ਬਿਖਰਸੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਹਰ ਸੇਵੋ ਸੰਤ ਜਨੋ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਚਾਰੇ ਪਾਏ ਗੁਰਮਤ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜੋ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਕੋ ਜਾਪੈ ਹਰ ਮੰਤਰ ਜਪੈਨੀ ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਪੂਜੋ ਨਿਤ ਸੇਵੋ ਦਿਨ ਸੋ ਸਭ ਰੈਨੀ ਹਰ ਜਨ ਦੇਖੋ ਸਤਗੁਰ ਨੈਨੀ ਜੋ ਇੱਛੋ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੋ ਹਰ ਬੋਲੋ ਗੁਰਮਤ ਬੈਨੀ ਰਹਾਓ ਅਨ ਕਿਉ ਪਾਵ ਚਿਤਵੀਐ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਸਾ ਹੋਵੈ ਜੇ ਬਾਤ ਹੋਵੈ ਨੀ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਭ ਕੋਈ ਬੰਛੈ ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਚਿਤ ਨਾ ਚਿਤੈਨੀ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰ ਜਨ ਇਹਾ ਬਾਤ ਕਠੈਨੀ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੈਨੀ ਮਤ ਸਮਤ ਤੇਰੇ ਵਸ ਸਵਾਮੀ ਹਮ ਜੰਤ ਤੂੰ ਪੁਰਖ ਜਨਤੈਨੀ ਜਨ ਨਾਨਕੇ ਪ੍ਰਭ ਕਰਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਵੈ ਬੁਲੈਨੀ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਅਨਦ ਮੂਲ ਧਿਆਇਓ ਪੁਰਖੋਤਮ ਅਨ ਦਿਨ ਅੰਧ ਅਨੰਦੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੀ ਕਾਣ ਚੁਕਾਈ ਸਭ ਚੁਕੇ ਜਮਕੇ ਛੰਦੇ ਜਪ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦੇ ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਪਾਇਆ ਗੁਣ ਗਾਏ ਪਰਮਾਨੰਦੇ ਰਹਾਉ ਸਾਕਤ ਮੂੜ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬਧਕ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਫਿਰੈ ਫਿਰੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲਤ ਕਿਰਤ ਕੇ ਬਾਂਧੇ ਜਿਉ ਤੇਲੀ ਬਲਦ ਭਵੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵ ਲੱਗੇ ਸੇ ਉਧਰੇ ਵਡਭਾਗੀ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਤਿਨ ਫਲ ਪਾਇਆ ਸਭ ਟੂਟੇ ਮਾਇਆ ਫੰਦੇ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਸਭ ਆਪੇ ਆਪ ਗੋਵਿੰਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਪੇ

एक ओंकार सतगुर प्रसाद, बोलो भैया राम नाम पतत पावनो, हर संत भगतारनो हर भरपुरे रहा, जल थले राम नाम नित गाइए हर दुख बिसारनो रहाओ, हर किया है सफल जन्म हमारा, हर जपया हर दुख बिसार नहारा, गुर भेटिया है मुक्त दाता, हर की हमारी सफल जाता, मिल संगति गुण गावनो मन राम नाम कर आसा, पाओ दूजा बिनस बिनासा, विच आसा होए निरासी, सो जन मिलिया हर पासी, कोई राम नाम गुण गावनो, जन नानक तिस पग लावनो, राग बिलावल महला पंजवा, चौपदे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नदरी आवै तिस्यो मोह, क्यों मिलिया प्रभ नासी तोहे, कर कृपा मोय मार्ग पावो, सात संगत कै अंचल लावो, क्यों तरिय बिख्या संसार, सतगुरु बोहित

हम मैं पचे दीपक देख पतंगा, सगल सिंगार करे नहीं पावे, जा होए कृपाल ता गुरु मिलावे। हाँ फिरो उदासी मैं करत दसाया, निर्मोल हीरा मिले ना उपाया। हर का मंदिर तिसमें लाल, गुर खोलिया पर्दा देख पही निहाल। जिन चाखिया तिस आया साध, जो गूंगा मन में मिसमाद। आनंद रूप सब नदरी आया, जन नानक हर गुण अक्स माया। बिलावल महला पंजवा, सर्व कल्याण किए गुरुदेव, सेव के अपनी लायो सेव। बिघन ना लागे जप अलाख्या पेव, तरत पुनीत पई गुण गाए, दुरत गया हर नाम ते आए रहाओ। सबनी थाई रव्या आप, आद जुगाद जाकावड प्रताप। गुर प्रसाद ना होए संताप, गुर के चरण लगे मन मीठे। निर्विघ्न होए सब थाई बूठे, सब सुख पाए सदगुर तूठे। पार ब्रह्म प्रभ पै रखवाले, जिथे किथे दिसे नाले। नानक दास खसम प्रतपाले, बिलावल महला पंजवा। सुख निदान प्रीतम प्रभ मेरे, अगणत गुण ठाकर प्रभ तेरे। मोहे अनाथ तुमरी सरनाई, कर कृपा हर चरण ते आई। दया करो बसो मन आए, मोहे निर्गुण लीजे लड़ लाए रहाओ। प्रभ चित आवे ता कैसी भीड़, हर सेवक नाही जम पीड़। सर्व दुख हर सिमरत नसे, जाके संग सदा प्रभ बसे। प्रभ का नाम मंतन आधार, बिसरत नाम हो तन शार। प्रभ चित आए पूर्ण सब काज, हर बिसरत सब का मोहताज। चरण कमल संग लागी प्रीत, बिसर गई सब दुर्मत रीत। मन तन अंतर हर हर मंत, नानक भगतन कै कर सदा आनंद। राग बिलावल महला पंजवा, कर दूजा यानड़िए कै कर गावना। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे। मैं मन तेरी टेक, अवर स्याण पा बिरथिया प्यारे। राखण कौ तुम एक रहाओ, सतगुर पूरा जे मिले प्यारे। सो जन होत निहाला, गुर की सेवा सो करे प्यारे। जिसनो होए दयाला, सफल मूर्त गुरदेव स्वामी। सर्व कला पर पूरे, नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर। सदा सदा हजूरे, सुन सुन जीवा सोए तिना की। जिन अपना प्रभ जाता, हर नाम आराधे नाम वखाणे। हर नाम में ही मन राता, सेवक जन की सेवा मांगे। पूरे कर्म कमावा, नानक की बेनंती स्वामी। तेरे जन देखण पावा, वडभागी से काढ़िए प्यारे। संत संगत जिन्ना वासो, अमृत नाम आराधिए निर्मल। मने होवे परगासो, जन्म मरण दुख काटिए प्यारे। चूके जमकी काणे, तना प्राप दर्शन नानक। जो प्रभ अपने पाणे, ऊंच या

आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही घट घट आप लिपना, आपे अवगत आप संगरचना, कहो नानक प्रभ के सब जचना। बिलावल महला पंजवा, पूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरवड भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे, बस रहे हृदय गुरचरण प्यारे। रहाओ काम क्रोध लोभ मोहे मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना, दुख सुख करत जन्म फुरमुआ, चरण कमल गुर आश्रम दिया, अग्न सागर बूढ़ संसारा, नानक बहा पकड़ सतगुर निस्तारा। बिलावल महला पंजवा, तन मन तन अर्पो सब अपना, कमन समत जित हर हर जपना, कर आसा आयो प्रभ मंगन, तो पेखत सोभा मेरा अंगन। रहाओ अनक जुगत कर बहुत बिचारो, साध संग इस मन उधारो, मत बुद्ध सुरत नाही चितराई, ता मिलिया जा ले मिलाई, नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया, कहो नानक सफल सो आया। बिलावल महला पंजवा, मात पिता सुत साथ ना माया, साध संग सब दुख मिटाया, रव रहया प्रभ सब मैं आपे, हर जा प्रसना दुख ना व्यापे। रहाओ तिखा भूख बहुत तप्त व्यापिया, शीतल पय हर हर जस जापिया, कोट जतन संतोख ना पाया, मंत्र बताना हर गुण गाया, देहो भगत प्रभ अंतर जामी, नानक की बेनंती स्वामी। बिलावल महला पंजवा, गुरपुरा वडपागी पाई है, मिल साधु हर नाम ते आई है, पार ब्रह्म प्रभ तेरी सरना, किलवे काटे पज गुर के चरना। रहाओ अवर कर्म सब लोकाचार, मिल साधु संग होए उधार, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, जपिए नाम जित पार उतारे, जन नानक प्रभ कृपा करिए, साधु तूर मिले निस्तरिए। बिलावल महला पंजवा, गुर का शब्द हृदय मैं चीना, सगल मनोरथ पूर्ण आसीना, संत जना का मुख उज्जल कीना, कर कृपा अपना नाम दीना। रहाओ अंध कूपते कर गै लीना, जय जय कार जगत प्रगटीना, नीचा ते ऊंच ऊन पूरीना, अमृत नाम महारस लीना, मन तन निर्मल पाप जल खीना, कहो नानक प्रभ पए प्रसीना। बिलावल महला पंजवा, सगल मनोरथ पाई है मीता, चरण कमल स्यों लाइया चीता, हौ बलिहारी जो प्रभु ते आवत, जलन बुझै हर हर गुण गावत। रहाओ सफल जन्म होवत वडभागी, सा संग्राम लिव लागी, मत पत धन सुख सहज आनंदा, एक निमख ना विसराओ परमानंदा, हर दर्शन की मन प्यास कनेरी, पंत नानक शरण प्रभ तेरी। बिलावल महला पंजवा, मोहे निर्गुण सब गुणे बेहूना, दया तारे अपना कर लीना, मेरा मन तन हर गोपाल सुहाया, कर कृपा प्रभ घर में आया। रहाओ भगत वछल पै कट नहारे, संसार सागर अब उतरे पारे, पतत पावन प्रभ बिरद वेद लेखिया, पार ब्रह्म सो नैनो पेखिया, सासंग प्रगटे नारायण, नानक दास सब दुख पलायण। बिलावल महला पंजवा, कवन जाने प्रभ तुमरी सेवा, प्रभ अविनाशी लाख्या पेवा, गुण बेअंत प्रभ गैर गंभीरे, ऊंच महल स्वामी प्रभ मेरे, तू अपरंपर ठाकुर मेरे। रहाओ एक सबे नाही को दूजा, तुम ही जानो अपनी पूजा, आपो कछु न होवत पाई, जिस प्रभ देवै सो नाम पाई, कहो नानक जो जन प्रभ पाया, गुण निदान प्रभ तिन्ही पाया। बिलावल महला पंजवा, मात गर्मे हाथ दे राखिया, हर छोड़ बिख्या फल चाखिया, भज गो बिंद सब छोड़ जंजाल, जब जम आए संगारे मूड़े, तब तन बिन सजाए बेहाल। रहाओ तन मन तने अपना कर थापिया, करन हार एक निमख ना जापिया, महा मोह अंध कूप परिया, पार ब्रह्म आया पटल बिसरिया,
ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਪ੍ਰਭ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਆ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧ ਭਾਈ, ਨਾਨਕ ਹੋਵਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਹਾਈ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਘਣੇ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਅਨਕ ਗੁਣਾ ਜਾਂ ਕੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਗਣੇ ਰਹਾਓ, ਸਗਲ ਸਰੰਜਾਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ, ਭਏ ਮਨੋਰਥ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪੇ, ਅਰਥ ਧਰਮ ਕਾਮ ਮੋਹ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਪੂਰੀ ਪਈ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਵਿਧਾਤਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ, ਘਰ ਆਇਆ ਪੂਰੇ ਗੁਰਿਆਣਿਆ, ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ।

भला मन लेता मुक्ता, सगल समग्री तेरी आ सब तेरी जूता, चरण पखारो कर सेवा जे ठाकर पावै, हो कृपाल दयाल प्रभ नानक गुण गावै। बिलावल महला पंजवा, मृत हसै श्री उपरे पशुआ नहीं बूझै, बाद साध हंकार में मरना नहीं सूझै, सतगुर सेवो अपना काहे फिर अभागे, देह कुसुम्बा रंगला काहे फूल लागे, रहाओ कर कर पाप दर्पण की कर पाप दर्ब किया, वर्तन कह ताई माटी स्यो माटी रली नांगा उठ जाई, जा कह किया श्रम कर ते बैर विरोधी, अंत काल पा जाहेंगे काहे जलो क्रोधी, दास रेण सोई होवा जिस मस्त कर्मा, कहो नानक बंधन छुटे सतगुर की सरना। बिलावल महला पंजवा, पिंगल पर्वत पार परे खल चतर बकीता, अंदले त्रिपवन सूजिया गुरपेट पुनीता, महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता, मैल खोई कोट अगहरे निर्मल पे चीता, रहाओ ऐसी भगत गोविंद की कीट हस्ती जीता, जो जो कीनो अपनो तेसा पैदान दीता, सिंह बिलाई हो गयो त्रिन मेर दखीता, श्रम करते दम आड़काओ ते गनीत नीता, कमन वडाई कह सकाओ बेअंत गुनीता, कर कृपा मोहे नाम देहो नानक दर सरीता। बिलावल महला पंजवा, आं बुद्ध पर बाद नीत लोभ रसना साद, लपटो कपटो ग्रहे बेदया मिथ्या बिख्याद, ऐसी पेखी नेत्र मैं पूरे गुर प्रसाद, राज मिलख तन जोबना ना मैं बिन बाद, रहाओ रूप तूप सो गंधता कापर पोगाद, मिलत संग पापिष्ट तन होए दुर्गाद, फिरत फिरत मानुख पाया खिन पंगन देहाद, ए अवसर ते चूकिया बहु जोन प्रमाद, प्रभ कृपा ते गुर मिले हर हर बिस्माद, सुख सहज नानक आनंद ताकै पूर्ण नाद। बिलावल महला पंजवा, चरण पए संत बोए था तरे सागर जेत, मार्ग पायो ध्यान मैं गुर दसे पेत, हर हर हर हर हर हरे हर हर हर हेत, उठत बैठत सोबते हर हर हर चेत, रहाओ पंच चोर आगै पगे जब साध संगेत, पूंजी साबत कणो लाभ ग्रह शोभा सेत, निहचल आसन मिटी चिंत नाही डोलेत, परम भुलावा मिट गया प्रभ पेखत नेत, गुण गंभीर गुण नायका गुण कहिया केत, नानक पाया साध संग हर हर अमरेत। बिलावल महला पंजवा, बिन साधु जो जीवना ते तो बिरथारी, मिलत संग सब प्रम मिटे गत पई हमारी, जा दिन पेटे साध मोहे उवा दिन बलिहारी, तन मन अपनो जियारा फिर फिराओ वारी, रहाओ एत छिडाई मोहे ते इतनी दृढ़तारी, सगल रेन एहो मन पया बिनसी अपतारी, निंद चिंद पर दुखना एखन मैं जारी, दया माया अर निकट पेख नाही दूरारी, तन मन शीतल पया।

राग बिलावल महला पंजवा चौपदे दोपदे कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सतगुर शब्द उजारो दीपा बिनस्यो अंधकार तह मंदर रतन कोठड़ी खुली अनूपा रहाओ। बिस्मन बिस्म पय जौ पेखियो कहन न जाए वड्याई मगन पय ऊहा संग माते ओत पोत लपटाई। आल जाल नहीं कछु जंजारा अहम बुद्ध नहीं पोरा ऊचन ऊंचा बीचना खींचा हों तेरा तू मोरा। एक अंकार एक पासारा एक है प्रयापारा एक विस्तीर्ण एक संपूर्ण एक है प्राण आधारा। निर्मल निर्मल सूचा सूचो सूचा सूचो सूचा अंत न अंता सदा बेअंता कहो नानक ऊंचो ऊंचा। बिलावल महला पंजवा बिन हर काम ना आवत है जहां से राच माज तुम लागे ओ मोनी मोहावत है रहाओ। कनक कामनी सेज सोहनी छोड़ खिनै मैं जावत है उर्ज रहे हो इंद्री रस प्रेरे हो बखैठ गौरी खावत है। तिरण को मंदिर साज सवार हो पावक तलै जरावत है ऐसे गढ़ में ऐठ ठीलो फूल फूल क्या पावत है। पंच दूत मूंड पर ठंडे केस गहे फेर आवत है दृष्ट ना आवे अंध अज्ञानी सोए रहे हो मदमावत है। जाल पसार चोग विस्थारी पंखी जोफा हावत है कहो नानक बंधन काटन कहो मैं सतगुर पुरख ते आवत है। बिलावल महला पंजवा हर हर नाम या पारिया मोली प्राण प्यारो मने आधारो चीत चितवाओ जैसे पांत बोली रहाओ। सह समायो ग्रह बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली प्रेम मुख लागो जाओ वट पागो सुहाग हमारो कतो न डोली। रूप ना धूप ना गंध ना दीपा ओत पोत अंग अंग संग मौली कहो नानक प्रेरवी सुहागन अतनी की मेरी बनी खटोली। बिलावल महला पंजवा गोबिंद गोबिंद गोबिंद मई जब ते पेटे साथ दयारा तब ते दुर्मत दूर पही रहाओ। पूर्ण पूर रहे हो संपूर्ण शीतल सां दयाल दई काम क्रोध तृष्णा अहंकारा तंते होए सगल खई। सत संतोख दया धर्म सोच संतन ते हो मंत लई कहो नानक जिन मनो पछानिया तिन कहो सगली सोज पई। बिलावल महला पंजवा क्या हम जी जंत बेचारे वर्ण न साकै एक रोमाई ब्रह्म महेश सिद्ध मुनि इंदिरा। बेअंत ठाकर तेरी गत नहीं पाई क्या कथिया किश कथन न जाई। जह जह देखा तै रया समाई रहाओ जय महाभयान दुख जम सुनिए तह मेरे प्रभ तू है सहाई। शरण परयो हर चरण गए प्रभ गुरु नानक बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवा आगम रूप अविनाशी करता पतत पवित एक निमख जपाई है अचरज सुनियो प्राप्त भेट ले संत चरण चरण मन लाई है। कित विधिया कित संयम पाई है कौ सुरजन के जुगती त्याई है रहाओ। जो मानुख मानुख की सेवा ओ तिसकी लई लई फुन जाई है नानक सरन सरन सुख सागर मोहे टेक तेरो एक नाई है। बिलावल महला पंजवा संत सरन संत टहल करी तंद बंद अर सगल जंजारो अवर काज ते छूट परी रहाओ। सुख सहज अर करो आनंदा गुरते पायो नाम हरी ऐसो हरस बरना सा कहो गुरपूरै मेरी उल्ट धरी। पेख्यो मोहन सब कै संगे ऊन ना काहू सगल भरी पूर्ण पूर रहो कृपा निद कहो नानक मेरी पूरी परी। बिलावल महला पंजवा मन क्या कहता हों क्या कहता जान प्रवीण ठाकुर प्रभ मेरे तिस आग्या क्या कहता रहाओ।
ਅਨ ਬੋਲੇ ਕਉ ਤੁਹੀ ਪਛਾਨੈ ਜੋ ਜੀ ਅਨ ਮੈਂ ਹੋਤਾ ਰੇ ਮਨ ਕਾਏ ਕਹਾਂ ਲਉ ਡਹਿ ਕਹਿ ਜੋ ਪੇਖਤੀ ਸੰਗ ਸੁਨਤਾ ਐਸੋ ਜਾਨ ਭਏ ਮਨ ਆਨੰਦ ਆਨ ਨਾ ਬੀਓ ਕਰਤਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭਏ ਦਯਾਰਾ ਹਰ ਰੰਗ ਨਾ ਕਭੂ ਲਹਿਤਾ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨਿੰਦਕ ਐਸੇ ਹੀ ਚਰ ਪਰੀ ਹੈ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੁਣੋ ਤੁਮ ਭਾਈ ਜਿਉ ਕਾਲਰ ਭੀਤ ਗਿਰੀਐ ਰਹਾਓ ਜੋ ਦੇਖੈ ਛਿਦਰ ਤਉ ਨਿੰਦਕ ਉਮਾ ਹੈ ਭਲੋ ਦੇਖ ਦੁਖ ਭਰੀਐ ਆਠ ਪਹਿਰ ਚਿਤਵੈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੈ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਤ ਚਿਤਵਤ ਮਰੀਐ ਨਿੰਦਕ ਪ੍ਰਭੂ ਭੁਲਾਇਆ ਕਾਲ ਨੇਰੈ ਆਇਆ ਹਰ ਜਨ ਸਿਉ ਬਾਦ ਉਠਰੀਐ ਨਾਨਕਾ ਰਖਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਕਿਆ ਮਾਨਸ ਬਪਰੇ ਕਰੀਐ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਐਸੇ ਕਾਹੇ ਪੂਲ ਪਰੇ ਕਰੈ ਕਰਾਵੈ ਮੂਕਰ ਪਾਵੈ ਪੇਖਤ ਸੁਨਤ ਸਦਾ ਸੰਘਰੇ ਰਹਾਓ ਕਾਜ ਬਿਹਾਜਨ ਕੰਚਨ ਛਾਡਨ ਬੈਰੀ ਸੰਘ ਹੇਤ ਸਾਜਨ ਤਿਆਗ ਖਰੇ ਹੋਵਨ ਕੌਰਾ ਅਨਹੋਵਨ ਮੀਠਾ ਬਿਖਿਆ ਮੈਂ ਲਪਟਾਏ ਜਰੇ ਅੰਧਕੂ ਮੈਂ ਪਰਿਉ ਪਰਾਨੀ ਭਰਮ ਗੁਬਾਰ ਮੋਹੇ ਬੰਦ ਪਰੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਹੋ ਦਯਾਰਾ ਗੁਰ ਭੇਟੈ ਕਾਢੇ ਬਹਾ ਫਰੇ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੰਤਨ ਰਸਨਾ ਹਰ ਚੀਨਾ ਪਏ ਅਨੰਦਾ ਮਿਟਿਆ ਦੇਸੇ ਸਰਬ ਸੁਖ ਮੋਕੋ ਗੁਰਦੀਨਾ ਰਹਾਓ ਇਆਨਪ ਤੇ ਸਭ ਪਈ ਸਿਆਨਪ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਹੱਥ ਦੇ ਰੱਖੈ ਆਪਣੇ ਕਹੋ ਕਾਹੂ ਨਾ ਕਰਤੇ ਕਸ਼ਕੀਨਾ ਬਲ ਜਾਵੋ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧੂ ਕੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਨਾਮ ਲੀਨਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਠਾਗਰ ਪਾਰੋਸੈ ਕਹੂ ਨਾ ਮਾਨਿਓ ਮਨ ਸ਼ੀਨਾ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਦੀਨੋ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲ ਗਈ ਰਹਾਓ

रहाओ। गुर को शब्द मेरा ही अरे बस, हर नाम मन संग धरो, तस्कर पंच निवारो ठाकर, सगलो परमा होम जरो। जो तुम करो सोई पल माने, पावन दुबदा दूर टरो, नानक के प्रभ तुम ही दाते, संत संग ले मोहे उदरो। बिलावल महला पंजवा, ऐसी दीख्या जन स्यो मंगा, तुमरो ध्यान तुम्हारो रंगा, तुमरी सेवा तुम्हारे अंगा रहाओ। जन की टहल संपाखन जन स्यो, उठन बैठन जन कै संगा, जन चर राज मुख माथे लागी, आशा पूर्ण अंत तरंगा। जन पार ब्रह्म जा की निर्मल महिमा, जन के चरण तीर्थ कोट गंगा, जन की तूर कियो मज्जन नानक, जन्म जन्म के हरे कलंगा। बिलावल महला पंजवा, ज्यो पावे त्यो मोहे प्रतपाल, पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु, हम पार्क तुम पिता कृपाल रहाओ। मोहे निर्गुण गुण नाही कोई, पहुंच ना सको तुमरी काल, तुमरी गत मित तुम ही जानो, जियो पिंड सब तुमरो माल। अंतरजामी पुरख स्वामी, अन बोलत ही जानो हाल, तन मन शीतल होए हमारो, नानक प्रभ जियो नदर निहाल। बिलावल महला पंजवा, राग सदा प्रभ अपने साथ, तू हमरो प्रीतम मन मोहन, तुझ बिन जीवन सगलिया काथ रहाओ। रंक तेराओ करत खिन पीतर, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, जल तगन मैं जने आपो धारे, करे अपने दे राखे हाथ। शीतल सुख पायो मन तृपते, हर सिमरतो श्रम सगले लाथ, निर्दान नानक हर सेवा, अवर सियानप सगलिया काथ। बिलावल महला पंजवा, अपने सेवको कबो ना बिसारो, उरला गोस्वामी प्र मेरे, पूर्व प्रीत गोबिंद विचारो रहाओ। पतत पावन प्रभ बिर तुम्हारो, हमरे दुख हृदय मत तारो, जीवन प्राण हर तन सुख तुम ही, हम मैं पटल कृपा कर जा रहो। जल बिहून मीन कत जीवन, दूध बिना रहन कत बारो, जन नानक प्यास चरण कमलन की, पेख दर्श स्वामी सुख सारो। बिलावल महला पंजवा, आगे पाछे कुशल भया, गुरपुरे पूरी सब राखी, पार ब्रह्म प्रभ की नी माया रहाओ। मन तन रव रहया हर प्रीतम, दुख दर्द सगला मिट गया, सांत सहजया नंद गुण गाए, दूत दुष्ट सब होए खया। गुण अवगन प्रभ कछ ना बिचार्यो, कर कृपा अपना कर लया, अतुल बड़ाई अचुत बनासी, नानक उचरै हर की जया। बिलावल महला पंजवा, बिन पै भगती तरन कैसे, करो नगरो पतो धारनो, राग स्वामी आप भरोसे रहाओ। सिमरन नहीं आवत फिरत मद मावत, बिख्या राता स्वान जैसे, औध बिहावत अधिक मोहावत, पाप कमावत बुढ़े ऐसे। शरण दुख पंजन पुरख निरंजन, साधु संगत रवन जैसे, केशव कलेस नास अग खंडन, नानक जीवत दर्श दिसे। राग बिलावल महला।

वेद पुकारै भगत स्रोत सुन सुन मानै वेखै जोत शास्त्र सिमरत नाम दृढ़ा मंग गुरमुख सात उत्तम करावं मनमुख जोनी दुख सहावं बंधन टूटे एक नाम सामंग मन्ने नाम सच्ची पद पूजा किस वेखा नाही को दूजा देख कहो भावै मन सोए नानक कहै अवर नहीं कोए बिलावर।

आए तन तन कलातो सब देख अब महन्ना बिन नावै किछ संग ना जाना रहाओ कीचे रस भोग खुशियां मन केरी तन लोका तन पसमै टेरी खाकू खाक रलै सब फैल बिन शब्द नहीं उतरै मैल गीत राग कंताल से कूरे त्रिगुण उपजे बिन से दूरे दूजी दुरमत दर्द ना जाए छूटै गुरमुख दारू गुण गाए तोती उजल तिलक गल वाला अंतर क्रोध पड़े नाटशाला नाम विसार माया मद पिया बिन गुर भगत नाही सुखथिया सूकर स्वान गर्दप मंजारा पशु मलेश नीचंडाला गुर ते मोह फेरे तन जोन पवाई है बंधन बांध्या है जाइय गुर सेवा तेल है पदार्थ हृदय नाम सदा कृतार्थ साची दरगह पूछना होए माने हुक्म सी जैदर सोए सतगुर मिले तां तिसको जाने रहर जाई हुक्म पछाण सच्चा दरवास काल बिकाल शब्द पै नास।

गुण रवै गुण संग्रह ज्योति ज्योत में लाए। इस युग में विरले ब्राह्मण ब्रह्म बिंदै चित लाए। नानक जिन को नजर करे हर सच्चा से नाम रहे लिवलाए। महला तीजा सतगुर की सेवना कीतिया शब्द ना लगो पाओ। हम मैं रोक मावना अदीर्घ बहु सुआओ। मन हठ कर्म कमाव दे फिर जोनी पाए। गुरमुख जन्म सफल है जिसनो आपे लय मिलाए। नानक नदरी नदर करे ता नाम तन पल्लै पाए पौड़ी। सब वड्याइया हर नाम विच हर गुरमुख त्याई है। जे वस्त मंगी है साई पाई है। जे नाम चित लाई है गोहज गल जी की चै सतगुरु पास। ता सर्व सुख पाई है गुरपुरा हर उपदेश दे। सब भुख लै जाई है जिस पूर्व होवै लिखिया सो हर गुण गाई है। सलोक महला तीजा सतगुर ते खाली को नहीं मेरा प्रभ मेल मिलाए। सतगुर का दर्शन सफल है जिहा को इच्छे तिहा फल पाए। गुर का शब्द अमृत है सब तृष्णा भुख गवाए। हर रस पी संतोख होवा सच वस्या मन आए। सच ते आए अमरा पद पाया अनहद शब्द बजाए। सचो दैद पसरिया गुर कै सह सुवाए। नानक जिन अंदर सच है से जन छपै ना किसै देश पाए। महला तीजा गुर सेवा ते हर पाई है जा को नदर करे। मानस ते देवते पए सच्ची भगत जिस दे। हाँ मैं मार मिलायन गुर कै शब्द सोचे। नानक सह जे मिल रहे नाम वड्याई दे पौड़ी। गुर सतगुर विच नाम है की वड्डी वड्याई। हर करतै आप वधाई सेवक सिख सब वेख वेख जीवन। ओना अंदर हिरदै पाई निंदक दुष्ट वड्याई वेख ना सकन। ओना प्राया भला ना सुखाई क्या होवै किसी दी। क्या होवै किसी की चख मारी जा सच्चे स्यों बने आई। जे गल करते पावै सा नित नित चढ़ै सवाई। सब चख चख मरै लोकाई। सलोक महला तीजा त्रिग एह आसा दूजे भाव की जो मोहे माया चित लाए। हर सुख पल्लर त्यागिया नाम विसार दुख पाए। मन मुख अज्ञानी अंधले जन्म मरै फिर आवै जाए। कार्य सिद्ध न होवनी अंत गया पछताए। जिस कर्म होवै तिस सतगुर मिलै सो हर हर नाम ते आए। नाम रते जन सदा सुख पाए न जन नानक तन बल जाए। महला तीजा आसा मनसा जग मोहनी जिन मोया संसार। सब को जम के चीरे विच है जेता सब आकार। हुक्मी ही जम लगदा सोबरै जिस बख्शै करतार। नानक गुर प्रसादी हो मंतांतर है जा छोड़ै हंकार। आसा मनसा मारे निरास होए गुर शब्दी विचार पौड़ी। जिथे जाइए जगत मैं तिथे हर साई अगै सब आपे वरतदा हर सच्चा न्याई। कूड़ यारा के मोह फिटकी सच भगत वड्याई। सच साहेब सच्चा न्याओ है सिर निंद कशाई। जन नानक साचा राध्या गुरमुख सुख पाई। सलोक महला तीजा पूरे भाग सतगुर पाई है। जे हर प्रभस करे ओ पावा सिरे ओ पाओ है ना प्राप्त होए। अंदर शीतल सांत है हृदय सदा सुख होए। अमृत खाना पहनना नानक नाए वड्याई होए। महला तीजा ए मन गुर की सिख सुन पाए गुणी निधान। सुखदाता तेरा मन वसै हो मैं जाय मान। नानक नदरी पाई है अमृत गुणी निधान पौड़ी। जितने पात सहा सहा राजे खान उमराव सिकदार है। तितने सब हर के किए जो किश हर करावे सो ओए करे। सब हर के अर्थी है सो वैसा हर सबना का प्रभ सदगुर कै वल है।
ਤਿੰਨ ਸਭ ਵਰਨ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗੋਲੇ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣ ਕਉ ਦੀਏ ਹਰ ਸੇਵੇ ਕੀ ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖੋ ਹਰ ਸੰਤੋ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੂਤ ਸਮਾਰ ਕਢੀਏ ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਵਾ ਭਗਤ ਜਨਾ ਉੱਪਰ ਹਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹਰ ਆਪ ਰੱਖ ਲਈਏ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਧਿਆਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਦੁੱਖ ਵਿਚਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਦੁੱਖ ਵਰਤੈ ਦੁੱਖ ਆਗੈ ਕਰਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੀਐ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੈ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜੇ ਸੁਖ ਹੋਏ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰੰਪੋ ਭਾਗੈ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਹਰ ਰੰਗ ਹੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਉ ਮਨ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਖਣ ਬੋਲਣਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਤਿਮਰ ਅਗਿਆਨਾ ਦੇਰ ਚੁਕਾਇਆ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਮਨਮੁਖ ਮੈਲੇ ਮਰੈ ਗਵਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਰਾਖਿਆ ਉਰਤਾਰ ਪੰਡਤ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਜਨ ਪਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੋ ਹਉ ਮੈਂ ਮਲ ਜਾਈ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾ ਦੁਖ ਵਿਆਪੇ ਸਿਰ ਧੰਦਾ ਨਿਤ ਮਾਰ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਸੂਤੇ ਕਬੋ ਨਾ ਜਾਗੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤ

जोगी जंगम सन्यासी भुले बिन गुर तत ना पाया। मन मुख दुखी है सदा भ्रम भुले तिन्नी बिरथा जन्म गवाया। नानक नाम रते सही जन सम दे जे आपे बख्श मिलाया। महला तीजा नानक सो साला ही है जिस विच सब किश होए तिसै सिरे वो प्राणी हो तिस बिन अवर ना कोए। गुरमुख अंतर मन वसै सदा सदा सुख होए पौड़ी। जिन्नी गुरमुख हर नाम ताना खटे ओ से देवालिये जुग माहे। कोई मंग दे फिरै सब जगत मैं कोई मोह थुक ना तिन को पाहे। पराई बखीली करहै अपनी परतीत खोवन सगवा पिया पलखाहे। जिस तन कारण चुगली करै सो तन हथ ना आवै। जिस तन कारण चुगली करै सो तन चुगली हथ ना आवै। ओए पावै तिथै जाहे गुरमुख सेवक पाए हर तन मिलै तिथों कर्महीन लै ना सकै। होर थै देश दिसंतर हर तन नाहे श्लोक महला तीजा। गुरमुख संसा मूल ना होवई चिंता विच्चों जाए। जो किश होए सो सहजे होए कहना किछु ना जाए। नानक तिनका आख्या आप सुने जे लयन पन्ने पाए महला तीजा। काल मार मनसा मनै समाणी अंतर निर्मल नाओ। अंधन जागै कदे ना सोवै सहजे अमृत पियाओ। मीठा बोलै अमृत बाणी अंदर हर गुण गाओ। निज घर वासा सदा सोहंदे नानक तिन मिलिया सुख पाओ पौड़ी। हर तन रतन जिवेहरी सो गुर हर तन हर पासो देवाया। जे किसै केहो दिस आवै तां कोई केहो मंग लै। अकै कोई केहो देवाए एहो हर तन जोर कीते किसै नाल ना जाए वंडाया। जिसनो सतगुर नाल हर सरदा लाए तिस हर तन की वंड हथ आवै। जिसनो करतै तुर लिख पाया इस हर तन का कोई शरीक नाही। किसै का खत नाही किसै कै सीव बन्नै रोल नाही। जे को हर तन की बखीली करे तिसका मोह हौर चौ कुंडा विच काला कराया। हर के दिते नाल किसै जोर बखीली ना चलई। देहो देहो नित नित उचड़ै सवाया श्लोक महला तीजा।

भावे सो होए पौड़ी, पार ब्रह्म दयाल सागर तारिया, गुरपुरे मेहरवान परम पव मारिया, काम क्रोध विकराल दूत सब हारिया, अमृत नाम निधान कंठे उर तारिया, नानक साधु संग जन्म मरण सवारिया, सलोक महला तीजा, जिन्नी नाम विसारिया, कूड़े कहन कहन पंच चोर तिन्ना कर मोहन, हम मैं अंदर सन साकत मुठे दुरमति, हर रस ना जानन, जिन्नी अमृत परम लुटाया, बिकसो रचै रचन, दुष्टा सेती परहड़ी, जन सिउ वाद करन, नानक साकत नरक मैं जंबदे दुख सहन, पया किरत कमाम दे जिव राखै तवै रहन, महला तीजा, जिन्नी सतगुर सेवया, तान निताने तिस, सास ग्रास सदा मन वसै, जम जोहे न सकै तिस, हिरदय हर हर नाम रस, कबला सेवक तिस, हर दासा का दास होए, परम पदार्थ तिस, नानक मंतन जिस प्रभ वसै, हौं सतगुर बाणै तिस, जिनको पूर्व लिखिया, रस संत जना स्यों तिस पौड़ी, जो बोले पूरा सतगुरु, सो परमेसर सुनिया, सोई वर्तिया जगत मैं कट कट मुख पणिया, बहुत वडियाइया साहेब है, नै जाही गणिया, सच सहज आनंद सतगुरु पास सच्ची गुरमणिया, नानक संत सवारे पार ब्रह्म सच्चे ज्यों बणिया, सलोक महला तीजा, अपना आप ना पछाणई, हर प्रभ जाता दूर, गुर की सेवा विसरी क्यों मन रह हजूर, मन मुख जन्म गवाया झूठे लाल चकूर, नानक बख्श मिलाया न सच्चे शब्द हदूर, महला तीजा, हर प्रभ सच्चा सोहेला गुरमुख नाम गोविंद, अंध नाम सलाहना हर जपया मन आनंद, बड़ भागी हर पाया पूर्ण परमानंद, जन नानक नाम सलाहया बहुन नमन तन पंग पौड़ी, कोई निंदक होवै सतगुरु का फिर शरण गुर आवै, पिछले गुने सतगुर बख्श लए सतसंगत नाल रलावै, ज्यो मीहे उठे गलियां नालियां टोबियां का जल, जाए पवै विच सुरसरी, सुरसरी मिलत पवित्र पावन होए जावै, ए वड्याई सतगुर निरवैर विच जित मिले तिसना भुख उतरै, हर सांत तड़ियावै, नानक हो अचरज देखो मेरे हर सच्चे साहका, जे सतगुरु नो मन्नै सो सबना पावै, सुध बिलावल बाणी भगतां की, कबीर जियो की एक ओंकार, सतनाम करता पुरख गुरप्रसाद, ऐसो संसार पे

है रे, मानस बपरा मूसा कीनो मीच बलैया खई है रे, तनवंतार निरतन मने ताकी कछु ना कानी रे, राजा प्रजा समकर मारे ऐसो काल बडानी रे, हर के सेवक जो हर पाए तिन की कथा निरारी रे, आवे ना जाए ना कब हूं मरते पार ब्रह्म संगारी रे, पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया एह तजो जी जानी रे, कहत कबीर सुनो रे संतो मिल है सारंग पानी रे, बिलावल विद्या ना परो बाद नहीं जानो, हर गुण कथत सुनत बौरानो, मेरे बाबा मैं बौरा सब खलक सियानी मैं बौरा, मैं बिगड़ियो बिगड़े मत औरा, रहाओ आपन बौरा राम कियो बौरा, सतगुर जार गयो प्रमोरा, मैं बिगड़े अपनी मत खोई, मेरे परम पूलो मत कोई, सो बौरा जो आप ना पछाने, आप पछाने ता एक कह जाने, अबे ना माता सो कबो ना माता, कह कबीर रामै रंग राता, बिलावल गृहो जबान खंड जाइए चुन खाइए कंदा, अजो बेकार ना छोड़ई पापी मन मंदा, क्यों छूटो कैसे तरो पाव जल निद पारी, राख राख मेरे बीठला जन शरण तुम्हारी, रहाओ बिखे बिखे बिखे बिखे की बसना, तजी ने जाई अनक जतन कर राखिए फिर लपटाई, जरा जीवन जोबन गया किशकिया ना निका, एहो जियरा निर्मोल को कौडी लग मीका, कहो कबीर मेरे माधवा तू सर्वव्यापी, तुम समसर नाही दयाल मोहे समसर पापी, बिलावल नित उठ कोरी गागर आने लीपत जियो गयो, ताना बाना कशुना सूजै हर हर रस लपटो, हमारे कुल कौने राम कयो, जब की माला लई निपूते तब ते सुख ना पयो, रहाओ सुनो जेठानी सुनो देरानी, अचरज एक पयो सात सूत इन मुंडिये खोए, एहो मुंडिया क्यों नाम यो, सर्व सुखा का एक हर स्वामी सो गुर नाम दयो, संत प्रहलाद की पै जन राखी हर नाक्ष नख विदरियो, कर के देव पितर की छोड़ी गुर को शब्द लयो, कहत कबीर सगल पाप खंडन संत लै उदरियो, बिलावल को हर समान नहीं राजा, ए भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवा जा, रहाओ तेरो जन होए सोए कत डोले, तीन पवन परशा जा, हाथ पसार सके को जन को बोल सके ना अंदाजा, चेत या चेत मूड मन मेरे बाजे अनहद बाजा, कह कबीर संसा भ्रम चूको त्रू प्रहलाद निवाजा, बिलावल राख लिहो हमते बिगरी, सील धर्म जब भगत ना कीनी हाँ अभमान टेढ़ पगरी, रहाओ अमर जान संचिए काया ए मिथ्या काची गगरी, जिन्हें निवाय साज हम किए तिसे विसार अवर लगरी, संदक तोहे साध नहीं कहियो शरण परे तुमरी पगरी, कह कबीर ए बिनती सुनियो मत कालो जमकी खबरी, बिलावल दर मांदे ठंडे दरबार, तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजे खोल के वार, रहाओ तुम तन तनी उदार त्यागी, श्रवणन सुनियत सुजस तुमार, मंगों का हे रंक सब देखो तुम ही ते मेरो निस्तार, जय देव नामा बिप सुदामा तिन कहो कृपा पई है अपार, कह कबीर।

कै पाए पवै पेख तारी। आसन पवन दूर कर बवरे छोड़ कपट नित हर भज बवरे रहाओ। जे तू जाचै सोत्र पवन भोगी कह कबीर केसो जग जोगी। बिलावल इन माया जगदीश गुसाई तुमरे चरण बिसारे किंचित प्रीत न उपजै जन कहो। जन कहां करै बेचारे रहाओ। त्रिग तानो त्रिग तानो त्रिग एह माया त्रिग त्रिग मत बुद्ध फनी। इस माया कहो दृढ़ कर रखो बांधे अब चनी। क्या खेती क्या लेवा देई परपंच झूठ गुमाना कह कबीर ते अंत बगूते आया काल निदाना। बिलावल शरीर सरोवर पीतरे आछै कमल्यानूप परम ज्योत परमोत परखोतम जा कह रेख न रूप। रे मन हर पज प्रम तजो जग जीवन राम रहाओ। आवत कछु न दिसई नह दिसै जात जह उपजै बिनसै तही। जैसे पुरवन पात मिथ्या कर माया तजी सुख सहज विचार। कह कबीर सेवा करो मन मंज मुरार। बिलावल जन मरण का भ्रम गया गोविंद लिव लागी जीवत सुन समानिया गुरसाखी जागी रहाओ। काशी ते तोनी उपजै तुन काशी जाई काशी फूटी पंडता तुन कहां समाई। त्रिगुटी संद मैं पेखिया कट हूं कट जागी ऐसी बुद्ध समाचरी कट माहे त्यागी। आप ते जानिया तेज तेज समाना कहो कबीर अब जानिया गोविंद मनमाना। बिलावल चरण कमल जा कर दे बसै सो जन क्यों डोलै देव। मानो सब सुख नव निदता कै सहज सहज जस बोलै देव रहाओ। तब एह मत जो सब मैं पेखै कुटल गांठ।

कहे कबीर में ना मेरा मन मानिया राम प्रीत की ओ लै देव। बिलावल बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सफल जन्म मोको गुर कीना दुख बिसार सुख अंतर लीना। ज्ञान अंजन मोको गुर दीना राम नाम बिन जीवन मन हीना रहाओ। नाम दे सिवरन कर जाना जग जीवन स्यों जियो समाना। बिलावल बाणी रविदास भगत की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दार्द देख सब को हसै ऐसी दशा हमारी। अष्ट दशा सिद्ध कर तलै सब कृपा तुम्हारी। तू जानत मैं किछ नहीं।

एको ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद। राग गोंड चौपदे महला चौथा कर पहला। जे मन चित आस रखे हरि उपर ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाई। हर जाने सब किश जो जिए वरतै प्रभ कालिया किसै का एक तिल ना गवाई। हर दिस की आस की जय मन मेरे जो सब मैं स्वामी रहा समाई। मेरे मानो आसा कर जगदीश गुसाई। जो बिन हर आस अवर काहू की जय साने फल आस सब वृथी जाई रहाओ। जो दिसै माया मोह कुटंब सब मत तिसकी आस लग जन्म गवाई। इनके किश हाथ नहीं कहां करे एह बपड़े इनका वाहया कश ना वसाई। मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की। जो तुझ तारे तेरा कुटंब सब छड़ाई। जे किश आस अवर करह पर मित्री मत तू जाने तेरे कित कम आई। यह आस पर मित्री पाओ दूजा है खिर मैं झूठ बिनस सब जाई। मेरे मन आसा कर हर प्रीतम साचे की। जो तेरा कालिया सब थाए पाई। आसा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी। जैसी तू आस करावे तैसी को आस कराई। किश किसी के हाथ नहीं मेरे स्वामी ऐसी मेरे सतगुरु बुझ बुझाई। जन नानकी आस तू जाने हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई। गोंड महला चौथा। ऐसा हर सेवी है नित्याई है जो खिन मैं किले विखो सब करे बिनासा। जे हर त्याग अवर की आस की जय ता हर नेफल सब काल गवासा। मेरे मन हर सेवो सुखदाता स्वामी जित सेव है सब भूख लहसा। मेरे मन हरि उपर की जय परवासा। जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी हरि अपनी पैज रखे जन दासा रहाओ। जे अपनी बिरथा कहो अवरा पहे ताया गए अपनी बिरथा बह बहुत कटासा। अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पह जो तुमरे दुख तत्काल कटासा। सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पह कहिए अवरा पह कहे मन लाज मरासा। जो संसार है के कुटंब मित्र भाई दिसै मन मेरे ते सब अपने स्वाय मिलासा। जे दिन

निमाने कहो जो दे तो मान, सगल भूखे को करता दान, गर्भ कोर मैं रखन हार, ते ठाकर कहो सदा नमस्कार। ऐसो प्रभ मन माहे ते आए, काटे आव काट जत कत सहाय रहाओ। एक रंक राव जा कै एक समान, कीट हस्त सगल पुराण, बियो पूछना मसलत तरे, जोगश करे सो आपे करे। जा का अंतना जान सकोए, आपे आप निरंजन सोए, आप आकार आप निरंकार, घट घट घट सब घट आधार। नाम रंग भगत पै लाल, जस करते संत सदा निहाल। नाम रंग जन रहे अगाए, नानक तिन जन लागे पाए। गुंड महला पंजवा, जा कै संग एहो मन निर्मल, जा कै संग हर हर सिमरन, जा कै संग किल बिख होहे नास, जा कै संग हृदय प्रगास। से संतन हर के मेरे मीत, केवल नाम गाइए जा कै नीत। रहाओ जा कै मंत्र हर हर मन वसै, जा कै उपदेश परम पवन सै। जा कै कीर्त निर्मल सार, जा कीरेन बांछे संसार। कोट पतत जा कै संग उधार, एक निरंकार जा कै नाम आधार। सर्व जिया का जन पेओ, कृपा निधान निरंजन देओ, पार ब्रह्म जा पै कृपाल। तब पेटे गुरसा दयाल, दिन रहन नानक नाम ते आए, सुख सहज आनंद हरन आए। गोंड महला पंजवा, गुर की मूर्त मन में ध्यान, गुर के शब्द मंत्र मन मान। गुर के चरण हृदय लै तारा, गुर पार ब्रह्म सदा नमस्कार। मत को परम

जन्म मरण की त्रास मिटाई, गुरपूरे की बेअंत वडाई, गुरप्रसाद ऊर्द कमल विगास, अंधकार मैं भया प्रगास, जिन किया सो गुर ते जानिया, गुर कृपा ते मुग्ध मन मानिया, गुर करता गुर करना जोग, गुर परमेश्वर है पी होग, कहो नानक प्रभ यह जनाई, बिन गुर मुक्त ना पाईए पाई, गोंड महला पंजवा, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई न मिट दात, गुर परमेश्वर एको जान, ज्योत पावे सो प्रवान, रहाओ गुर चरणी जाका मन लागे, दुख दर्द प्रमता का भागे, गुर की सेवा पाए मान, गुर उपर सदा कुर्बान, गुर का दर्शन देख निहाल, गुर के सेवक की पूर्ण काल, गुर के सेवक को दुख ना व्यापै, गुर का सेवक दे दे जापै, गुर की महिमा कथन ना जाए, पार ब्रह्म गुर आसमाए, कहो नानक जाके पूरे भाग, गुर चरणी ता का मन लाग, गोंड महला पंजवा, गुर मेरी पूजा गुर गोबिंद, गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत, गुर मेरा देओ अलाखा पेओ, सर पूचरण गुर सेओ, गुर बिन अवर नाही मैं थाओ, अंधन जपो गुरु गुर नाओ, रहाओ गुर मेरा ज्ञान, गुर दै ध्यान, गुर गोपाल पुरख भगवान, गुर की शरण रहो कर जोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर बोइथ तारे पवपार, गुर सेवा जमते छुटकार, अंधकार मैं गुरमंत्र उजारा, गुर कै संग सगल निस्तारा, गुर पूरा पाईए वडभागी, गुर की सेवा दुख ना लागी, गुर का शब्द ना मेटै कोए, गुर नानक नानक हर सोए, गोंड महला पंजवा, राम राम शंकर व्यवहार, राम राम राम प्राण आधार, राम राम राम कीर्तन गाए, रमत राम सबरे उसमाए, संत जना मिन बोलो राम, सब ते निर्मल पूर्ण काम, रहाओ राम राम तन संच पंडार, राम राम राम कर्याहार, राम राम विसर नहीं जाए, कर कृपा गुर दिया बताए, राम राम राम सदा सहाय, राम राम राम लिवलाए, राम राम जप निर्मल पै, जन्म जन्म के किल बिख गए, रमत राम जन्म मरण निवारे, उचरत राम पै पार उतारे, सब ते ऊच राम प्रगास, निस्बासर जप नानक दास, गोंड महला पंजवा, उनको खसम कीनी ठाक हारे, दास संगते मार बेदारे, गोविंद भगत का महल ना पाया, राम जना मिल मंगल गाया, सगल श्रेष्ठ के पंच सिकदार, राम भगत के पानी हार, रहाओ

सिमरत शास्त्र वेद पुराण पार ब्रह्म का करै वख्याण। जोगी जति वैष्णो रामदास मित नाही ब्रह्म अविनाश करण पलाहा करै शिवदेव तिल नहीं बूझे अलख्या पेव प्रेम भगत जिस आपे दे जग में विरले के ही के मोहे निर्गुण गुण किशु नाहे सर्वनिधान तेरी दृष्टि माहे नानक दीन जाचे तेरी सेव कर कृपा दीजे गुरुदेव गोंड।

जिस कौ राखै सिरजनहार चख मारो सगल संसार प्रभ अपने का पया विश्वास जियो पिंड सब तिसकी रास नानक को उपजी प्रतीत मनमुख हार गुरमुख सद जीत गोंड महला पंजवा नाम निरंजन नीर नारायण।

देख इस मरते कहो जे को रोवे जो रोवे सोई पत खोवे। गुर प्रसाद मैं डगरो पाया जीवन मरण दो मिटवाया। कहो कबीर एहो राम की अंश जस कागत पर मिटे ना मंस गोंड। टूटे तागे निखुटी पान द्वार ऊपर चिलकावे कान। कूच बिचारे फूए फाल या मुंडिया सरचंड बोकाल। एहो मुंडिया सगलो दरब खोई आवत जात नागसर हो।

पादं मन छोड़ छोड़ सगल भेदं सिमर सिमर गोबिंदं भज नामा तरस पव सिंदं गोंड नाद प्रमे जैसे मिर गाए प्राण तजे वाको ध्यान न जाए ऐसे रामा ऐसे हेराओ राम छोड़ चित अंत ना फेराओ रहाओ ज्यो मीना हेरै पशुआरा सोना गढ़ते हरै सुनारा ज्यो बिखई हेरै परनारी कौडा डारत हरै जुआरी जय जय देखो तै तै रामा हर के चरण नित त्यावै नामा गोंड।

नर ते सुर होए जात निमुख मैं सतगुर बुद्ध सिखलाई नर ते उपज सुरग कौ जीते ओ सो अवखद मैं पाई जहां जहां तू नारद टेकै नैकट कावो मोहे तेरे नाम अवलंब बहुत जन उदरे नामे की निजमत एहे गोंड मोहे लागती ताला बेली बछरे बिन गाय अकेली पानिया बिन मीन तलफै ऐसे राम नामा बिन बापरो नामा रहाओ जैसे गाय का बाछा शूठला तन थन चोखता माखन कूटला नाम देव नारायण पाया गुर भेड़ता लख लखाया जैसे बिखै हेत पर नारी ऐसे नामे प्रीत मुरारी जैसे ताप ते निर्मल कामा तैसे राम नामा बिन बापरो नामा राग गोंड बाणी नाम देव जियो की कर दूजा एको अंकार सदगुर प्रसाद हर हर करत मिटे सब परमा हर को नाम ले उत्तम धर्मा हर हर करत जात कुल हरी सो हर अंधले की लकरी हर ए नमस्ते हर ए नमः हर हर करत नहीं दुख जमै रहाओ हर हर नक्श हरे।

सिमरन द्रौपद सुत उदरी गौतम सती सला निस्तरी केसी कंस मथन जिनकिया जी दान काली कौदिया प्रणवै नामा ऐसो हरी जास जबद पै अपदा तरी गोंड पैरो पूत सीतला तावै खर बाहन ओ शारो डावै हाँ तो

बर्द चढ़े डौरू टमकावे, महामाई की पूजा करै, नरसै नर होए अवतरै। तू कहत ही अद भवानी, मूत की बरिया कहां छपानी। गुरमत राम नाम गहो मीता, प्रणवै नामा यो कह गीता।

मारिया था। पांडे तुमरा रामचंद सो भी आवत देखा था, रावण सेती सरबर होई करकी जो गवाई थी। हिंदू अन्ना तुर्कू काना दोहा ते ज्ञानी सियाना, हिंदू पूजे देहोरा मुसलमान मसीत नामे सोई सेवया, जय देहोरा नाम सीत। रागोंड बाणी रविदास जियो की कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद। मुकंद मुकंद

दास अब तृष्णा चुकी जप मुकंद सेवा ताहू की गौंड जे हो 68 तीर्थ नावै जे हो द्वादश शिला पूजावै जे हो कूप तटा देवावै करै निंद सब बिरथा जावै साधका निंदक कै

जे हो अनक प्रसाद करावै भूम दान शोभा मंडप पावै अपना बिगार बिराना सांडै करै निंद बोजो नी हांडै निंदा कहाँ करो संसारा निंदक का प्रगट पहारा निंदक सोध साध बिचारिया कहो रविदास पापी नरक सिधारिया जोड़ राम कली।

अकाल मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद, कोई पढ़ता सहसा करता कोई कड़े पड़े पुराना, कोई नाम जपे जप माली लागत सह त्याना। अब ही कभी किशु ना जाना तेरा एको नाम पछाना, ना जाना हरे मेरी कवन गते, हम मूर्ख ज्ञान शरण प्रभ तेरी कर कृपा राखो मेरी लाज पते रहाओ।

मरण लिखाए मंडल में आए जीवन साजै माई। एक चले हम देखे स्वामी पाहे बलंती आई। ना किसी का मीत ना किसी का भाई, ना किसे बाप ना माई। प्रणवत नानक जे तू देवे अंते हुए सखाई। राम कली महला पहला, सर्ब जोत तेरी पसर रही। जै जै देखा तै नर हरी, जीवन तलब निवार स्वामी। अंध कुप माया मन गाड़िया, क्यों कर उतरो पार स्वामी रहाओ। जह पीतर कट पीतर बसिया, बाहर काहे नाही। तिन की सार करे नित साहेब, सदा चिंत मन माही। आपे नेड़ा आपे दूर, आपे सरबरया भरपूर। सतगुर मिले अंधेरा जाए, जै देखा तै रया सुमाए। अंतर से सा बाहर माया, नैनी लग सबाणी। प्रणवत नानक दासन दासा, परता पैगा प्राणी। राम कली महला पहला, जित दर वसै कमन दर कहिया। दरा पीतर दर कमन लह, जिस दर कारण फिरा उदासी। सो दर कोई आए कह, किन बिद सागर तरिया। जीव त्याने मरिया रहाओ, दुख दरवाजा रोह रखवाला। आसा अंदेसा दोए पट जड़े, माया जल खाई पानी कर बांधया। सत कै आसन पुरख रहै,

करे, जब आशा अंदेशा तब ही क्यों कर एक कहे, आशा पीतर रहे निराशा तव नानक एक मिले। इन विद सागर तरिये जीवत आयो मरिये, रहाओ दूजा राम कली महला पहला, सुरत शब्द साख

गोरख सो जन गोए उठाली करते बार ना लागे रहाओ। पानी प्राण पवन बंद राखे चंद सूरज मुख दिए मरण जीवन कौ धरती दीनी एते गुण विसरे। सिद्ध साध क्यार योगी जंगम पीर पुरुष बहु तेरे जेतन मिला ता कीर्त आखा ता मन सेव करे। कागद लून रह कृत संगे पानी कमल रह ऐसे भगत मिले जन नानक तिन जम क्या करे। राम कली महला पहला सुन मा शिंद्रा नानक बोले वसगत पंच करे नहीं डोले। ऐसी जुगत जो कौ पाले आप तरह सगले कुल तारे। सो अवधूत ऐसी मत पावे अहनिस सुन समाज समावे। रहाओ भिखिया पाए भगत पै चले होवै सो तृप्त संतोख अमुले। ध्यान रूप होए आसन पावे सच नाम ताड़ी चित लावे। नानक बोले अमृत बाणी सुन मा शिंद्रा औदू निशानी। आसा महे निरास वलाए निहचो नानक करते पाए। प्रणवत नानक अगमुख सुनाए गुर चेले की संद मिलाए। दीखिया दारू भोजन खाए छे दर्शन की सोजी पाए। हराम कली महला पहला हम डोलत बेड़ी पाप भरी है पवन लगे मत जाई। सनमुख सिद्ध पेटन कौ आए निहचो दे वड़ियाई। गुर तार तारन हारिया देह भगत पूर्ण अविनाशी हौ तुझको बलिहारिया। रहाओ सिद्ध साधक जोगी अर जंगम एक सिद्ध जिनी त्याया। परसत पैर सिजते स्वामी अखर जिनको आया। जप तप संजम कर्म ना जाना नाम जपी प्रभ तेरा। गुर परमेसर नानक पेटे ओ साचे शब्द नवेरा। राम कली महला पहला सुरती सुरत्र लाई है एत तन कर तुल्हा लंगे जेत। अंतर पाहित सह तू रख एनस दीवा बल अथक। ऐसा दीवा नीर तराए जित दीवे सब सो जी पाए। रहाओ

रामकली महला पहला, सागर मैं बूंद, बूंद मैं सागर, कवन बुझे बिद जाना, उत्पो चलते आप कर चीना, आपे तत् पछाणे, ऐसा ज्ञान विचारे कोई, तिस्ते मुक्त परमगत होई रहाओ। दिन मैं रहण रहण मैं दिनियर, उसन सीत बिद सोई, ताकि गत मित अवर ना जाने, गुरबिन समझ ना होई। पुरख मैं नार, नार मैं पुरखा, बुझो ब्रह्म ज्ञानी, धुन मैं ध्यान, ध्यान मैं जानिया, गुरमुख अकथ कहानी। मन मैं जोत, जोत मैं मनुआ, पंच मिले गुर पाई, नानक तिन कै सत बलिहारी, जिन एक शब्द लिवलाई। राम कली महला।

दर्शन दाते हर संत पगी ले पावे। हों काटो काट बाढ़ सिर रखो जित नानक संत चढ़ आवे। और राम कली

राम कली महला पंजवा। तू दाना तू अबजल तू ही, तू जात मेरी पाती, तू अडोल कदे डोले नाही, ता हम कैसी ताती। एक तू ही, एक तू राया, तव कृपा ते सुख पाया रहाओ। तू सागर हम हंस तुम्हारे, तुम मैं माणक लाला, तुम देवो तिल संक ना मानो, हम पुंचे सदा निहाला। हम बालक तुम पिता हमारे, तुम मुख देवो खीरा, हम खेले सब लाड लडावे, तुम सदगुणी गहीरा। तुम पूर्ण पूर रहे संपूर्ण, हम पी संग आ गाए, मिलत मिलत मिलत मिल रहया, नानक कहन ना जाए। राम कली महला पंजवा। कर कर ताल पखावज नैनो, माथे वजैर बाबा, करनो मद बासरी बाजै, जेवा तुनिया गाजा। निरत करे कर मनुआ नाचै, आने कुगर साजा, राम को निरतकारी, पेखे पेखन हार दयाला, जेता साज सिंगारी रहाओ। आखार मंडली तरन सबाई, ऊपर गगन चंदोवा, पवन विचोला करते अकेला, जलते उपत होवा। पंच तत् कर पुत्रा कीना, किरत मिलावा होवा, चंद सूरज द्वे जरे चरागा, चहो कुंट पीतर राखे। दस पातो पंच संगीता, एकै पीतर साथे, भिन्न भिन्न होए भाव दिखावै, सबो निरारी पाखे। घर घर निरत होवै दिन राती, कटकट वाजै तूरा, एक नचावै एक पवावै, एक आए जाए होए तूरा। कहो नानक सो बहुर ना नाचै, जिस गुर भेटै पूरा। राम कली महला पंजवा। ओंकार एक तुन एक रागा लापै, एक देसी एक दिखावै, एक रया व्यापै। एक

पंच बचित्र करे संतोखा सात सुरा लै चल बाजा मान तान ताई ताना पाओ न बिंगा कल फेरी फेर न होवे कभी एक शब्द बंद पाल नारदी नरहर जान हदूरे कुंगर खड़ग त्याग विसूरे सहजानंद दिखावे पावे यो नृतकारी जन्म ना आवे जे को अपने ठाकर पावे कोट मद एहो कीर्तन गावे साध संगत की जावो टेक कहो नानक तिस कीर्तन एक।

कोई कहे तुर्क, कोई कहे हिंदू, कोई बंश है पिस्त, कोई सुरग हिंदू। कहो नानक जन हुक्म पछाता, प्रभ साहेब का तन भेद जाता। राम कली महला पंजवा, पवन मैं पवन समाया, ज्योति मैं ज्योत रल जाया। माटी माटी होई एक, रोवन हारे की कवन टेक।

जप नाथ दिन रह नाई तेरी खिंथा दो दिहाई रहाओ। गहरी बिपूत लाए बैठा ताड़ी मेरी तेरी मुंद्रा तारी। मांगै टूका तृप्त ना आवै नाथ छोड़ जाचे लाज ना आवै। चल चित जोगी आसन तेरा सिंगी वाजै नित उदासेरा। गुर गोरख की तै बूझ ना पाई फिर जोगी आवै जाई। जिसनो होवा ना

संत हमारी निर्मल रास, संत हमारा राखिया पड़दा, संत प्रसाद मोए कबू ना करदा, संत संग दिया कृपाल, संत सहाई पय दयाल, सोरत मत बुद्ध प्रगास, गहर गंभीर अपार गुणतास, जी जन

हर की कथा सुनत पवित जेवा भगत पाई गत मत सो प्रवान जिस हृदय वसाई नानक ते जानी उत्तम पाई। राम कली महला पंजवा गहो कर पकरी ना आई हाथ प्रीत करी चाली नहीं साथ कहो।

रहाओ जब उसको कोई देवे मान तब आपस ऊपर रखे गुमान। जब उसको कोई मन पर हरे तब यो सेवक सेवा करे मुख बेरावे अंत ठगावे एक ठौर ओ कई ना समावे। उन मोहे बहुते ब्रह्मंड राम जनी की नी खंड खंड जो मांगे सो भूखा रह इस संग राचे सो कछु ना लह। ऐसे त्याग सत्संगत करे वडभागी नानक हो तरह। राम कली महला पंजवा आत्म राम सर्व मैं पेख पूर्ण पूर रया प्रभ एक। रत्न मोल हृदय मैं जान अपनी वस्तु आप पछान पी अमृत संतन प्रसाद। वड़े भाग होवे तो पाइए बिन जेवा क्या जाने स्वाद। रहाओ अठ दस वेद सुने कह डोरा कोट प्रगास ना दिसे अंधेरा। पशु प्रीत का संग रचे जिसने बुझावे सो कित बिद बुझे। जानन हार रहया प्रभ जान ओत पोत भगतन संगान। बिगस बिगस अपना प्रभ गावे नानक तिन जम नेण न आवे। राम कली महला पंजवा दीनो नाम कियो पवित हर तन रास निरास हे बित। काटी बंध हर सेवा लाए हर हर भगत राम गुण गाए। बाजे अनहद बाजा रसक रसक गुण गावे हर जन अपने गुरुदेव निवाजा। रहाओ आए बनयो पूर्वला भाग।

मिट जाए कर कृपा पार ब्रह्म दयाल मानते कबो न विसर गोपाल तेरे दास की हो मातूर नानक की प्रभ सरदा पूर राम कली महल्ला पंजवा तेरी शरण पूरे गुरुदेव तुझ में दूजा नाही कोए तू समरथ पूर्ण पार ब्रह्म सो त्याए पूरा जिस कर्म तरण तारण प्रभ तेरो नाओ एका शरण गही मन मेरा तुझ बिन दूजा नाही ठाओ रहाओ जप जप जीवा तेरा नाओ आगे दरगे पावो ठाओ दुख अंधेरा मन ते जाए दुर्मत बिनसै रचै हर नाए चरण कमल स्यों लागी प्रीत गुरपुरे की निर्मल रीत पाओ भागा निरपव मन बसै अमृत नाम रसना नित जपै कोट जन्म के काटे फाहे पाया लाभ सच्चा तन।

सुन समाध गुफा तय आसन केवल ब्रह्म पूर्ण तय बासन भगत भगत संग प्रभ गोष्ट करत तय हरख ना सोग ना जन्म ना मरत कर कृपा जिस आप देवाया साध संग तिन हर तन पाया दयाल पुरख नानक अरदास हर मेरी वर

अवतार न जाने अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत, अपनी गाते आप जाने, सुन सुन अवर वखाने रहाओ, संकरा नहीं जाने पेव, खोज तहारे देव, देविया नहीं जाने मर्म, सभी ऊपर अलख पार ब्रह्म, अपना रंग करता केल, आप बिछोर आपे मेल, एक परमे एक भक्ति लाए, अपना किया आप जनाए, संतन की सुन साची साखी, सो बोले जो पेखे आखी, नहीं लेप तिस्पुन्ना पाप, नानक का प्रभ आपे आप, रामकली महला पंजवा, किशु काजना कियो जान, सुरत मत नाही किश ज्ञान, जाप ताप सील नहीं धर्म, किशु ना जानो कैसा कर्म, ठाकुर प्रीतम प्रभ मेरे, तुझ बिन दूजा अवर ना कोई, भूले चूके प्रभ तेरे रहाओ, रिद ना बुद्ध ना सिद्ध प्रगास, बिखे ब्याद के गाव में बास, करण हार मेरे प्रभ एक, नाम तेरे की मन में टेक, सुन सुन जीवो मन एहो विश्राम, पाप खंडन प्रभ तेरो नाम, तू अगंत जी का दाता, जिसे जनाम है तिन तू जाता, जो उपायो तिस तेरी आस, सगला राधा है प्रभ गुणतास, नानक दास तेरे कुर्बान, बेअंत साहिब मेरा मेहरबान, रामकली महला पंजवा, रखन हर दयाल, कोट पव खंडे निमख ख्याल, सगल अराधय जंत, मिलिया प्रभ गुर मिलमंत, जीवन को दाता मेरा प्रभ, पूर्ण परमेश्वर स्वामी, घट घट राता मेरा प्रभ रहाओ, ताकि गही मन ओट, बंधन ते होई छोट, हृदय जप परमानंद, मन माहे पय आनंद, तारण तरण हर शरण, जीवन रूप हर चरण, संतन के प्राण आधार, ऊचे ते ऊचे पार, सुमत सार जित

आनंद कर संत हर जप शाड़ सियाणप बहु चतराई गुर का जप मंत निर्मल रहाओ एक की कर आस भीतर निर्मल।

पाए बूढ़ तलोहो साध संग तरै नानक शिक्षा प्राप्त करै। रामकली महला पंजवां मन माहे जा भगवंत गुरपुरै हो दीनो मंत मिटे सगल पैतरास पूर्ण होई आस सफल सेवा गुरदेवा कीमत किश कहण ना जाई साचे साचा लाखा पेवा रहाओ। करन कराम ने आप तिस को सदा मन जाप तिसकी सेवा करनी तो सच सह सुख पावे मीत। साहिब मेरा अत पारा खिन मैं था प्यो था पनहारा तिस बिन अवर ना कोई जनका राखा सोई। कर कृपा अरदास सुनी जय अपने सेवक को दर्शन दी जय नानक जापी जब जाप सब ते ऊजा का प्रताप। राम कली महला पंजवा बिरथा परवासा लोक ठाकर प्रभ तेरी टेक अवर छूटी सब आस अचिंत ठाकर भेटे गुणतास। एको नाम त्याय मन मेरे कार्ज तेरा होवे पूरा हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहाओ। तुम ही कारण करण चरण कमल हर शरण मन तन हर ओही ते आया आनंद हर रूप दिखाया। तिस ही की ओर सदीव जाके कीने है जीव सिमरत हर करत निदान राखण हार निदान। सर्व की रेण हो बीजै आ मिटाए मलीजै अंदन त्याई नाम सफल नानक हो काम। राम कली महला पंजवा कारण करन करीम सर्व प्रतपाल रहीम अल्लै लाख्या पार खुद खुदाए वड बेसुमार। ओ नमो भगवंत गुसाई खालक रव रया सर्व ठाई रहाओ। जगन्नाथ जग जीवन माधो पौ पंजन रिद माया राधो रिखी केस गोपाल गोविंद पूर्ण सर्वत्र मुकंद।

आराम कली महला पहला हठ निग्रह कर काया छिजै वरद तपन कर मनि पीजै राम नाम सर अवरना पूजै गुर सेव मना हर जन संग कीजै जम जनदार जोहे नहीं सकै सरपन डस ना सकै हर कारस पीजै रहाओ वाद पड़े रागी जग पीजै त्रैगुण बिखिया जन्म मरीजै राम नाम बिन दुख सहीजै चाड़स पवन सिंहासन पीजै न्योली कर्म खटकर्म करीजै राम नाम बिन बिरथा सास लीजै अंतर पंच अगन क्यों तीर जतीजै अंतर चोर क्यों साध रही जै गुरमुख होए काया गढ़ लीजै अंतर मैल तीर्थ परमीजै मन नहीं सूचा क्या सोच करी जै किरत पया दोष का कौ दीजै आना खाहे देही दुख दीजै बिन गुर ज्ञान तृप्त नहीं थीजै मनमुख जन्म जन्म मरीजै सदगुर पूछ संगत जन की

नानक नाम मिले कृपा प्रभ की जय। राम कली महला पहला अंतर उत्पुज अवर ना कोई, जो कही ऐसो प्रभ ते होई। जुगे जुगंतर साहिब साहिब सोई, उत्पुत परलो अवर ना कोई। ऐसा मेरा ठाकुर गहर गंभीर, जिन जपया तिन्हीं सुख पाया, हर कै नाम ना लगे जंपीर। रहाओ नाम रतन हीरा निर्मोल, साचा साहेब अमरिया तोल। जेवा सूची साचा बोल, करदर साचा नाही रोल। एक बन में बैसे डूगरिया स्थान, नाम विसार पचाया अवमान। नाम बिना क्या ज्ञान ध्यान, गुरमुख पावे दरगह मान। हठ हंकार करे नहीं पावे, पाठ पढ़े ले लोक सुनावे। तीर्थ परमस ब्याद ना जावे, नाम बिना कैसे सुख पावे। जतन करे बिंद किवे ना रहाई, मनुआ डोले नर के पाई। जंपर बांधे लह सजाई, बिन नावे जियो जल बल जाई। सिद्ध साधक केते मुन देवा, हठ निग्रह ना तृप्तावे पेवा। शब्द विचार गह गुरसेवा, मन तन निर्मल अवमान्या पेवा। कर्म मिलाए पावे सच नाओ, तुम शरणागत रहो।

झूठ ना पावस पाखंड कीना, बिन गुर शब्द नहीं कर बार, नानक गुरमुख तत विचार। आराम कली महला पहला, ज्यों आया त्यों जावै बौरे, ज्यों जन्मे त्यों मरण पया। ज्यों रस भोग किए तेता दुख लागै, नाम विसार पव जल पाया। तन तन देख तो गर्भ गया, कनक काम निस्यों हेत वधाए हे, की नाम विसार है भरम गया रहाओ। जत सत संजम सील ना रखिया, प्रेत पिंजर में काष्ट पाया। पुन दान इस ना ना संयम, साध संगत बिन बाज जाया। लालच लागे नाम बिसारियो, आवत जावत जन्म गया। जा जमत आए केस गहे मारे, सुरत नहीं मुख काल गया। अहनिस निंदा तात पराई, हृदय नाम ना सर्व दया। बिन गुर शब्द ना गद पत पावे, राम नाम बिन नरक गया। खिर मैं वेस करे नटुआ ज्यों, मोह पाप मैं गलत गया। एत उत माया देख पसारी, मोह माया कै मगन पया। करे बेकार विथार कनेरे, सुरत शब्द बिन परम पया। हम मैं रोग महा दुख लागा, गुरमत ले वो रोग गया। सुख संपत को आवत देख, सागत मानो अभिमान पाया। जिसका हो तान तान सो फिर ले वै, अंतर सहसा दुख पाया। अंतकाल के साथ ना चल, जो दिस है सब तिस है मया। आद पुरख परंपर सो प्रभ, हर नाम हृदय लै पार पया। मुए कौ रोवै किसै सुनावै, पैसा गिर असराल पया। देख कुटुंब माया गृह मंदर, साकत जंजाल पराल पया। जाय आए ता तने पठाए, चाले तने बुलाए लया। जो किश करना सो कर रहया, बख्शन हारै बख्श लया। जिने हो चाखिया राम रसायण, तिन की संगत खोज पया। रिद सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया, मुक्त पदार्थ शरण पया। दुख सुख गुरमुख सम कर जाना, हरक सोग ते ब्रगत पया। आप मार गुरमुख हर पाए, नानक सहि समाए लया। आराम कली दखनी महला पहला, जत सत संजम साज दृढ़ाया। सा शब्द रस लीना, मेरा गुरदयाल सदा रंग लीना। अहनिस रह एक लिव लागी, साचे देख पतीना रहाओ। रह गगनपुर दृष्ट समय सुर, अनहद शब्द रंगीना। सत बंद कुपीन भरपुर लीना, जेवा रंग रसीना। मिले गुर साचे जिन रच राचे, किरत विचार पतीना। एक मैं सर्व सर्व मैं एका, एह सतगुर देख दिखाई। जिन किए खंड मंडल ब्रह्मंडा, सो प्रभ लिखन ना जाई। दीपक ते दीपक परगासिया, त्रिपवन ज्योत दिखाई। सच्चे तखत सच महली बैठे, निरपव ताड़ी लाई। मोहे गया बैरागी जोगी, कट कट किंगरी वाई। नानक शरण प्रभु की छूटे, सतगुर सच सिखाई। राम कली महला पहला, औहठ हस्त मड़ी कर छाया। तरन गगन कल तारी, गुरमुख केती शब्द उधारी। संतो रहाओ, ममता मार हम मैं सुख है, त्रिपवन जो तुम्हारी। मनसा मार मने मैं राख, सतगुर शब्द विचारी। सिंगी सुरत अनाहद वाजै, घट घट जो तुम्हारी। परपंच बेण तही मन राखिया, ब्रह्म अगर पर जारी। पंच तत् मिल अहनस दीपक, निर्मल ज्योत अपारी। रव सस लौके होतन किंगरी, वाजै शब्द निरारी। शिव नगरी मैं आसन अवधू, अलख गम्य पारी। काया नगरी हो मन राजा,
ਪੰਚ ਵਸੈ ਵਿਚਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਰਵੈ ਆਸਣ ਕਰ ਰਾਜਾ ਅਦਲ ਕਰੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਕਾਲ ਬਿਕਾਲ ਕਹੇ ਕਹੇ ਬਪਰੇ ਜੀਵਤ ਮੂਆ ਮਨ ਮਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੁ ਮਹੇਸ਼ ਇਕ ਮੂਰਤ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਾਰੀ ਕਾਇਆ ਸੋਧ ਤਰੈ ਪਵ ਸਾਗਰ ਆਤਮ ਤਤ ਵਿਚਾਰੀ ਗੁਰਸੇਵਾ ਤਿਸ ਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਰਵਿਆ ਗੁਣਕਾਰੀ ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਏ ਗੁਣਦਾਤਾ ਹਉ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਰੀ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੇਟੇ ਚੌਥੇ ਵਰਤੈ ਇਹਾ ਭਗਤ ਨਿਰਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਗ ਸ਼ਬਦ ਆਤਮ ਚੀਨੈ ਹਿਰਦੈ ਇਕ ਮੁਰਾਰੀ ਮਨੁਆ ਅਸਤਰ ਸ਼ਬਦੇ ਰਾਤਾ ਇਹਾ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ ਬੇਦ ਬਾਦ ਨਾ ਪਾਖੰਡ ਔਦੂ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਕਮਾਵੈ ਔਦੂ ਜਤ ਸਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਮਨ ਮਾਰੇ ਔਦੂ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਵਿਚਾਰੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਵਜਲ ਹੈ ਔਦੂ ਸ਼ਬਦ ਤਰੈ ਕੁਲਤਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸੂਰ ਜੁਗਚਾਰੇ ਉਧਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸੂਰ ਜੁਗਚਾਰੇ ਔਦੂ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਵਿਚਾਰੀ ਇਹੋ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੋਇਆ ਔਦੂ ਨਿਕਸੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਰਮੈ ਦੀਆ ਮੁੰਦਰਾ ਕੰਨੀ ਪਾਏ ਜੋਗੀ ਖਿੰਥਾ ਕਰ ਤੂੰ ਦਇਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ਬਭੂਤ ਲਾਏ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਤੀਨ ਪਵਣ ਜਨ ਲਿਆ ਐਸੀ ਕਿੰਗਰੀ ਵਜਾਏ ਜੋਗੀ ਜਿਤ ਕਿੰਗਰੀ ਅਨਹਦ ਵਾਜੈ ਹਰ ਸਿਉ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਏ ਰਹਾਉ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਪਤ ਕਰ ਝੋਲੀ ਜੋਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਭੁਗਤ ਪਾਈ ਧਿਆਨ ਕਾ ਕਰ ਡੰਡਾ ਜੋਗੀ ਸਿੰਘੀ ਸੁਰਤ ਵਜਾਈ ਮਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਆਸਣ ਬੈਸ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕਲਪਨਾ ਜਾਈ ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਚੜ੍ਹੈ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਨਾਮ ਪੱਲੈ ਪਾਈ ਇਤ ਕਿੰਗਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਜੋਗੀ ਨਾ ਸਚ ਪੱਲੈ ਪਾਏ ਇਤ ਕਿੰਗਰੀ ਸਾਂਤ ਨਾ ਆਵੈ ਜੋਗੀ ਅਵਮਾਨ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ

पंडी हुक्म बुझै सो जोगी कहिया एक स्यों चित लाए सहसा टूटै निर्मल होवै जोग जुगत इव पाए नदरी आवंदा सब किश बिनसै हर से ती चित लाए सतगुर नाल तेरी भावनी लागै ता एह सोजी पाए एहो जोग ना होवै जोगी जे कुटुंब छोड़ पर पवन करै ग्रह शरीर में हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रबल है एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी इसमें रोग वड्डा तृष्णा माया अनेक जतन पेख करै जोगी रोग ना जाए गवाया हर का नाम औखद है जोगी जिसनो मन वसाए गुरमुख होवै सोई बूझै जो जुगत सो पाए जोगै का मार्ग बिखम है जोगी जिसनो नदर करे सो पाए अंतर बाहर एको वेखै विचों परम चुकाए विण वजाई किंगरी वाजै जोगी सा किंगरी वजाए कह नानक मुक्त होवै जोगी साचे रहै समाए राम कली महला तीजा भगत खजाना गुरमुख जाता सतगुर बूझ बुझाई संतो गुरमुख दे वड़ियाई रहाओ सच रहो सदा सहज सुख उपजै काम क्रोध विचों जाई आप छोड़ नाम लिव लागी ममता शब्द जलाई जिस ते उपजै तिस ते बिनसै अंते नाम सिखाई सदा हजूर दूर न देखो रचना जिन रचाई सच्चा शब्द रवै कट अंतर सच्चे सो लिव लाई सतसंगत में नाम निर्मोलक वड्डे पाग पाया जाई परम ना चुकाओ सतगुर सेवाओ मन रखो इकठाई बिन नाम ऐसा पूली फिरदी बिरथा जन्म गवाई जोगी जुत गवाई हंडै पाखंड जोग ना पाई शिव नगरी में आसन बैसै गुरसबदी जोग पाई तातर बाजी शब्द निवारे नाम वसै मन आई एहो शरीर सरवर है संतो इशनान करे लिव लाई नाम इशनान करै से जन निर्मल शब्दे मैल गवाई त्रै गुण अचेत नाम चेतै नाही बिन नामै बिन सजाई ब्रह्मा विष्णु महेश त्रै मूर्त त्रै गुण परम पुलाई गुर प्रसादी त्रिगुटी छूटै चौथै पद लिव लाई पंडित पढ़ै पढ़वाद वखाणै तिन्ना बूझ न पाई बिखिया माते परम पुलाए उपदेश कह किस पाई भगत जना की उत्तम बाणी जुग जुग रही समाई

मनसा मार मन सह समाणा बिन रसना उस्तत कराई, लोयन देख रहे बिस्मादी चेता दिष्ट लगाई। अदिष्ट सदा रहे निरालम ज्योति ज्योत मिलाई, हाँ गुरसा लाही सदा अपना जिन साची बूझ बुझाई। नानक एक है बेनंती नाम गत पत पाई, राम कली महला तीजा हर की पूजा दुलंब है संतो कहना कछु न जाई। संतो गुरमुख पूरा पाई नामो पूज कराई रहाओ, हर बिन सब किश मैला संतो क्या हो पूज चढ़ाई। हर साचे पावे सा पूजा होवे पाणा मन वसाई, पूजा करे सब लोग संतो मन मुक्थाए ना पाई। शब्द मरै मन निर्मल संतो एह पूजा थाए पाई। पवित्र पावन से जन साचे एक शब्द लिव लाई, बिन नामै होर पूजना होवी भरम भुली लोकाई। गुरमुख आप पछाणै संतो राम नाम लिव लाई, आपे निर्मल पूज कराए गुर शब्दी थाए पाई। पूजा करै पर विद नहीं जाने दूजे पाए मल लाई, गुरमुख होवै सो पूजा जाने पाणा मन वसाई। पाणे ते सब सुख पावै संतो अंते नाम सखाई, अपना आपना पछाणै संतो कूड़ करै वड्याई। पाखंड कीने जम नहीं छोड़ै लै जासी पत गवाई, जिन अंतर शब्द आप पछाणै गत मित तिन ही पाई। एहो मनुआ सुन समाद लगावै ज्योति ज्योत मिलाई, सुन सुन गुरमुख नाम वखाणे सतसंगत मिलाई। गुरमुख गावै आप गवावै दर साचै सोभा पाई, साची बाणी सच वखाणे सच नाम लिवलाई। पै भंजन अत पाप निखंजन मेरा प्रभ अंत सिखाई, सब किछ आपे आप वरतै नानक नाम वड्याई। राम कली महला तीजा हम कुचल कुचील अत अभिमानी, मिल सबदे मैल उतारी संतो गुरमुख नाम निस्तारी। सच्चा नाम वस्या कट अंतर करतै आप सवारी रहाओ, पारस परसे फिर पारस होए हर जीव अपनी कृपा तारी। एक भेख करै फिर अभिमानी तिन जुए बाजी हारी, एक आंदन भगत करै दिन राती राम नाम उर तारी। आंदन राते सहजे माते सहजे हों मैं मारी, पै बिन भगत ना होई कभी पै पाए भगत सवारी। माया मोह शब्द जलाया ज्ञान तत् बिचारी, आपे आप कराए करता आपे बख्श भंडारी। तिस क्या गुणा का अंत ना पाया हों गावा शब्द विचारी। हर जियो जपी हर जियो सा लाही विचों आप निवारी, नाम पदार्थ गुरते पाया खुट सचे भंडारी। अपने भगतां नूं आपे तुठा अपनी किरपा कर कल तारी। तिन साचे नाम की सदा भुख लागी गावन शब्द विचारी। जियो पिंड सब किश है तिसका आखण बिख बिचारी, शब्द लगे से जन निस्तरे पौजल पार उतारी। बिन हर साचे को पार ना पावै बूजे को विचारी, जो तुर लिखिया सोई पाया मिल हर शब्द सवारी। काया कंचन शब्दे राती साचै नाए प्यारी, काया अमृत रही पर पूरे पाइय शब्द विचारी। जो प्रभ खोजै से ही पावै होर फूट मोए हंकारी, बादी बिन सह सेवक सेवै गुर कै हित प्यारी। सो जोगी तत् ज्ञान विचारे हम मैं तृष्णा मारी, सतगुर दा

अवर न करना जाई, आपे साजे सृष्टि उपाए सिर सिर धंधा लाई, तिसै सरेबो तां सुख पावो सतगुर मेल मिलाई। अपना आप यो पाए अलख न लखना जाई, आपे मार्जी वाले आपे तिसनो तिल ना तुमाई।

मोहे दीन हर हर हर त्याया, किन्ही सिद्ध बहु चेट कलाए, किन्ही पेख बहु थाट बनाए, किन्ही तंत मंत बहु खेवा, मोहे दीन हर हर हर सेवा। कोई चतर कहावे पंडित, को खट कर्म सहत स्यो मंडित, कोई करे आचार सुकरणी, मोहे दीन हर हर हर सरणी, सगले कर्म धर्म जुग सोदे, बिन नामे ओ मन ना प्रबोदे, कहो नानक जो साध संग पाया, बूझी तृष्णा महासीत लाया, हराम कली महला पंजवा, इस पानी ते जिन तू करिया, माटी का ले देहरा करिया, उगत जोत लै सुरत परीखिया, मात गर्व मैं जिन तू रखिया, राखण हार समार जना, सगले छोड़ विचार मना रहाओ, जिन दिए तुद बाब महतारी, जिन दिए प्रात पुतहारी, जिन दिए तुद बंता यार मीता, तिस ठाकर कहो रख लिहो चीता, जिन दिया तुद पवनिया मोला, जिन दिया तुद नीर निर्मोला,

काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग बिदारणा। नाम जपत मन निर्मल होवे सूखे सुख गुदारना। भगत सरण जो आवे प्राणी तिस इहां उहां ना हारना। सुख दुख इस मन की बिरथा तुम ही आगे सारना। तू दाता सबना जिया का अपन किया पालना। अनक बार कोट जन ऊपर नानक वन्ये वारना। राम कली महला पंजवा अष्टपदी एको ओंकार सतगुर प्रसाद। दर्शन पेटत पाप सब नासै हर स्यों दे मिलाई। मेरा गुर परमेसर सुखदाई पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए अंते होए सखाई। रहाओ सगल दुख का डेरा पन्ना संत तूर मुखलाई। पतत पुनीत की अखन पीतर अज्ञाना देर वंजाई। कारण कारण समर्थ स्वामी नानक ते शरणाई। बंधन तोड़ चरण कमल दृढ़ाए एक शब्द लिवलाई। अंधकूप बिखिया ते काढ़ियो सात शब्द बने आई। जन्म मरण का सहसा चूका बाहुड़ कतो ना ताई। नाम रसायण एहो मन राता अमृत पी तृपताई। संत संग मिल कीर्तन गाया निचल वसिया जाई। पूरे गुर पूरी मत दीनी हर बिनयान ना पाई। नाम निधान पाया वड भागी नानक नरक ना जाई। काल सियाणप उकतना मेरी पूरे गुरु कमाई। जप तप संजम सुच है सोई आपे करे कराई। पुत्र कलत्र महाबिखिया मैं गुरसाच लाए तराई। अपने जीतें आप संभाले आप लिए लड़ लाई। साई धर्म का बेड़ा बांधया पवजल पार पवाई। बेसुमार बेअंत स्वामी नानक बल बल जाई। अकाल मूर्त अजूनी संपाओ काले अंधकार दीपाई। अंतरजामी जियन का दाता देख तृप त्यागाई। एक अंकार निरंजन निरपाओ सब जल थल रया समाई। भगत दान भगता कौ दीना हर नानक जाचै माई। राम कली महला तीजा राम कली महला पंजवा सलोक। सिखो शब्द प्यारे ओ जन मरण की टेक। मुख उज्जल सदा सुखी नानक सिमरत एक। मंत्र राता राम प्यारे हर प्रेम भगत बने आई संतो। सतगुर खेप निबाही संतो हर नाम लहा दास कौ दिया सगली तृष्ण उलाही संतो। रहाओ खोजत खोजत लाल एक पाया हर कीमत कहन ना जाई संतो। चरण कमल स्यों लागो ध्याना साचे दर्श समाई संतो। गुण गावत गावत पय निहाला हर सिमरत तृप्त आगाई संतो। आत्म राम रविया सवे अंतर कत आवै।

पहावै, महा गर्भ मुठिया, जल बाज मछली तड़फड़ावै, संग माया रुठिया। कर पाप जोनी पै पीत होई, दे सासन जाम जियो, बिनवंत नानके ओट तेरी राख पूर्ण काम जियो। सलोक सरदा लागी संग प्रीत मैं, एक तिल रहन ना जाए, मन तन अंतर रव रहे, नानक सह सुभाए। कर गैलीनी सजने जन्म जन्म के मीत, चरने दासी कर लई नानक प्रभित चीत। शंत रुत बरस सुहेलिया, सावन भादवे आनंद जियो, कण उन्नम बुठे जल थल पूरिया मकरंद जियो। प्रभ पूर रहया सर्ब ठाई, हर नाम नवनित गृह भरे, सिमर स्वामी अंतर जामी, कुल समूहा सब तरे। प्रेरंग जागे ने शिदर लागे, किरपाल सद बख्शिंद जियो, बिनवंत नानक हरकंत पाया, सदा मन पावंद जियो। सलोक आस प्यासी मैं फिराऊं, कब पेखा गोपाल, है कोई साजन संत जन, नानक प्रभ मिलनहार। बिन मिल बे सांत ना उपजै, तिल पल रह ना जाए, हर साधे शरणागति नानक आस पुजाए। शंत रुत सर्द अडंबरो, असू कतके हर प्याह जियो, खोजंती दर्शन फिरत, कब मिलिए गुणताह जियो। बिनकंत प्यारे ने सूख सारे, हार कंगन त्रिग बना, सुंदर सुजान चतर बेती, सास बिन जैसे तना। ईत ओत दह दिस्या लोकन, मन मिलन की प्रभ प्यास जियो, बिनवंत नानक तार कृपा, मिलो प्रभ गुणताह जियो। सलोक जलन बुझी शीतल पए, मन तन उपजी सांत, नानक प्रभ पूर्ण मिले, दुतिया बिनसी प्रांत। साध पठाए आप हार, हम तुमते नाही दूर, नानक भ्रम पै मिट गए, रमन राम भरपूर। शंत रुत सिसियर शीतल, हर प्रगटे मंगर पोहे जियो, जलन बुझी दर्स पाया, बिन से माया त्रहो जियो। सब काम पूरे मिल हजूरे, हर चरण सेवक सेवया, हार डोर सिंगार सब रस, गुण गाओ लाखा पेवया। पाओ भगत गोविंद बांशत, जमना साके जोहे जियो, बिनवंत नानक प्रभ आप मेली, तहना प्रेम विश हो जियो। सलोक हर तन पाया सोहागणी, डोलत नाही कीत, संत संजोगी नानका, गृह प्रगटे प्रभ मीत। नाद बिनोद आनंद कोड, प्रे प्रीतम संग बने, मन बाइत फल पाया, हर नानक नाम पने।

ओंकार शब्द उदरे ओंकार गुरमुख तरे ओ नम अखर सुनो विचार ओ नम अखर त्रिपवन सार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाओ सस्य सब जग सहज उपाया तीन पवन एक ज्योति गुरमुख वस प्राप्त हो वै चुन लै मानक मोती समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै अंत निरंतर साचा गुरमुख देखै सा समाले बिन साचे जग काचा तदै धर्म धरे धर्मापुर गुणकारी मन तीरा तदै तूल पड़ै मुख मस्तक कंचन पहे मनूरा तन तरनी तर आप जोनी तोल बोल सच पूरा करते की मित करता जाने कह जाने गुरसूरा ज्ञान गवाया दूजा पाया गर्भ गले बिख खाया गुरस गीत बाद नहीं पावे सुनिए गहर गंभीर गवाया गुर सच कहया अमृत लहया मंतन साज सुखाया आपे गुरमुख आपे देवे आपे अमृत पी आया एको एक कह सब कोई हम मैं गर्भ व्यापै अंतर बाहर एक पछाणे इउ कर महल सियापै प्रभ नेड़े हर दूर न जान हो एको सृष्ट सवाई एक अंकार अवर नहीं दूजा नानक एक समाई इस करते कहो क्यों गह राखो अफरियो तुल्यो न जाई माया के देवाने प्राणी झूठ गौरी पाई लब लोभ मोहताज विगूते इब तब फिर पछताई एक सिरे वै ता गत मित पावै आवन जान रहाई एक आचार रंग एक रूप पौन पानी अग्नि असरूप एको पवर पवै तिहो लोए एको बूझै सूझै पत होए ज्ञान ध्यान ले समसर रह गुरमुख एक विरला कोल है जिसनो दे कृपा ते सुख पाए गुरु द्वारे आग सुनाए ऊरम तूरम ज्योत उजाला तीन पवन मैं गुर गोपाला ऊग व्या असरूप दिखावै कर कृपा अपने कर आवै ऊन बरसै निजर तारा उत्तम शब्द सवारण हारा इस एक का जाने पे ओ आपे करता आपे दे उगवै सूर असर संघार है उचो देख शब्द विचार है ऊपर आद अंत तिहो लोए आपे करे कथै सुने सोए ओहो विधाता मन तन दे ओहो विधाता मन मुख सोए प्रभ जग जीवन अवर ना कोए नानक नाम रते पत होए राजन राम रवै हितकार रण में लूजै मनुआ मार राधनंत रह रंगराता तीन पवन जुग चारे जाता जिन जाता सो तिसी जेहा अत निरमायल सिज सेहा रैसी राम हृदय पाए अंतर शब्द साच लिवलाए रोस ना कीजै अमृत पीजै रहन नहीं संसारे राजे राय रंक नहीं रहना।

चेतन नित नीत चिंतत ही दिशा सब कोए, चेता एक तही सुभोए चित वसै राचै हर नाए, मुक्त भया पत स्यों कर जाए। छीजै देह खुलै एक गंड, छे अन देखो जगहंड, धूप छाव जे समकर जाना, बंधन काट मुक्त कर आना। छाया छूछी जगत पुलाना, लिखिया किरत तुरे परवाना, छीजै जोबन जरुआ सिरकाल, काया छीजै पई सिवाल। जापै आप प्रभु त्यो लोए, जुग जुग दाता अवर ना कोए। ज्यो पावै त्यो राखै राख, जस जाचौ देवै पत साख। जागत जाग रहा तुद पावा, जा तू मेलै तत जै समावा। जय जयकार जपो जगदीश, गुरमत मिलिया बीसा कीस। चख बोलन क्या जग स्यो वाद, चूर मरै देखै प्रमाद। जन्म मुए नहीं जीवन आसा, आए चले पे आस निरासा।

जिन नाम दिया तिस सेव सा तिस बलहारे जाओ, जो उसारे सो ढांसी तिस बिन अवर ना कोए, गुर प्रसादी ते संभला ता तन दुख ना होए, हणा को मेरा

गुणिया गुण ले प्रभ मिले क्यों तन मिलो प्यार तिन्ही जैसी थी रहा जप जप हृदय मुरार अवगुणी भरपूर है गुण पी वसै नाल विण सतगुर गुण ना जपनी जिचर शब्द ना करे विचार लस्करिया कर संभले आए वजो लिखाए कार कमावे सिर तनी लाहा पल्ले पाए लब लोभ बुरियाइया छोड़े मनो विसार गढ़ दोही पातशाह की कदे ना आवे हार चाकर कहिए खसम का सहोए उत्तर दे वजो गवाए अपना तख्त न बैसे से प्रीतम हथ वड्याइया जय पावे तै दे आप करे किसे आखिए अवरना कोई करे बीजो सूजे को नहीं बह दुली चा पाए नरक निवारण नर नर साचो साच नाए वन त्रिण ढूंढत फिर रही मन में करो विचार लाल रतन बहुमान की सतगुर हाथ भंडार ऊतम होवा प्रभ मिले एक मन एक पाए नानक प्रीतम रस मिले लाहा लै परथाए रचना राच जिन रची जिन सिरियाया कार गुरमुख बेअंत त्याई है अंत ना पारावार राड़े रूड़ा हर जियो सोई तिस्मिन राजा अवर ना कोई राड़े गारड़ तुम सुनो हर वस है मन माहे गुर प्रसादी हर पाई है मत को परम पुलाहे सो साहो साचा जिस हर तन रास गुरमुख पूरा तिस्सा वास रूड़ी बाणी हर पाया गुरसब दी बीचार आप गया दुख कटिया हर वर पाया नार सोयना रूपा संची है तन का चा बिक्षार साहो सदाए संच तन दुबदा होए खुआर सचियारी सच संचया साचो नाम अमोल हर निर्माइल उजलो पत साची सच बोल साजन मीत सुजान तू तू सरवर तू हंस साचो ठाकर मन वसै हम बलिहारी तिस माया ममता मोहनी जिनकी ती सो जान बिखिया अमृत एक है बूझे पुरख सुजान खेमा में होने खप गए खून लख्या संख गणत ना आवे क्यों गणी खप खप मोए बिसंख खसम पछाण अपना खूले बंद ना पाए शब्द महली खरा तू खेमा सच सुख पाए खर्च खरा तन ध्यान तू आपे वसे शरीर मन तन मुख जापै सदा गुण अंतर मन धीर हम मैं खत

तुम आई। क्यों तत्तै अवगत पावै गुरमुख लगे प्यारो, आपे सुरता आपे करता कहो नानक बिचारो। हुक्मे आवै हुक्मे जावै हुक्मे रहै समाई, पूरे गुरते साच कमावै गत मित सब दे पाई। आद कौ बिस्माद विचार कथिया ले सुन निरंतर वास लिया, अकलपत मुंद्रा गुर ज्ञान विचारिया ले कटकट साचा सर्व जिया। गुर बचनी अवगत समाई है तत् निरंजन सहज लह, नानक दूजी कार न करनी सेवै सिख सो खोज लह। हुक्म बिस्माद हुक्म पछाणै जी जुगत सच जाणै सोई, आप मेट निराल मोहवै अंतर साच जोगी कहियै सोई। अवगतो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया, सतगुर परचै परम पद पाईऐ साचै शब्द समाए लिया। एक कहो सच एका जाणै हम मैं दूजा दूर किया, सो जोगी गुर शब्द पछाणै अंतर कमल प्रगास थिया। जीवत मरै ता सबके सूजै अंतर जाणै सर्व दया, नानक ता को मिलै वडाई आप पछाणै सर्व जिया। साचो

आवा गौण मिटै गुर शब्दी आपे परखे बख्श लया एका बेदन दूजै व्यापी नाम रसायन विसरिया सो बूजै जिस आप बुझाए गुर कै शब्द सो मुक्त भया नानक तारे तारन हारा हम मैं दूजा पर हरिया मनमुख पूलै जमकी कान पर कर जो है हाणे हाण मनमुख परम पवै बेबाण वे मार्ग मूसै मंत्र मसान शब्द ना चीनै लवै कुबाण नानक साचर ते सुख जान गुरमुख साचे का पौ पावै गुरमुख बाणी अगड़गड़ावै गुरमुख निर्मल हर गुण गावै गुरमुख पवित्र परम पद पावै गुरमुख रोम रोम हर त्यावै नानक गुरमुख साज समावै गुरमुख परचै वेद विचारी गुरमुख परचै तरियै तारी गुरमुख परचै सो शब्द ज्ञानी गुरमुख परचै अंतर विद जानी गुरमुख पाईऐ अलख अपार नानक गुरमुख मुक्त द्वार गुरमुख अकथ कथै विचार गुरमुख निभै सब परवार गुरमुख जपिए अंतर प्यार गुरमुख पाईए शब्द आचार शब्द भेद जाने जानाई नानक हों मैं जाल समाई गुरमुख तरती सच है साजी तिसमें ओपत खपत सो बाजी गुर कै शब्द रपै रंग लाए साच रतो पत स्यों कर जाए साच शब्द बिन पत नहीं पावै नानक बिन नामे क्यों साज समावै गुरमुख अष्टो सिद्धि सब बुद्धि गुरमुख पव जल तरियै सच सुद्धि गुरमुख सारे अवसर विद जाणै गुरमुख पर विरत नर विरत पछाणै गुरमुख तारे पार उतारे नानक गुरमुख शब्द निस्तारे नामे राते हम मैं जाए नाम रते सच रहे समाए नाम रते जोग जुगत विचार नाम रते पावै मुख द्वार नाम रते त्रिपवन सोजी होए नानक नाम रते सदा सुख होए नाम रते सिद्ध गोष्ट होए नाम रते सदा तप होए नाम रते सच करनी सार नाम रते गुण ज्ञान विचार बिन नामै बोलै सब वेकार नानक नाम रते तिन कौ जयकार पूरे गुरते नाम पाया जाए जोग जुगत सच रहे समाए बारह मैं जोगी परमाए सन्यासी शे चार गुर कै शब्द जो मर जीवै सो पाए मुख द्वार बिन शब्द सब दूजै लागे देखो हृदय विचार नानक वड्डे सेवड पागी जिनी सच रखिया अवतार गुरमुख रतन लह लिव लाए गुरमुख परखै रतन सुभाए गुरमुख साची कार कमाए गुरमुख साचे मनपति आए गुरमुख अलख लखाए तिस पावै नानक गुरमुख चोट ना खावै गुरमुख नामदान इशनान गुरमुख लागै सहि ध्यान गुरमुख पावै दरगै मान गुरमुख पौ पंजन प्रधान गुरमुख करनी कार कराए नानक गुरमुख मेल मिलाए गुरमुख शास्त्र सिमरत वेद गुरमुख पावै कटकट भेद गुरमुख वैर विरोध गवावै गुरमुख सगली गणत मिटावै गुरमुख राम नाम रंग राता नानक गुरमुख संपछाता बिन गुर परमै आवै जाए बिन गुर काल न पवी थाए बिन गुर मनुआ अत डोलाए बिन गुर तृप्त नहीं बिख खाए बिन गुर बिसियर डसै मरवाट नानक गुर बिन काटे काट जिस गुर मिलै तिस पार उतारै अवगुण मिटै गुण निस्तारै मुक्त महा सुख गुर शब्द विचार गुरमुख कदे ना आवै हार
ਤਨ ਹਟੜੀ ਉਹ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸਹਿਜੇ ਸੱਚ ਵਾਪਾਰਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਂਧੇ ਉਹ ਸੇਤ ਬਿਧਾਤੈ, ਲੰਕਾ ਲੁੱਟੀ ਦੈਤ ਸੰਤਾਪੈ। ਰਾਮ ਚੰਦ ਮਾਰਿਓ ਅਹਿ ਰਾਵਣ, ਭੇਦ ਬਭੀਖਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚਾਇਣ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਇਰ ਪਾਹਣ ਤਾਰੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਰਤੇ ਤੀ ਸਿਉਦਾਰੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਚੁੱਕੈ ਆਵਣ ਜਾਣ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗੈ ਪਾਵੈ ਮਾਣ। ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਪਛਾਣ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਗੈ ਸਹਿ ਧਿਆਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗੈ ਸਿਫਤ ਸਮਾਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦ ਨਾਮ ਪਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਨਾਮ ਪਤ ਉਤਮ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੋਜੀ ਹੋਏ। ਕਵਣ ਮੂਲ ਕਵਣ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਤੇਰਾ ਕਵਣ ਗੁਰੂ ਜਿਸਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ। ਕਵਣ ਕਥਾ ਲੈ ਰਹੋ ਨਿਰਾਲੇ, ਬੋਲੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਤੁਮ ਬਾਲੇ। ਇਸ ਕਥਾ ਕਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਭਵਜਲ ਸ਼ਬਦ ਲੰਘਾ ਵਣਹਾਰ। ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੁਨ ਚੇਲਾ। ਅਕਥ ਕਥਾ ਲੈ ਰਹੋ ਨਿਰਾਲਾ, ਨਾਨਕ ਜੁਗ ਜੁਗ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ। ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਤ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਉਮੈ ਅਗਨ ਨਿਵਾਰੀ। ਮੈਣ ਕੇ ਦੰਤ ਕਿਉਂ ਖਾਈਐ ਸਾਰ, ਜਿਤ ਗਰਭ ਜਾਏ ਸੋ ਕਵਣ ਆਹਾਰ। ਹਿਵੈ ਕਾ ਘਰ ਮੰਦਿਰ ਅਗਨ ਪਿਰਾਹਨ, ਕਵਣ ਗੁਫਾ ਜਿਤ ਰਵੈ ਰਹਿ ਅਵਾਹਨ। ਏਤ ਉਤ ਕਿਸ ਕਉ ਜਾਣ ਸਮਾਵੈ, ਕਵਣ ਧਿਆਨ ਮਨ ਮਨੈ ਸਮਾਵੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਵੈ, ਦੂਜਾ ਮੇਟੈ ਇੱਕੋ ਹੋਵੈ। ਜਗ ਕਰੜਾ ਮਨ ਮੁਖ ਗਾਵਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਈਐ ਖਾਈਐ ਸਾਰ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰੇ ਕੋ ਜਾਣੈ, ਨਾਨਕ ਅਗਨ ਮਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ। ਸੱਚ ਪੈ ਰਾਤਾ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰੈ, ਏਕੋ ਜਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਸੈ ਸੱਚ।

अभ्या गते है ना आखिया न जे पर कर भोजन करे न उदरे कारण अपने बहले पे करे न अभ्यागत से ही नानका जे आत्म गौण करे न पाल लहन सौ अपना निज कर रहन करे न पौड़ी अंबर तरत विछोड़िया न विच सच्चा असराओ कर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ सब सच्चा हुक्म वरतदा गुरमुख सच समाओ सच्चा आप तख्त सच्चा बह सच्चा करे न्याओ सब सचो सच वरतदा गुरमुख लख लखाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। श्लोक महला।

रैन आयर मह सब किश है कर्मी पल्ले पाए नानक नौ निद पाई है जे चले तसैर जाए महला तीजा सहजे सदगुरना सेवयो विच होमै जन्म बिनास रसना हरसना चखियो कमला होयो परगास बिख खादी मन मुख मुआ माया मोहे विनास इक सहर के नाम विण त्रिग जीवन त्रिगवास जा आपे नदर करे प्रभ सच्चा ता होवै दसन दास ता अंदन सेवा करे सतगुरु की कबै न छोड़ै पास ज्यों जल मैं कमल अलिपतो वरतै त्यों विचे ग्रह उदास जन नानक करे कराया सबको ज्यों पावै तिव हर गुणतास पौड़ी छत्ती जोग वारसा आपे गणत कीनी आपे सिरट सब साजियां नो आप मत दीनी सिमरत सास्त साजियान पापुन गणत गणिनी जिस बुझाए सो बुझसी सच्चे शब्द पतिनी सब आपे आप वरतदा आपे बख्श मिलाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई सलोक महला।

नाम जपे नमो आराधे तिस जन को करो सब नमस्कार। मल कूड़ी नाम उतारियन जप नाम होआ सचियार। जन नानक जिस दे एह चलत है सो जीवो देवनहार। पौड़ी तुद जेवड दाता नाहे किसे आख सुनाई है गुर प्रसादी पाए जिथो हम जाई है। रस कस साधा बाहरा सच्ची वड़ियाई है जिसनो बख्शे तिस दे आप लै मिलाई है। घट अंतर अमृत रखियोन गुरमुख किसै प्याई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा बा बाणियां कहानियां पुत सपुत करेन जे सतगुर भावै सो मन लैन सही कर्म करेन। जाए पुछो सिमरत शास्त्र ब्यास सुख नारद बचन सब सृष्ट करेन सच्चै लाए सच लगे सदा सच सामालेन। नानक आए से प्रवान पए जे सगले कुल तारेन। महला तीजा गुरु जिन्ना का अंदला सिख भी अंधे कर्म करेन ओए पाणे चलन अपने नित झूठो झूठ बोलेन कूड़ कुसत कमावदे पर निंदा सदा करेन। ओए आप डुबे पर निंदका सगले कुल डोबेन नानक जित ओए लाए तित लगे ओए बपड़े क्या करेन। पौड़ी सब नदरी अंदर रखदा जेती सिहट सब कीती एक कूड़ को सत लायन मनमुख वेगूती। गुरमुख सदा तिहाई है अंदर हर प्रीति जिनको पोतै पुन है तिन वात सपीती। नानक नाम तिहाई है सच सिफत सुनाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला पहला सती पाप कर सत कमाहे गुर दीख्या कर देवन जाहे स्त्री पुरख खटे पाओ पावे आवो पावे जाओ। शास्त्र वेदना माने कोए आपो आपे पूजा होए काजी होए कै बह न्याए फेरे तस्बी करे खुदाए। वड्डी लैके हक गवाए जे को पुछे ता पढ़ सुनाए तुर्क मंत्र कन

थम अहन से अंतर रहते आन ते बैरागी सत समान बोले परथर सत स्वरूप परम तंत में रेख न रूप महला पहला। क्यों मरे मंदा क्यों जीवे जुगत कन पड़ाए क्या खाजे भुगत आस्त नास्त एको नाओ कौन सो अखर जित रह आओ। धूप छाव जे

निरंकार जो रह समाए, काहे भिखिया मंगण जाए। पौड़ी हर मंदिर सोई आखिया, जिथों हर जाता मानस देहे गुरबचनी पाया, सब आत्म राम पछाता। बाहर मूल ना खोजी है कर माहे विधाता, मन मुख हर मंदिर की सार ना जाननी, तिन्नी जन्म गवाता। सब मैं एक वर्तदा गुर शब्दी पाया जाई, वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा, मूर्ख होवे सो सुने, मूर्ख का कहना मूर्ख के क्या लखण है, क्या मूर्ख का करना। मूर्ख ओहो जे मुग्ध है अहंकारे मरना, एतक माणे सदा दुख दुखी मैं रहना। अत प्यारा पवै खूहे क्यों संयम करना, गुरमुख होए सो करे विचार ओस अलिप्तो रहना। हर नाम जपै आप उदरै ओस पिछे डुबदे पी तरना, नानक जो तिस पावै सो करे जो दे सो सहना। महला पहला नानकिया खैरे मना, सुनिए सिख सही लेखा रब मंगेसिया, बैठा कड वही तलबा पौसने आकिया बाकी जना रही। अजराइल फरेस्ता होसी आए तई, आवन जान न सुजई पीड़ी गली फही, कूड़ ने खुटे नानका ओड़क सच रही। पौड़ी हर का सब शरीर है, हर रवरे या सब आपै, हर की कीमत ना पवै किश कहण ना जापै। गुर प्रसादी सालाही है हर भक्ति रापै, सब मंतन हरिया होया हंकार गवापै। सब किश हर का खेल है, गुरमुख किसे बुझाई, वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला पहला सहंसर दान दे इंद्र रोवाया, परशुराम रोवे घर आया। अजय सो रोवे पीखिया खाए, ऐसी दरगह मिले सजाए। रोवे राम निकाला पया, सीता लखमण विछड़ गया। रोवे दैसर लंक गवाए, जिन सीता आंदी डौरू वाए। रोवे पांडव पए मजूर, जिनके स्वामी रहत है दूर। रोवे जन्मे जा खोए गया, एकी कारण पापी पया। रोवे शेख मसा एक पीर, अंतकाल मत लागे पीड़। रोवे राजे कन पड़ाए, कर कर मांगे पीखिया जाए। रोवे किरपन संचय तन जाए, पंडित रोवे ज्ञान गवाए। बाली रोवे नाहे पतार, नानक दुखिया सब संसार। मन्ने नाओ सोई जन जाए, औरी कर्म ना लेखे लाए। महला दूजा जप तप सब किश मन्ने अवरकारा।

रामकली की वार महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला पंजवा जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ। हर नामो मंत्र दरड़ाएंदा कटे हों मैं रोग नानक सतगुर तिना मिलाया जिन्ना तुरे पया संजोग। महला पंजवा एक सज्जन सब सज्जना एक वैरी सब वाद गुरपुरे देखा लिया विणना मैं सब बाद। साकत दुर्जन परमिया जो लगे दूजे साध जन नानक है प्रभु जिया गुर सतगुर कै प्रसाद। पौड़ी थटन हारे थाट आपे ही थटिया आपे पूरा साहो आपे ही खटिया आपे करपा सार आपे रंग रटिया कुदरत कीमना पाए अलख ब्रह्मटिया। अगम अथाह बेअंत परे प्रटिया आपे वड पात साहो आप वजीर टिया। कोई न जाने कीम केवड मटिया सच्चा साहब आप गुरमुख प्रगटिया। श्लोक महला पंजवा सुन सज्जन प्रीतम मेरे आ मैं सतगुर देहो देखाल हों तिस देवा मन अपना नित हृदय रखा समाल। एकस सतगुर बाहरा त्रिक जीवन संसार जन नानक सतगुर तिना मिलायोन जिन सदही वरतै नाल। महला पंजवा मेरा अंतर लोचा मिलन की क्यों पावा प्रभ तोहे कोई ऐसा सज्जन लोड़ लहो जो मिले प्रीतम मोहे। गुरपुरे मिलाया जत देखा तत सोए जन नानक सो प्रभ सेवया तिस जेवड़िया वर ना कोए। पौड़ी देवन हार दा तार कित मुख सालाही है जिस रखे कृपा तार रिजक समाही है। कोय न किस ही वस सब ना एक तार पाले बालक वांग देके आप कर करदा अनंत विनोद किशु ना जानी है। सर्व तार समरथ हों तिस कुर्बानी है। गाइए रात दिनंत गावन जोगया जो गुर की पैरी पाहे तिन्नी हर रस भोगया। सलोक महला पंजवा भीड़ो मोकलाई की तियान सब रखे कुटुंब नाल कार्ज आप सवारियान सो प्रभ सदा संभाल। प्रभ मात पिता कंठ लाएंदा लहुड़े बालक पाल दयाल होए सब जी जंतर हर नानक नदर निहाल। महला पंजवा विण तुद होर जे मंगना सिर दुखा कै दुख देह नाम संतोखिया उतरै मन की भुख। गुरवण तिण हरिया कीतिया नानक क्या मनुख। पौड़ी सो ऐसा दातार मनो ना विसरै कड़ी ना मोहत चसा तिस बिन ना सरै। अंतर बाहर संग क्या को लुक करै जिस पत रखै आप सो भव जल तरै। भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा करै सो पूरा प्रधान जिसनो बल तरै। जिसै जराए आप सोई अजर जरै तिस ही मिलिया सच मंत्र गुरमंत्र है। सलोक महला पंजवा तन सो राग सुरंगड़े अलापत सब तिख जाए तन सो जंत सुहावड़े जो गुरमुख जप दे नाम। जिन्नी एक मन एक आराध्या तिन सदबलिहारै जाओ तिन की धूड़ हम बांश दे करमी पल्ले पाए। जो रते रंग गोविंद कै
ਹਾਂ ਸਤ ਬਲਿਹਾਰ ਹੈ।

जन नानक पाया अगम रूप अंत ना काहूं जाए महला पंजवा तन सो वेला कड़ी तन तन मूरत पलसार तन सो दिन सो संजोगड़ा जित डिठा गुरदरसार मन किया इच्छा पूरिया हर पाया अगमा पार हमें टुटा मोहड़ा एक सच नाम आधार जन नानक लगा सेवहार उदरिया सगल संसार पौड़ी सिफत सलाहन भगत विरले दितियां सौपे जिस भंडार फिर पुछ ना लीतियां जिसनों लगा रंग सो रंग रत्या ओना एको नाम आधार इका उन पत्या ओना पिछे जग पुंचे पो गई ओना प्यारा रब ओना हां जो गई जिस मिलिया गुरे आए तिन प्रभ जानिया हम बलिहारी तेनू जे खसमै पाणिया सलोक महला पंजवा हर एक सह नाल मैं दोस्ती हर एक सह नाल मैं रंग हर एक को मेरा सज्जनो हर एक सह नाल मैं संग हर एक सह नाल मैं गोष्टे मुह मैला करे ना भंग जाने बिरथा जी की कदे ना मुड़े रंग हर एको मेरा मसलती पन्नन कण समरथ हर एको मेरा दातार है सिर दातिया जग हथ हर एक सह दी मैं टेक है जो सिर सबना समरथ सतगुर संत मिलाया मस्तक तर कै हथ वड्डा साहिब गुरु मिलाया जिन तारिया सगल जगत मन किया इच्छा पूरियां पाया तुर संजोग नानक पाया सच नाम सद ही भोगे भोग महला पंजवा मनमुखा केरी दोस्ती माया कासन बंद।

व्यापया दुर्मत कबुद कमूड़ा मन लागा तस्मोहा ठगै सेती ठगरा ले आया साथ पे इको जेहा। सतगुर सराफ नदरी विख दो कड्डै ता उगड़े आया लोहा बहु तेरी थाई रलाए रलाए दिता उगड़िया पड़दा अगे आए खलोहा। सतगुर की जे सरणी आवै फिर मनूरो कंचन होहा। सतगुर निर्वैर पुत्र सत्र समाने औगण कटे करे सुध देहा। नानक जिस तुर मस्तक होवै लिखिया ते सतगुर नाल सनेहा अमृत बाणी सतगुर पूरे की। जिस कृपाल होवै तिस हृदय वसेहा आवन जाना तिसका कटी है। सदा सदा सुख होहा पौड़ी जो तुद पाणा जंत सो तुद बुझई जो तुद पाणा जंत सो दरगै सिजई। जिसनो तेरी नदर हम मैं तिस गई जिसनो तू संतुष्ट कल मल तिस खई। जिसकै स्वामी वल निरपव सो पई जिसनो तू कृपाल सच्चा सोथई। जिसनो तेरी माया ना पोहै अगनई तिसनो सदा दयाल जिन गुर ते मत लई। श्लोक महला पंजवा कर कृपा कृपाल आपे बख्श लै सदा सदा।

माधाना पर्वतकार नेत्र बासर माधाना पर्वतकार नेत्र बासक शब्द रिड़क्योन चौदह रतन निकाल्योन कर आवा गौण चिलक्योन कुदरत है वे खालियान जिन एवड पिंड ठिणक्योन लहणे तर उन छत्र सिर असमान के आड़ा शिक्योन

ਲਾਣ ਤਨਖ ਚੜਾਇਓ ਸਤ ਦਾ ਜਸ ਹੰਦਾ ਬਾਣ ਕਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਅੰਧਾਰ ਸਾ ਚੜਿਆ ਰਹਿ ਭਾਣ ਸਤੋ ਖੇਤ ਜਮਾਇਓ ਸਤੋ ਸ਼ਾਹਵਾਣ ਨਿਤ ਰਸੋਈ ਤੇਰੀ ਹੈ ਕਿਉ ਮੈਂ ਦਾ ਖਾਣ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਸੁਜੀਓ ਮਨ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਣ ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਨਿਵਾਰਿਓ ਕਰ ਨਦਰ ਨੀਸਾਨ ਆਓ ਤਰਿਆ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਸੋ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਣ ਚੱਖੜ ਵਾਉ ਨਾ ਡੋਲਈ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾਣ ਜਾਣੈ ਬਿਰਥਾ ਜੀ ਕੀ ਜਾਣੀ ਹੂੰ ਜਾਣ ਕਿਆ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਤੂੰ ਸੂੜ ਸੁਜਾਣ ਦਾਨ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵ ਸੀ ਸੋ ਸੱਤੇ ਦਾਨ ਨਾਨਕ ਹੰਦਾ ਛਤਰ ਸਿਰ ਉਮਤ ਹੈਰਾਨ ਸੋ ਟਿੱਕਾ ਸੋ ਬਹਿਣਾ ਸੋਈ ਦੀ ਬਾਣ ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਜੇ ਵਿਹਾ ਪੋਤਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰ ਆਤ ਨੈ ਸਵਾਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੈ ਧਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਅਤੈ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ ਅਟਲ ਅਥਾ ਹੋ ਅਤੋਲ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਪਾਉ ਕਰ ਸੇ ਤੁਦ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਲਬ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੁਦ ਸਾ ਪਰਵਾਰਿਆ ਤਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਹੈ ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪੈ ਸਕਾਰਿਆ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਹੈ ਗੁਰ ਅਮਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚਹੁੰਜੁਗੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਪੇ ਹੋਵਾ ਆਪੀ ਨੈ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਥੰਮ ਖਲੋਵਾ ਆਪੇ ਪੱਟੀ ਕਲਮ ਆਪ ਆਪ ਲਿਖਣ ਹਾਰਾ ਹੋਵਾ ਸਭ ਉਮਤ ਆਵਣ ਜਾਵਣੀ ਆਪੇ ਹੀ ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਵਾ ਤਖ਼ਤ ਬੈਠਾ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਖਵੈ ਚੰਦੋਵਾ ਉਗਵਣਾਉ ਤੈ ਆਥ ਬਣਾਉ ਚਉ ਚੱਕੀ ਕੀਅਨ ਲੋਵਾ ਜਿਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾ ਸੇਵਿਓ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਪਇਆ ਮੋਵਾ ਦੂਣੀ ਚਾਉਣੀ ਕਰਾ ਮਾਤ ਸੱਚੇ ਕਾ ਸੱਚਾ ਢੋਵਾ ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚਹੁ ਜੁਗੀ ਪੰਚਾਇਣ ਆਪੇ ਹੋਵਾ ਰਾਮ ਕਲੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਓ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਾਇਆ ਕਲਾਲਨ ਲਾਹਨ ਮੇਲੋ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁੜ ਕੀਨ ਰੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਮਤਸਰ ਕਾਟ ਕਾਟ ਕਸ ਦੀਨ ਰੇ ਕੋਈ ਹੈ ਰੇ ਸੰਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਅੰਤਰ ਜਾਂ ਕੋ ਜਪ ਤਪ ਦਿਓ ਦਲਾਲੀ ਰੇ ਏਕ ਮੂੰਦ ਪਰ ਤਨ ਮਨ ਦੇਵੋ ਜੋ ਮਦ ਏਕ ਲਾਲੀ ਰੇ ਰਹਾਓ ਭਵਨ ਚਤੁਰ ਦਸ ਪਾਠੀ ਕੀਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਤਨ ਜਾਰੀ ਰੇ ਮੁੰਦਰਾ ਮਦਕ ਸਹਿ ਤੁਨ ਲਾਗੀ ਸੁਖਮਨ ਪੋਚਨ ਹਾਰੀ ਰੇ ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਨੇਮ ਸੁਚ ਸੰਜਮ ਰਵ ਸਸ ਗਹਿਣੈ ਦਿਓ ਰੇ ਸੁਰਤ ਪਿਆਲ ਸੁਧਾ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹੋ ਮਹਾਰਸ ਪਿਓ ਰੇ ਨਿਜਰ ਧਾਰ ਚੁਵੈਤ ਨਿਰਮਲ ਇਹ ਰਸ ਮਨੁਮਾ ਰਾਤੋ ਰੇ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸਗਲੇ ਮਦ ਸ਼ੂਸ਼ੇ ਇਹ ਮਹਾਰਸ ਸਚੋ ਰੇ ਗੁੜ ਕਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰ ਮਹੁਆ ਭਉ ਪਾਠੀ ਮਨ ਧਾਰਾ ਸੁਖ ਮਨ ਨਾਰੀ ਸਹਿ ਸਮਾਨੀ ਪੀਵੈ ਪੀਵਨਹਾਰਾ ਔਦੂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਤਵਾਰਾ ਉਨ ਮਦ ਚੜਾ ਮਦਨ ਰਸ ਚਾਖਿਆ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਭਇਆ ਉਜਿਆਰਾ ਰਹਾਓ ਦੁਇਪੁਰ ਜੋਰ ਰਸਾਈ ਪਾਠੀ ਪੀਓ ਮਹਾਰਸ ਪਾਰੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀਏ ਜਲੇਤਾ ਛੁੱਟ ਗਈ ਸੰਸਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਿਆਨ ਗੁਰਗੰਮਤ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੁਧ ਪਾਈ ਤਾ ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਤਾਸ ਮਤ ਮਾਤਾ ਉਚਕ ਨਾ ਕਬ ਹੂੰ ਜਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸਵਾਮੀ ਉਡ ਗਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ ਰੱਖ ਲੀ ਨੀ ਹਰ ਮੇਰੀ ਅਬ ਤਬ ਜਬ ਕਬ ਤੁਹੀ ਤੁਹੀ ਹਮ ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖੀ ਸਦ ਹੀ ਰਹਾਓ ਤੋਰੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਹਰ ਬਸਿਓ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੀ ਤਪਤ ਬੁਝਾਈ
पहले दर्शन मगहर पायो फुन काशी बसे आई। जैसा मगहर तैसी काशी हम एक कर जानी। हम निरतन ज्यों हो तन पाया मरते फूट गुमानी। करे गुमान चुबै ते सूला को काढ़न कौ नाही। अजय सो चोभ कौ बिलल बिलाते नरके कोर पचाही। कवन नरक क्या सुर्ग बिचारा संतन दो उरादे। हम काहू की कांड न करते अपने गुर प्रसादे। अब तव जाए चढ़े सिंहासन मिले है सारंग पानी। राम कबीरा एक पय है कोई न सके पिछानी। संता मानो दूता डाना एह कुटवारी मेरी। दिवस रैन तेरे पाओ पलोसो केस चवर कर फेरी। हम कुकर तेरे दरबार पौके आगे बदन पसार। रहाओ पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक अब तो मिटिया ना जाई। तेरे द्वारे तुन सहज की माथे मेरे दगाई। दागे होए सो रन मैं जूझै बिन दागे पग जाई। साधु होए सो भगत पछाने हर ले खजाने पाई। कोठरे मैं कोठरी परम कोठी बिचार। गुरदीनी बस्त कबीर कौ ले वो बस्त समार। कबीर दी संसार कौ लीनी जिस मस्तक भाग। अमृत रस जन पाया थिरता का सोहाग। जेह मुख बेद गायत्री बिकसै। जेह मुख बेद गायत्री निकसै सो क्यों ब्राह्मण बिसर करै। जा कह पाए जगत सब लागै सो क्यों पंडित हर ना कह। काहे मेरे बामन हर ना कह। राम ना बोले पांडे दोजक परै। रहाओ आपन ऊंच नीच कर भोजन हठे कर्म कर उदर भरै। चौदस अमावस रच रच मांगै कर दीपक लै कूप परै। तू ब्राह्मण मैं काशीक जुलहा मोहे तोहे बराबरी कैसे कै बने। रा हमरे राम नाम कहे उबरे बेद भरोसे पांडे डू मरै। तरवर एक अनंत डार साखा पोह पत्र रस भरिया। ए अमृत की बाड़ी है रे तिन हर पूरे करिया। जानी जानी रे राजा राम की कहानी। अंतर ज्योत राम परगासा गुरमुख बिर लै जानी। रहाओ पावर एक पोह परस बीदा बारे ले उर तरिया। सोरे मदे पवन चकोरिया आकाशे फरफरिया। सहज सुन एक बिरवा उपजया धरती जल हर सोखिया। कह कबीर हों ताका सेवक जिने हो बिरवा देखिया। मुंद्रा मोहन दया कर चोली पत्र का करो बिचार रे। ए खिंथा हो तन सीओ अपना नाम करो आधार रे। ऐसा जोग कमावो जोगी जप तप संजम गुरमुख भोगी। रहाओ बुद्ध विभूत चढ़ाओ अपनी सिंगी सुरत मिलाई। कर बैराग फिर तन नगरी मन की किंगरी बजाई। पंच तत् लै हृदय रख रह निरालम ताड़ी। कहत कबीर सुनोरे संतो धर्म दया कर बाड़ी। कवन काज सिरजे जग पीतर जन्म कवन फल पाया। पवनिद तरन तारण चिंता मन एक निमख नायो मन लाया। गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन प्रभ जी ओ पिंड था दिया। जिसकी पाओ भक्त ने साधी। रहाओ पारतान पारतान पारती निंदा पर अपवाद ना छूटै। आवागमन होत है फुन फुन एहो प्रसंग ना टूटै। जेह कर कथा हो त्यार संतन एक निमख ना कीनो मैं फेरा। लंपट चोर दूत मतवारे तिन संसदा बसेरा। काम क्रोध माया मद मत्सर ए संपै मोह माही। दया धर्म यार गुर की सेवा ए सुपनंतर नाही। दीन दयाल कृपाल दमोदर भगत वछर पैहारी। कहत कबीर पीर जन राखो हर सेवा करो तुम्हारी।
जिहे सिमरन होए मुक्त द्वार, जाहे बैकुंठ नहीं संसार, निरपौ कै कर बजावै तूर, अनहद बजै सदा भरपूर, ऐसा सिमरन कर मन माहे, बिन सिमरन मुक्त कत नाहीं रहाओ, जे सिमरन नाही नरकार, मुक्त करै उतरै बो पार, नमस्कार कर हृदय माहे, फिर तेरा यावन नाहे, जे सिमरन करै तू केल, दीपक बान धरियो बिन तेल, सो दीपक अमरक संसार, काम क्रोध बेकाडी ले मार, जे सिमरन तेरी गत होए, सो सिमरन रख कंठ पर होए, सो सिमरन कर नहीं राखो तार, गुर प्रसादी उतरै पार, जे सिमरन नाही तोहे कान, मंदर सोवै पटंबर तान, से सुखाली बिकसै जियो, सो सिमरन तू आंदन पियो, जे सिमरन तेरी जाए बलाए, जे सिमरन तुझ पोहै नाम आए, सिमर सिमर हर हर मन गाइयै, एहो सिमरन सतगुर ते पाइयै, सदा सदा सिमर दिन रात, उठत बैठत सास ग्रास, जाग सोए सिमरन रस भोग, हर सिमरन पाइयै संजोग, जे सिमरन नाही तुझ पार, सो सिमरन राम नाम आधार, कहे कबीर जाका नहीं अंत, तिसके आगे तंत न मंत, राम कली कर दूजा, बाणी कबीर जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद बंद च बंधन पाया, मुक्त गुर अनल बुझाया, जब नख सिख एहो मन चीना, तब अंतर मज्जन कीना, पवन पत ओन मानो रहन खरा, नहीं मृत ना जन्म जरा रहाओ, उल्टी ले सख्त सहारंग, पैसी ले गगन मझारंग, बेदी अले चक्र पयंगा, पेटी अले राय नसंगा, चूकी अले मोह मयासा, सस कीनो सूर गिरासा, जब कुंभक भरपुर लीना, तह बाजे अनहद बीणा, बगतै बग शब्द सुनाया, सुनतै सुन मन बसाया, कर करता उतर सपारंग, कह कबीरा सारंग, चंद सूरज दोय जो स्वरूप, ज्योति अंतर ब्रह्म अनूप, कर रे ज्ञानी ब्रह्म विचार, ज्योति अंतर धरिया पसार रहाओ, हीरा देख हीरे करो आदेश, कह कबीर निरंजना लेख, दुनिया होशियार बेदार जागत, मुसीयत हौरे पाई, निगम होशियार पहरुआ, देखत जम ले जाई रहाओ, नींब पयो आंब, आंब पयो नींबा, केला पाका चार, नालियेर फल से बरपाका, मूर्ख मुग्ध गवार, हर पयो खांड, रेत मैं बिखरियो, हस्ती चुन्यो ना जाई, कह कमीर कुल जात पाता, जो चीटी होए चुन खाई, बाणी नाम देव जियो की, राम कली कर पहला, एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, आनी ले कागद, काटी ले गुडी, आकाश मदे भरमी अले, पंच जना स्यों बात बतौआ, चीत सो डोरी राखी अले, मन राम नामा बेदी अले, जैसे कनक कला चित मांडी अले रहाओ, आनी ले कुंभ, पराई ले उदक, राजकुमार पुरंदरीये, हस्त बिनोद विचार करती है, चीत सो गागर राखी अले, मंदर एक द्वार दह जाके, गऊ चरावन छाडी अले, पांच कोस पर गऊ चरावत, चीत सो बछरा राखी अले, कहत नाम देव सुनो तिलोचन, बालक पालन पौडी अले, अंतर बाहर काज विरोधी, चीत सो बार कराखी अले, वेद पुराण शास्त्र अनंता, गीत कवित ना गावो गो, अखंड मंडल निरंकार मैं, अनहद वेद मजाओ गो, बैरागी राम गावो गो, शब्दा तीता नह दराता, या कुल कह कर जाओ गो रहाओ, एड़ा पिंगला और सुख मना।

माय ना होती, बाप ना होता, कर्म ना होती काया, हम नहीं होते, तुम नहीं होते, कौन कहां ते आया। राम कोई न किसी केरा, जैसे तरवर पंख बसेरा रहाओ। चांद ना होता, सूर ना होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र ना होता, वेद ना होता, कर्म कहां ते आया। खेचर पूचर तुलसी माला, गुर प्रसादी पाया, नामा प्रणवै परम तत् है, सतगुरु होए लिखाया। राम कली कर दूजा, बनारसी तप करै, उल्ट तीर्थ मरै, अग्न दह काया कल्प की जय। असमेध जग की जय, सोना गर्भ दान दी जय। राम नाम सर तऊ न पूजै, छोड़ छोड़ रे पाखंडी, मन कपट ना की जय। हर का नाम नित नित ली जय रहाओ। गंगा जाओ गोदावर जाइए, कुंभ जाओ केदार नाइए, गोमती सहस गऊ दान की जय। कोट जाओ तीर्थ करै, तन जाओ हिवाले गारै, राम नाम सर तऊ न पूजै। अस दान गज दान, सहजा नारी भूम दान, ऐसो दान नित नित की जय। आत्म जाओ।

निर्मल निर्वाण पद चिन्ह लीजै, जथ रथ राय नंद राजा मेरा राम चंद, प्रणवै नामा तत रस अमृत पीजै, राम कली बाणी रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनपौ पाओ न दर्शै,

काम क्रोध माया मद मत्सर इन पंचों मिल लूटे रहाओ। हम बाडो कब कुलीन हम पंडित हम जोगी सन्यासी ज्ञानी गुनी सूर हम दाते एह बुद्ध कबै ना नासी। कहो रविदास समय सबै नहीं समझस भूल परे जैसे बौरे मोहे आधार नाम नारायण जीवन प्राण तन मोरे। राम कली बाणी बेणी जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एड़ा पिंगला और सुख मना तीन बसाए कठाई बेणी संगम तह पिराग मन मज्जन करे तिथाई। संतो तहां निरंजन राम है गुरगम चीने बिरला कोए तहां निरंजन रमैया होए रहाओ। देव स्थान क्या निशानी तह बाजे सबदा नाहद बाणी तह चंदना सूरज पौन ना पानी साखी जागी गुरमुख जानी। उपजै ज्ञान दुरमत शीजै अमृत रस गगन अंतर पीजै एस कला जो जाने पे ओ पेटै तास परम गुरदेओ। दसम द्वारा अगमया पारा परम पुरख की घाटी ऊपर हाट हाट पर आला आले पीतर थाती। जागत रह सो कवो ना सोवै तीन तलोक समाद पलोवै बीज मंत्र लै हिरदय रह मनुआ उल्ट सुन महंग है। जागत रह न अलिया पाख पांचों इंद्री बस कर रख गुर की साखी राख चीत मन तन अर्पै कृष्ण प्रीत। कर पल्लव साखा बिचारे अपना जन्म न जुए हारे। असर नदी का बंदे मूल पच्छम फेर चढ़ावे सूर। अजर जरै सो निजर चरै जगन्नाथ्यो गोष्ठ करै चौमुख दीवा जो द्वार पलुवंत मूल बिचकार। सर्व कलाले आपे रहै मन मान करत नामे गुहै। मस्तक पद्म द्वाले मणि माहे निरंजन त्रिपवन धनी पंचे शब्द निर्मा

मेरे मानो जप अहनस नाम हरे, कोट कोट दोख भव कीने, सब पर हर पास धरे रहाओ। हर हर नाम जप आराध सेवक पाए खरे, किल विख दोख गए सब निकर, जो पानी मैल हरे। खिन खिन नर नारायण गावे, मुख बोले नर नर हरे। पंच दोख या साध नगर में, एक खिन पल दूर करे। वडभागी हर नाम ते आवे, हर के भगत हरे। तिनकी संगत देह प्रभ जाचौ, मैं मूड मुग्ध निस्तरे। किरपा किरपा धार जग जीवन, रख ले वो शरण परे। नानक जन तुमरी शरण आई, हर राखो लाज हरे। नट महला चौथा, राम जप जन रामे नाम रले। राम नाम जपयो गुर बचनी, हर तारी हर कृपले रहाओ। हर हर अगम अगोचर स्वामी, जन जप मिलो सलल सलले। हर के संत मिल राम रस पाया, हम जन के बल बलले। परखोत्म हर नाम जन गायो, सब दालद दुख दलले। विच देही दोख असाध पंच धातु, हर किए खिन परले। हर के संत मन प्रीत लगाई, जो देखे सस कमले। उनवे कान कान कान हर गरजे, मन बिकसे मोर मुरले। हमरे स्वामी लोच हम लाई, हम जीवे देख हर मिले। जन नानक हर अमल हर लाए, हर मेलो अंद भले। नट महला चौथा, मेरे मन जप हर हर नाम सखे। गुर प्रसादी हर नाम ते आयो, हम सतगुर चरण पखे रहाओ। उत्तम जगन्नाथ जगदीशरो, हम पापी शरण रखे। तुम वड पुरख दीन दुख भंजनो, हर दियो नाम मुखे। हर गुनी ऊच नीच हम गाए, गुर सतगुर संग सखे। जो चंदन संग बसे निम बिरखा, गुण चंदन के बसखे। हमरे अवगन बिखिया बिखे के, बहु बार बार निमखे। अवगन आरे पाथर पारे, हर तारे संग जनखे। जिनको तुम्हार रखो स्वामी, सब तिनके पाप क्रिखे। जन नानक के दयाल प्रभ स्वामी, तुम दुष्ट तारे हरण खे। नट महला चौथा, मेरे मन जप हर हर राम रंगे। हर हर कृपा करी जगदीशर, हर त्यायो जन पग लगे रहाओ। जन्म जन्म के भूल चूक, हम अब आए प्रभ शरण गे। तुम शरणागत प्रतपालक स्वामी, हम राखो वड पाप गे। तुमरी संगत हर को ना उधरे हो, प्रभ किए पतत पवगे। गुण गावत शिपा दुष्टारे हो, प्रभ राखी पैज जनगे। जो तुमरे गुण गावे स्वामी, हाँ बल बल बल तिनगे। पवन पवन पवित्र सब किए, जह तूर परी जन पगे। तुमरे गुण प्रभ कह ना सके, हम तुम वड वड पुरख वडगे। जन नानक कहो दया प्रभ धारो, हम सेवै तुम जन पगे। नट महला चौथा, मेरे मन जप हर हर नाम मने। जगन्नाथ कृपा प्रभ धारी, मत गुरमत नाम बने रहाओ। हर जन हर जस हर हर गायो, उपदेश गुरु गुर सुने। किल विख नाम किल विख पाप, नाम हर काटे जब खेत किरसान लुने। तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानो, हम कह ना सके हर गुने। जैसे तुम तैसे प्रभ, तुम ही गुण जानो प्रभ अपने। माया फास बंद बहु बंदे, हर जप्यो खुल खुलने। ज्यो जल कुंचर तंदुए बंदो, हर चेत्यो मोख मुखने। स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम खोजो जुग जुगने। तुमरी था पाई नहीं पावे, जन नानक के प्रभ वडने। नट महला चौथा, मेरे मानो कल कीर्त हर प्रवणे। हर हर दयाल दया प्रभ धारी, लग सतगुरु हर जपने रहाओ। हर तुम वड अगम गोचर स्वामी, सब त्यावै हर रुणने। जिनको तुमरे वड कटाख है, ते गुरमुख हर सिमरने।
ਇਹੋ ਪਰਪੰਚ ਕੀਆ ਪ੍ਰਭ ਸਵਾਮੀ ਸਭ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜੁਗਣੇ ਜਿਉ ਸਲਲੈ ਸਲਲ ਉਠੈ ਬਉ ਲਹਿਰੀ ਮਿਲ ਸਲਲੈ ਸਲਲ ਸਮਣੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਆ ਸੋ ਤੁਮਹੀ ਜਾਨੋ ਹਮ ਨੈ ਜਾਹੀ ਹਰ ਗਹਿਣੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਕੌਰ ਦੇ ਉਸਤ ਧਾਰੋ ਹਮ ਕਰੈ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਣੇ ਤੁਮ ਜਲ ਨਿਧਾਰ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਜੋ ਸੇਵੈ ਸਭ ਫਲਣੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਬਾਂਛੈ ਹਰ ਦੇਵੋ ਕਰ ਕਿਰਪਣੇ ਨਟ ਨਾਰਾਇਣ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਪੜਤਾਲ ਏਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੇਵ ਸਫਲ ਹਰ ਕਾਲ ਲੇ ਗੁਰਪਗਰੇ ਨਰਵਾਲ ਸਭ ਦਾਲਦ ਪਾਈ ਦੁਖਦਾਲ ਹਰ ਹੋ ਹੋ ਹੋ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਰਹਾਓ ਹਰ ਕਾ ਗ੍ਰਹਿਓ ਰਿਆਪ ਸਵਾਰਿਓ ਹਰ ਰੰਗ ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਬੇਅੰਤ ਲਾਲ ਲਾਲ ਹਰ ਲਾਲ ਹਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਆਪ ਗ੍ਰਹਿ ਆਇਓ ਹਮ ਹਰ ਕੀ ਗੁਰ ਕੀ ਹੈ ਬਸੀਠੀ ਹਮ ਹਰ ਦੇਖੇ ਭਈ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ।

नारी पुरख पुरख सब नारी सब एको पुरख मुरारे संत जना की रेन मन पाई मिल हर जन हर निस्तारे ग्राम ग्राम नगर सब फिरया हृदय अंतर हर जन पारे सरदा सरदा उपाय मिलाए मोको हर गुर गुर निस्तारे पवन सूत सब नीका करया सतगुर शब्द विचारे निज कर जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारे तौ गुण ईस वर्ण नहीं सको तुम मंदर हम निक कीरे नानक कृपा।

अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद अनक जतन कर रहे हर अंत नाही पाया। हर अगम अगम अगाध बोध आदेश हर प्रभराया रहाओ। काम क्रोध लो मोह निर्चगर ते चगराया। हम राख राख दीन तेरे हर सरन हर प्रभ आया। शरणागति प्रद प्रभ पालते हर भगत वच्छल नाया। प्रहलाद जन हर नाख पकड़िया हर लाख ली उतराया। हर चेतरे मन महल पावन सब दुख पंजन राया। पौ जन मरण निवार ठाकर हर गुरमति प्रभ पाया। हर पतत पावन नाम स्वामी पौ भगत पंजन गाया। हर हार हर उतारो जन नानक नाम समाया। माली गौड़ा महला चौथा जप मनो राम नाम सुखदाता। सतसंगत मिल हर साध आया गुरमुख ब्रह्म पिछाता रहाओ। वडभागी गुर दर्शन पाया गुर मिले हर प्रभ जाता। दुर्मत मैल गई सब नीकर हर अमृत हर सरनाता। तन तन साध जिनी हर प्रभ पाया तिन पूछो हर की बाता। पाए लगो नित करो जुदरिया हर मेलो कर्म विधाता। लिलाट लिखे पाया गुर साधु गुर बचनी मंतन राता। हर प्रभ आए मिले सुख पाया सब किल विख पाप गवाता। राम रसा

मेरे मन पज हर हर नाम गोपाला, मेरा मन तन लीन पया राम नाम, मत गुरमत राम रसाला रहाओ। गुरमत नाम त्याई हर हर मन जपिया, हर जप माला जिनके मस्तक लिखिया, हर मिलिया हर बनवाला। जिन हर नाम ते आया तिन चूके सर्ब जंजाला, तिन जम नेड़ ना आवई गुर राखे हर रखवाला। हम बारक किशु ना जानहु, हर मात पिता

थोर कही हर अगम अगम अगाध तुही ऊच मूचो बहवा पार सिमरत नानक तरे सार माली गौड़ा महला पंजवा इही हमारा सफल काज अपने दास तो लेहो निवाज रहाओ चरण संतै माथ मोर नैन दर्स पेखो निस्पोर हस्त हमरे संत टहलो प्राण मन तन संत बहलो संत संग मेरे मन की प्रीत संत गुण बसै मेरा चीत संत आज्ञा मन है मीठ मेरा कमल बिकसै संत डीठ संत संग मेरा होए निवास संतन की मोह बहुत प्यास संत बचन मेरे मन है मंत संत प्रसाद मेरे बिखै हंत मुकत जुगत एहा निधान प्रभ दयाल मोह देवो दान नानक कहो प्रभ दया तार चरण संतन के मेरे हृदय मजार माली गौड़ा महला पंजवा सब कै संगी नाही दूर करन करावन हाजरा हजूर रहाओ सुनत जियो जास नाम दुख बिन से सो कियो विश्राम सगल निध हर हर हरे मुन जनता की सेव करे जां कै घर सगले समाहे जिसते बिरथा कोई नाहे जी जंतर करे प्रतपाल सदा सदा सेवो कृपाल सदा धर्म जां कै दीबाण बेमोहताज नहीं किश काण सब किश करना अपने आप रे मन मेरे तू ता को जाप साध संगत को हम बलिहार जास मिल होवै उधार नाम संग मन तन है रात नानक को प्रभ करी दात माली गौड़ा महला पंजवा दो पदे एको अंकार सतगुर प्रसाद हर समर्थ की सरना जियो पिंड तन रास मेरी प्रभ एक कारण करना रहाओ सिमर सिमर सदा सुख पाईए जीवन का मूल रव रहया सरबत ठाई सूख मोह स्थूल आल जाल बेकार तज सब हर गुणा नित गाओ कर जोड़ नानक दान मांगे देहो अपना नाओ माली गौड़ा महला पंजवा प्रभ समरथ देव अपार कौन जाने चलत तेरे किशंत नाही पार रहाओ एक खिन है था प्यो थापदा कड़ पन करने हार जेत कीने पार जना प्रभ दान दे दातार हर सरन आयो दास तेरा प्रभ ऊच अगम मुरार कड़ लेहो पौ जल बिखमते जन नानक सद बलिहार माली गौड़ा महला पंजवा मन तन बस रहे गोपाल दीन बांधव भगत वच्छल सदा सदा कृपाल रहाओ आदि अंते मद तू है प्रभ बिना नाही कोए पूर रहया सगल मंडल एक स्वामी सोए करन हर जस नेत्र दर्शन रसन हर गुण गाओ बलिहार जाए सदा नानक देहो अपना नाओ माली गौड़ा बाणी भगत नाम देव जी की एको अंकार सतगुर प्रसाद तन तन ओ राम बेन बाजै मदर मदर

मैया कवलापति तन तन बन खंड बिंद्रा बना जय खेल श्री नारायण बिन बजावे गोदन चरै नामे का स्वामी आनंद करै मेरो बाप माधो तू तन केसो सांवलियो बीठ लाए रहाओ कर तरे चक्कर बैकुंठ ते आए गज हस्ती के प्राण उधारी अले दो शासन की सभा द्रौपदी अंबर ले त्योबारी अले गौतम नार अहल्या तारी पावन केतक तारी अले ऐसा अदम अजात नाम देओ तो शरणागत आई अले सबै घट राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले रे रहाओ एकल माटी कुंजर चीटी भांजन है बहु नाना रे अस्थावर जंगम कीट पतंगम कट कट राम समाना रे एकल चिंता राखे अनंता और तजो सब आसा रे प्रणवै नामा पहने कामा को ठाकर को दासा रे राग मारू महला पहला कर पहला चौप दे एको अंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ता जूनी सह पंगुर प्रसाद सलोक साजन तेरे चरण की होए रहा संतूर नानक शरण तुहारिया पेखो सदा हजूर शबद पिछो राती सदड़ा नाम खसम काले खेमे छत्र सराए चे दिसन रथ पीड़े जिन्नी तेरा नाम ते आया तिन को सद मिले बाबा मैं कर्महीन कूड़ियार नाम ना पाया तेरा अंधा परम भूला मन मेरा रहाओ साध कीते दुख पर फोड़े पूर्व लिखे माए।

गया सो जो बनो तन पछताणी, तू दाना साहिब सिर मेरा, खिजमत करी जन बंदा तेरा, भणत नानक अंदेसा यही, बिन दर्शन कैसे रवो स्नेही। मारू महला पहला, मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाम सुपागा, गुर की बचनी हट बेकाना, जित लाया तित लागा, तेरे लाले क्या चतराई, साहिब का हुक्म ना करना जाई रहाओ। मां लाली प्यो लाला मेरा, हाँ लाले का जाया, लाली नाचे लाला गावे, भगत करो तेरी राया, पिए ता पानी आनी मीरा, खाहे ता पीसन जाओ, पखा फेरी पैर मलोवा, जपत रहा तेरा नाओ। लूण हरामी नानक लाला, बख्शै तुद वड्याई, आ जुगा दया पदाता, तुद बिन मुक्त ना पाई। मारू महला पहला, कोई आखे पूतना, को कह बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा, पया दीवाना साहका, नानक बौराना, हो हर बने।

तौ देवान ना जानिया जा एकाकार कमाए हुक्म पछाण खसम का दूजी अवर सियाण पकाए। तौ देवाना जानिया जा साहिब तरे प्यार मंदा जाने आप कहो अवर भला संसार। मारू महला पहला एहो तन सरबर आ भरपूर मनुख फिर से जाने दूर। सो तन वखर नाम हृदय हमारा जिस तू देह।

जप हर हर नाम छिड़ावै जियो रहाओ सुख सागर अमृत हर नाओ मंगत जन जाचै हर देहो पसाओ हर सत सत सदा हर सत मेरा मन भावै जियो नवे छिद्र स्रवै अपवित्रा बोल हर नाम पवित्र सब किता जे हर सो प्रसन्न होवै मेरा स्वामी हर सिमरत मन लै जावै जियो माया मोह बिखम है भारी क्यों तरिया दुत्तर संसारी सतगुर बोहिथ दे प्रभ साचा जप हर हर पार लंघावै जियो तू सरबत्र तेरा सब कोई जो तू करै सोई प्रभ होई जन नानक गुण गावै बेचारा हर पावै हर थाए पावै जियो मारू महला चौथा हर हर नाम जपो मन मेरे सब किल विख काटै हर तेरे हर तन राखो हर तन संचो हर चलद्या नाल सिखाई जियो जिसनो कृपा करे सो त्यावै नित हर जप जापै जप हर सुख पावै गुर प्रसादी हर रस आवै जप हर हर पार लंघाई जियो रहाओ निरपौ निरंकार सतनाम जग में सृष्टि उत्तम काम दुश्मन दूत जमकाल ठेहे मारो हर सेवक नेड़ न जाई जियो जिस उपर हर का मन मानिया सो सेवक चहो जुग चहो कुंट जानिया

नहीं चलता। जिस हर राखे तिस कौन मारे, जिस करता आप छिड़ाई जियो। हवन दे नाम लई करतारे, जिन सेवक भगत सबे निस्तारे। दस अठ चार वेद सब पूछो, जन नानक नाम छिड़ाई जियो। मारू महला पंजवां, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। डर पै तरत आकाश नखियत्रा, सिर उपर अमर करारा। पौन पानी बैसंतर डर पै इंद्र बिचारा। एका निरपौ बात सुनी, सो सुखिया सो सदा सुहेला। जो गिरमिल गाय गुनी रहाओ, देह तारे अर देवा डर पै से साधक डर मोया। लख चौरासी मर मर जन्मे, फिर जो नी जोया। राजस सातक तामस डर पै, केते रूपयो पाया। शल बपरी कौला डर पै, अत डर पै धर्म राया। सगर समग्री डर ब्यापी, बिन डर करण हारा। कहो नानक भगतन का संगी, भगत सोह दरबारा। मारू महला पंजवा, पांच बरख को अनाथ त्रू बारक। हर सिमरत अमर अटारे, पुत्र हेत नारायण कहो जम कंकर मार बिदारे। मेरे ठाकर केते अगंत उधारे, मोहे दीन अल्प मत निर्गुण। परयो सरन द्वारे रहाओ, बालमीक सुपचारो तरयो। बद्धक तरे बिचारे, एक निमख मन माहे अराध्यो। गदपत पार उतारे, कीनी रखिया भगत प्रहलाद। हर नाक्ष नखे बिदारे, बिदर दासी सुत भयो पुनीता। सगले को लियो जारे, कवन पराध बतावो अपने। मिथ्या मोह मगनारे, आयो साम नानक ओट हर की। लीजे पूजा पसारे, मारू महला पंजवा। वेतन वेत प्रमयो बहु भांति, अनक जतन करताए। जो जो कर्म किए हो मैं, ते पै आ जाए। अवर दिन काहू काज न लाए, सो दिन मोको दीजे प्रभ जियो। जा दिन हर जस गाए रहाओ, पुत्र कलत्र गृह देख पसारा। इसी मैं उर जाए, माया मद चाख पय उदमाते। हर हर कबो न गाए, एह बिद खोजी बहु प्रकारा। बिन संतन नहीं पाए, तुम दा तार वड्डे प्रभ समरथ। मांगन कौ दान आए, त्याग्यो सगला मान महत्ता। दास रेण शरण आए, कहो नानक।

कवन चहन सुन ऊपर शोहयो मुखते सुन कर गारा। सुनो रे तू कौन कहां ते आयो, एती ना जानो केती क मुद्दत चलते खबर ना पायो रहाओ। सहनशील पवन यार पानी बसदा खिमा ने प्राते, पंच तत् मिल पयो संजोगा इनमें कवन दुराते। जिन रच रचिया पुरख विधाता नाले हमें पाई, जन्म मरण उस ही कौ है रे ओहा आवै जाई। बरन चेहन नाही किछ रचना मिथ्या सगल पसारा, पंत नानक जब खेल उजारै तब एक है एक अंकारा। मारू महला पंजवा मान मोहवर लोभ विकारा, बियो चीतना कालेओ नाम रतन गुणा हर वणजे वा लाद वखर लै चालेओ। सेवक की ओड़क निभी प्रीत जीवत साहेब सेवयो अपना, चलते राख्यो चीत रहाओ। जैसी आज्ञा कीनी ठाकरो तिस्ते मुख नहीं मोरयो, सहजानंद रख्यो गृह भीतर उठ वाहू कौ दौरयो। आज्ञा मैं भूख सोई कर सूखा सो घर खनी जान्यो, जो जो हुक्म पयो साहिब का सो माथे ले मान्यो। पयो कृपाल ठाकुर सेवक सवरे हलत पलाता, तन सेवक सफल ओह आया जिन नानक खसम पछाता। मारू महला पंजवा खुलिया कर्म कृपा पई ठाकर, कीर्तन हर हर गाई श्रमथा का पाए बिश्रामा, मिट गई सगली ताई। अब मोहे जीवन पदवी पाई, चीत आयो मन पुरख विधाता संतन की शरणाई रहाओ। काम क्रोध लोभ निवारे निवरे सगल बैराई, सद हजूर हाजर है नाजर कत न पयो दुराई। सुख शीतल सरदासा पूरी होए संत सहाई, पावन पतथ किए खिन पीतर मैं मां कथन ना जाई। निरपौ पय सगल पै खोए गोबिंद चरण उटाई, नानक जस गावे ठाकर का रहन दिन सलिवलाई। मारू महला पंजवा जो समरथ सर्व गुण नायक, तिसको कबो न गाव सिरे, छोड़ जाए खिन पीतर ता कौ ओआ कौ फिर ताव सिरे। अपने प्रभ कहो क्यों ना समार सरे, बैरी संग रंग रस रचिया तिस्यों जिया रा जार सरे रहाओ। जा कै नाम सुनिया जम छोड़ै ताकी सर ना पाव सरे, काड़ दे स्याल बपरे कहो ताकी ओट टिकाव सरे। जिसका जास सुनत पवतरी है ता स्यो रंग ना लाव सरे, थोरी बात अल्प सुपने की बहुर बहुर अटकाव सरे। पयो प्रसाद कृपा निद ठाकर संत संग पत पाई, कहो नानक त्रै गुण प्रम छूटा जाओ प्र पय सहाई। मारू महला पंजवा अंतर जामी सब जान तिस्ते कहां दुलारे हो, हस्त पाव चरेखन पीतर अग्न संग लै जा रहे हो। मूड़े तै मंते राम बिसारे हो, लून खाए करे हराम खोरी पेखत नैन बिदारे हो रहाओ। असाध रोग उपजो तन पीतर टरत ना काहू टारे हो, प्रभ बिसरत महा दुख पायो एहो नानक तत् बिचारे हो। मारू महला पंजवा चरण कमल प्रभ राखे चीत, हर गुण गावे नीता नीत। तिसबिन दूजा अवर ना को वाद मद अंत है सो, संतन की ओट आपे आप रहाओ। जा कै वस है सगल संसार आपे आप आप निरंकार, नानक गयो साचा सोए सुख पाया फिर दुख ना होए। मारू महला पंजवा कर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद
प्राण सुखदाता जी सुखदाता तुम काहे बिसार्यो अज्ञानथ। होछा मद चाख होए तुम बावर दुलभ जन्म आकारथ। हरे नर ऐसी करै अज्ञानथ तज सारंग धर भ्रम तू पूला। मोहे लपट्यो दासी संगसानथ रहाओ। धरणी धर त्याग नीच कुल सेवै हाँ करत बिहावथ। फोकट कर्म करै अज्ञानी मनमुख अंध कहावत। सत होता असत कर मानिया जो बिनसत सो निचर जानथ। पर की कौ अपनी कर पकरी ऐसे पूल पुलानथ। खत्री ब्राह्मण सूद वैस सब एक नाम तरानथ। गुरु नानक उपदेश कहत है जो सुने सो पार परानथ। मारू महला पंजवा गुप्त करता संग सो प्रभु डहकावे मनुखाए। विसार हर जियो बिखै भोगै तब्त थम गल लाए। रे नर काए पर ग्रह जाए कुचल कठोर काम गर्दप। तुम नहीं सुनियो धर्म राय रहाओ। बेकार पाथर गले बांधे निंद पोट सिराए। महासागर समुंद लंघना पार ना पर ना जाए। काम क्रोध लो मोहे ब्यापेओ नेत्र रखे फिराए। शीस उठावन ना कबहू मिलई महादुत्तर माए। सूर मुक्ता शशि मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी अलपाए। स्वभावत जैसे बैसंतर अलिप्त सदा निर्मलाए। जिस

पूर्णा तरफ त्यागाए, सहज समाध सुभाए, हर भंडार हाथ आया, नानक गुरते पाया। मारू महला पंजवां, कर छेवां, दो पदे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद छोड़ सगल सियाण पा, मिलसा त्यागुमान, अवर सब किश मिथिया, रसना राम राम वखान, मेरे मन करन सुन हर नाम, मिट है अग तेरे जन्म जन्म के, कवन बपरो जाम, रहाओ दुख दीन ना पाओ ब्यापै, मिले सुख विश्राम, गुर प्रसाद नानक बखाना, हर भजन तत् ज्ञान। मारू महला पंजवा, जिन्नी नाम विसारिया, से होत देखे खेह, पुत्र मित्र बिलास बनता, टूटते ए नेह, मेरे मन नाम नित नित लेह, जलत नाही अग्न सागर, सूख मन तन देह, रहाओ बिरख छाया जैसे बिनसत, पवन झूलत में है, हर भगत दृढ़ मिल साध नानक, तेरा काम आवत ए है। मारू महला पंजवा, पुरख पूर्ण सुख है दाता, संग बस्तो नीत, मरे ना आवे ना जाए बिनसै, व्यापत उसन ना सीत, मेरे मन नाम स्यों कर प्रीत, चेत मन में हर हर निदाना, एह निर्मल रीत, रहाओ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद, जो जपै ते सीद, नवल नवतन चतर सुंदर, मन नानक ते संग बीद। मारू महला पंजवा, चलत बैस्त सोवत जागत, गुरमंत्र हृदय चितार, चरण सरन पज संग साधु, भव सागर उतरै पार, मेरे मन नाम हृदय तार, कर प्रीत मन तन लाए हर स्यों, अवर सगल विसार, रहाओ जियो मन तन प्राण प्रभ के, तू अपने आप निवार, गोविंद भज सब स्वार्थ पूरे, नानक कबो ना हार। मारू महला पंजवा, तज आप बिनसी ताप, रेण साधु थियो, तिसै प्राप्त नाम तेरा, कर कृपा जिस दियो, मेरे मन नाम अमृत पियो, आन साध विसार होचे, अमर जुग जुग जियो, रहाओ नाम एक रस रंग नामा, नाम लागी लियो, मीत साजन सखा बंधप, हर एक नानक कियो। मारू महला पंजवा, प्रतपाल माता उदर राखै, लगन देत ना सेक, सोई स्वामी इहां राखै, बूद बूझ बुद्ध बबेक, मेरे मन नाम की कर टेक, तिसै बूझ जिंतू किया, प्रभ करण कर नेक, रहाओ चेत मन में तज सियाणप, छोड़ सगले भेख, सिमर हर हर सदा नानक, तरे कई अनेक। मारू महला पंजवा, पतत पावन।

साध संगत गुण उचारण हर नाम अमृत पाथ करो कृपा मुरार माधव सुन नानक जी वै गाथ मारू अंजलि महला पंजवा कर सतवा एको अंकार सतगुर प्रसाद संजोग विजोग तुरो ही हुआ पंच तात कर पुतला किया साहे कै फुरमायड़ जी देही विच जियो आए पया जिथै अगन पखे पड़हारे ऊर्द मुख मह गोबारे सास सास माले सोई उथै खसम छडाए लया विचों गरबै निकल आया खसम सार दुनी चितलाया आवै जाए पवाई है जोनी रहना किथी थाए पया मेहरवान रख लयन आपे जी जंत सब तिसके थापे जन्म पदार्थ जिन चलिया नानक आया सो परवान थिया मारू महला पंजवा वैदो ना वाई पहनो ना पाई एको सहाई राम हे कीता जिसो होवै पापा मलो धोवै सो सिमरो प्रधान हे घट घटे वासी सर्व निवासी अस्थिर जाका थान है आवै ना जावै संगे समावै पूर्ण जाका काम है भगत जना कौ राखण हारा संत जीवै जब प्राण आधारा करण कारण समर्थ स्वामी नानक तिस कुर्बान है एक ओवंकार सतगुर प्रसाद मारू महला नावा हर को नाम सदा सुखदाई जा कौ सिमर अजा मल उदरियो गन काहू गत पाई रहाओ पंचाली कौ राजसभा मैं राम नाम सुदयाई ताको दुख हरियो करना मैं अपनी पैज बढ़ाई जेह नर जस कृपा निध गायो।

युगत सुजान स्वामी सदा रखन हार, दुख दुख दर्द कलेस बिनसै जिस बसै मन माहे, मृत नरक अस्थान बिखड़े बिखना पोहै ताहे, रिद सिद्ध नवनिध जाकै अमृता प्रवाह, आदि अंते मध पूर्ण ऊच अगमय गाहा, सिद्ध साधक देव मुन जन वेद करै उचार, सिमर स्वामी सुख सहज पुंचै नहीं अंत पारावार, अनक प्राशित मिटै खिन मैं हृदय जप भगवान, पावना ते महापावन कोटदान इशनान, बल बुद्ध सुध प्राण सर्बस संतना की रास, बिसर नाही निमख मनते नानक की अरदास, मारू महला पंजवा शस्त्र तीखण काठ डारियो, मन्ना की नो रोस काज उवा को ले सवारियो, तिलना दीनो दोस, मन मेरे राम रहो नितनीत, दयाल देव कृपाल गोविंद सुन संतना की रीत, रहाओ चरण तले उगाहे बैस्यो, श्रम ना रहो शरीर महासागर ने व्यापै खने उतरियो तीर, चंदन अगर कपूर लेपन ते संगे नहीं प्रीत, बिष्टा मूत्र खोद तिल तिल मन ना मनी विपरीत, ऊच नीच बेकार सुकृत संलगन सब सुख छतर, मित्र सतर ना कशु जानै सर्ब जी समत, कर प्रगास प्रचंड प्रगटयो अंधकार बिनास, पवित्र अपवित्र है करण लागे मन ना पयो बिखाद, सीत मंद सुगंध चलयो सर्व थान समान, जहां साक्ष तहां लागयो तिल ना शंका मान, सुभाए अपाए जो निकट आवै सीत ताका जाए, आप पर का कश ना जाने सदा सह सुभाए, चरण शरण सनाथ एहु मन, रंग राते लाल गोपाल गुण।

सोई सोहेला पालिया ग्रह राज में नरको दास करोदा बहुविध वेद पाठ सब सोदा देही मैं जो रह अलिपता तिस जन की पूर्ण कहली है जागत सूता परम विगुता बिन गुर मुक्त न हो ये मीता साध संग तुटै हो बंधन एको एक निहाली है कर्म करै ता बंदा नह करै ता निंदा मोह मगन मन व्याप्या चिंदा गुर प्रसाद सुख दुख समझाने घट घट राम हाली है संसार में सहसा व्यापै अकथ कथा गोचर नहीं जापै जिसे बुझाए सोई बुझै ओ बालक वांगी पाली है छोड़ बह तौ छूटै नाही जौ सिंचै तौ पौ मनमाही इस ही मह जिसकी पत राखै तिस साधु चौर ढाली है जो सूरा तिस ही होए मरना जो भागै तिस जोनी फिरना जो वरताए सोई पल मानै बुझ हुक्मै दुरमत जाली है जित जित लावै तित तित लगना कर कर वेखै अपने जचना नानके पूर्ण सुखदा ते तू देहता नाम समाली है मारू महला पंजवा बिरखै हेठ सब जंत इकट्ठे एक तत्ते एक बोलन मिठे अस्त्या दोत भया उठ चले ज्यो ज्यो औध विहानिया पाप करेंदड़ सर पर मुठे अजरा ईल फड़े फड़ कुठे दोजग पाए सृजनहार लेखा मंगै बाणिया संग न कोई भैया बेबा माल जोबन धन छोड़ वंजेसा करण करीम ना जातो करता तिल पीड़े जो कहानिया खुश खुश लैंदा वस्त पराई वेखे सुने तेरे नाल खुदाई दुनिया लभ पया खात अंदर अगली गल ना जानिया जम जम मरे मरे फिर जम्मे बहुत सजाए।

जो जन्मे ते सर पर मरना किरत पाया सिर साहा हे। संजोग वियोग मेरे प्रभ की है, सृष्टि उपाए दुखा सुख दिए। दुख सुख ही ते पै निराले, गुरमुख सीर सनाहा हे। नीके साचे के वापारी, ससव दाले गुर विचारी। सच्चा वखर जिस तन पल्ले, सब सच्चा ओ महा हे। काची समी तोटा आवै, गुरमुख वणज करे प्रभावै। पूंजी साबत रस सलामत, चूका जमका फाहा हे। सबको बोले अपन भाणे, मनमुख दूजे बोल न जाने। अंदले कीमत अंदली बोली, आए गया दुखता है। दुख में जन्मे

सुन कलाय परंपर धारी आप निरालम अपरे अपारी आपे कुदरत कर कर देख सुनो सुन उपाएंदा पौन पानी सुनै ते साजे सृष्टियो पाए काया गणराजे अग्न पानी जियो जो तुम्हारी सुन्ने कला रहाएंदा सुनो ब्रह्मा विष्णु महेश उपाए सुन्ने वरते जुग सबाए इस पद विचारे सो जन पूरा तिस मिलिए परम चुकाएंदा सुनो सप्त सरोवर थापे जिनसा जे विचारे आपे तित सतसर मनुआ गुरमुख नावै फिर बाहुड़ जो न पाएंदा सुनो चंद सूरज गैनारे तिसकी जोत त्रिपमन सारे सुन्ने अलख अपार निरालम सुन्ने ताड़ी लाएंदा सुनो धरत आकाश उपाए बिन थम्मा राखे सच कल पाए त्रिपवन साज मेखली माया आपो पाए पाएंदा सुनो खाणी सुनो बाणी सुनो उपजी सुन समाणी उत पुज चलत की आसर करतै बिस्मा सब देखाएंदा सुनो रात दिन सदुए किए ओपत खपत सुखा दुख दिए सुख दुख ही ते अमरा तीता गुरमुख निज कर पाएंदा साम वेद रिग जुजर अथर बन ब्रह्मे मुख माया है त्रैगुण ताकि कीमत कह ना सकै को त्यों बोले ज्यों बोलाएंदा।

सुनो सबत पता लियो पाए, सुनो पवन रखे लिव लाए, आपे कारण किया अपरंपर, सब तेरो किया कमाएदा। राजतम सतकल तेरी छाया, जन्म मरण हमें दुख पाया, जिसनो कृपा करे हर गुरमुख, गुण चौथे मुक्त कराएदा। सुनो उपजे दस अवतारा, सृष्टियो पाए किया पासारा, देव दानव गण गंधर्व साजे, सब लिखिया कर्म कमाएदा। गुरमुख समझे रोग ना होई, ए गुर की पौड़ी जाने जन कोई, जुगे जुगंतर मुक्त परायण, सो मुक्त भया पत पाएदा। पंच तत् सुनो प्रगासा, देहा संयोगी कर्मा अभ्यासा, बुरा भला दो मस्तक लिखे, पाप पुन भी जाएदा। उत्तम सतगुर पुरख निराले, शब्द रते हर रसमत वाले, रिद बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाई है, पूरे पाग मिलाएदा। इस मन माया कौ नेहो कनेरा, कोई बुझो ज्ञानी करो नवेरा, आसा मनसा हो मैं सहसा, नर लोभी कूड़ कमाएदा। सतगुर ते पाए विचारा, सुन समाध सच्चे घर बारा, नानक निर्मल नाद सब तुहनु, सच रामे नाम समाएदा। मारू महला पहला, जै देखा तै दीन दयाला, आए न जाई प्रभ कृपाला, जिया अंदर जुगत समाई, रहे निराल मराया, जग तिसकी छाया, जिस बाप ना माया, ना तिस भैन ना भराओ कमाया, ना तिस ओपत खपत कुल जाती, ओह अजरा वरमन पाया। तू अकाल पुरख नाही सरकाला, तू पुरख अलेख अगम निराला, सत संतोख शब्द अत शीतल, सहज पाए लिवलाया। त्रै वरताए चौथे करवासा, काल बिकाल किए एक ग्रासा, निर्मल ज्योत सर्व जग जीवन, गुर अनहद शब्द दिखाया। उत्तम जन संत भले हर प्यारे, हर अस माते पारो तारे, नानक रेण संत जन संगत, हर गुर प्रसादी पाया। तू अंतर जामी जी सब तेरे, तू दाता हम सेवक तेरे, अमृत नाम कृपा कर दी जय, गुर ज्ञान रतन दी पाया। पंच तत् मिले हो तन किया, आत्म राम पाए सुख थिया, कर्म करतूत अमृत फल लागा, हर नाम रतन मन पाया। ना तिस भूख प्यास मन मानिया, सर्ब निरंजन कट कट जानिया, अमृत रस राता केवल बैरागी, गुरमत पाए सुभाया। अध्यात्म कर्म करे दिन राती, निर्मल ज्योत निरंतर जाती, शब्द रसाल रसन रस रसना, बेन रसाल वजाया। बेन रसाल वजावे सोई, जा की त्रिपवन सो जी होई, नानक बूझो एह बिद गुरमत, हर राम नाम लिवलाया। ऐसे जन विरले संसारे, गुर शब्द विचारे रहे निरारे, आप तरे संगत कुल तारे, तन सफल जन्म जग आया। घर दर मंदिर जाने सोई, जिस पूरे गुरते सोजी होई, काया गढ़ महल महली प्रभ साचा, सच साचा तख्त रचाया। चतुर्दश हाट दीवे दोए साखी, सेवक पंच नाही बिखचाखी, अंतर वस्त अनूप निरोलम, गुर मिलिया हर तन पाया। अंतर वस्त अनूप निर्मोलक, गुर मिलिया हर तन पाया। तख्त बह तख्त की लायक, पंच समाए गुरमत पायक, आद जुगा दी है पी होसी, सहसा परम चुकाया। तख्त सलाम होवे दिन राती, एहो सच वडाई गुरमत लिव जाती, नानक राम जपो तर तारी, हर अंत सिखाई पाया। मारू महला पहला, हर तन संचो रे जन पाई, सतगुर सेव रहो सरनाई, तस्कर चोर ना लागे ताको, तुन उपजे शब्द जगाया।
तू एकमका तू एकंकार निराल मराजा तू आप सवार जन के काजा अमरिया डोलिया पारिया मोलको हर अस्तर थान सुहाया देही नगरी उत्तम थाना पंच लोक वसै परदाना ऊपर एकंकार निराल मां सुन समाद लगाया देही नगरी नौ दरवाजे सिर सर करने हार साजे दसवें पुरखा तीत निराला आपे लख लखाया पुरख्या लेख सच्चे दीवाना हुक्म चलाए सच निशाना नानक खोज लहो कर अपना हरियात्म राम नाम पाया सर्ब निरंजन पुरख सुजाना अदल करे गुर ज्ञान समाना काम क्रोध लै गर्दन मारे हों मैं लोभ चुकाया सच्चे थान वसै निरंकारा या पछाणे शब्द विचारा सच्चे महल निवास निरंतर आवन जान चुकाया ना मन चलै ना पौन उड़ावै जोगी शब्द अनाहद वावै पंच शब्द चुनकार निरालम प्रभ आपे वाए सुनाया पाओ बैरागा सह समाता हमें त्यागी अनहद राता अंजन सार निरंजन जाने सर्ब निरंजन राया दुख पै पंजन प्रभ अबनासी रो कटे काटी जम फासी नानक हर प्रभ सो पहो पंजन गुर मिलिया हर प्रभ पाया काले कवल निरंजन जाने बूझे कर्म सो शब्द पछाण आपे जाने आप पछाण सब तिसका चोज सबाया आपे सहो आपे वनजारा आपे परखे परखनहारा आपे कासव कसवटी लाए आपे कीमत पाया आप दयाल दया प्रवतारी घट घट रव रया बनवारी पुरख अतीत वसै ने केवल गुरपुरख पुरख मिलाया प्रभ दाना बीना गर्भ गवाए दूजा मिटा एक दिखाए आसा माहे निरालम जोनिया कुल निरंजन गाया हाउ मैं मेट शब्द सुख होई आ विचारे ज्ञानी सोई नानक हर जसो हर गुण लाहा सत संगत सच फल पाया मारू महला पहला सच कहो सच्चे कर रहना जीवत मरो पवजल जग तरना गुर बोयथ गुर बेड़ी तुलहा मन हर जा पार लंगाया हौ मैं ममता लोभ विनाशन नौ दर मुक्ते दसवें आसन ऊपर परै परै परंपर जिने आपे आप पाया गुरमत लेवो हर लिव तरी अकल गाए जमते क्या डरिये जत जत देखो ताता तुम ही अवरना दुतिया गाया सच हर नाम सच है सरना सच गुर शब्द जितै लग तरना अकथ कथ है देखै परंपर फुन गर्भ न जो नी जाया सच बिन सत संतोख ना पावै बिन गुर मुक्त ना आवै जावै मूल मंत्र हर नाम रसायण कहो नानक पूरा पाया सच बिन भवजल जाए ना तरिया एहो समुंद अथाहो महाबिख भरिया रहया तीत गुरमत ले उपर हर निरपो कै कर पाया झूठी जग हित की चतराई बिलमना लागे आवै जाई नाम विसार चले अभमानी उपजै बिन सिख पाया उपजै बिन सह बंधन बंदे हमें माया के गलफंदे जिस राम नाम नाही मत गुरमत सो जमपुर बंद चलाया गुर बिन मोख मुक्त क्यों पाई है बिन गुर राम नाम क्यों त्याई है गुरमत लेहो तरो भव दुतर मुक्त पाए सुख पाया गुरमत कृष्ण गोवर्धन तारे गुरमत सायर पाहन तारे गुरमुक्त लेहो परमपत पाई है नानक गुर परम चुकाया गुरमत लेहो तरो सच तारी आत्म चीनो हृदय मुरारी जमके फाहे कट हर जप अकुल निरंजन पाया गुरमत पंच सखे गुर पाई गुरमत अग्निवार समाई मन मुख नाम जपो जग जीवन हृदय अंतर लख लखाया गुरमुख बूझै शब्द पतीजै उस निंदा किसकी कीजै चीनो आप जपो जगदीसर हर जगनाथ मन भाया
ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੰਡ ਸੋ ਜਾਣੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੋ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੋ, ਘੜ ਘੜ ਪੋਗੇ ਪੁਗਣ ਹਾਰਾ, ਰਹਿਆ ਤੀਸ ਬਾਇਆ। ਗੁਰਮਤ ਬੋਲੋ ਹਰ ਜਸ ਉੱਚਾ, ਗੁਰਮਤ ਆਖੀ ਦੇਖ ਉੱਚਾ, ਸ਼੍ਰਵਣੀ ਨਾਮ ਸੁਣੈ ਹਰ ਬਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ ਰੰਗਾਇਆ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਪਰ ਹਰ ਪਰ ਨਿੰਦਾ, ਲਭ ਲੋਭ ਤਜ ਹੋ ਨਿਚਿੰਦਾ, ਭ੍ਰਮ ਕਾ ਸੰਗਲ ਤੋੜ ਨਿਰਾਲਾ, ਹਰ ਅੰਤਰ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ। ਨਿਸ ਦਾਮਨ ਜਿਉ ਚਮਕ ਚੰਦਾਇਣ ਦੇਖੈ, ਅਹਿਨਸ ਜੋਤ ਨਿਰੰਤਰ ਪੇਖੈ, ਆਨੰਦ

बिन नावै डूब मोए बिन नीरा, साचा पूरे सतगुर बूझ बुझाई, नामे राता पवित शरीरा, बिन नावै डूब मोए बिन नीरा, आवै जावै नाम नहीं बूझै, एक ना गुरमुख शब्द पछाता है, पूरे सतगुर बूझ बुझाई, बिन नावै मुक्त के नै ना पाई, नामे नाम मिले वड्याई, सहज रह रंग राता है, काया नगर टह टह टेरी, बिन शब्द चूके नहीं फेरी, साच सलाहे साच समावै, जिन गुरमुख एको जाता है, जिसनो नजर करे सो पाए, साचा शब्द वसै मन आए, नानक नाम रते निरंकारी, दर साचे साच पछाता है, मारू सोल है तीजा, आपे करता सब जिस करना, जी जंत सब तेरी सरना, आपे गुप्त वरतै सब यंत्र, गुर कै शब्द पछाता है, हर के भगत भरे भंडारा, आपे बख्शे शब्द विचारा, जो तुद भावै सोई करसै, सच्चे स्यो मन राता है।

गुरपुरा खिन खिन नमस्कारी, तन मन अर्प धरी सब आगै, जग मै नाम सुहावना, सो ठाकर क्यो मनो विसारे, जियो पिंड दे साए सवारे, सास ग्रास माले करता कीता अपना पावना, जाते बिरथा को नाही, आठ पैर हर रख मन माही, साध संग पज अचत स्वामी, दरगह सोभा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौ निध, सर्व कल्याण जे मन में चाहै, मिल साधु स्वामी रावणा, शास्त सिमरत वेद वखाणी, जन्म पदार्थ जीत पराणी, काम क्रोध निंदा पर हरिय, हर रसना नानक गावना, जिस रूप ना रेखिया कुल नहीं जाती, पूर्ण पूर्ण रहा दिन राती, जो जो जपै सोई वडभागी, बहुना जो नी पावना, जिसनो बिसरै पुरख विधाता, जलता फिरै रह नित ताता, अकिरत घणै कौ रखै ना कोई, नरक कोर मैं पावना, जियो प्राण तन तन जिन साजिया, मात गर्व मैं राख निवाजिया, तिस स्यो प्रीत शाड अनराता, काहू सिरै ना लावना, तार अनुग्रह स्वामी मेरे, घट घट वसै सबन कै नेरे, हाथ मारै कछुए नाही, जिस जणाए तिसै जणावना, जा कै मस्तक तुर लिख पाया, तिसी पुरख न व्यापै माया, नानक दास सदा सरनाई, दूसर लवै ना लावना, आग्या दुख सुख सब कीने, अमृत नाम बिरलहि कीने, ताकी कीमत कहन न जाई, जत का तो ही समावना, सोई भगत सोई वरदाता, सोई पूर्ण पुरख विधाता, बाल सहाई सोई तेरा, जो तेरे मन पावना, मृत दुख सुख लिख पाए, तिल नहीं बधै कटै ना कटाए, सोई होए जे करते पावै, कह कह आप मजावना, अंध कूपते से ही काडे, जन्म जन्म के टूटे गांडे, कृपा तार रखे कर अपने, मिल साधु गोविंद त्यावना, तेरी कीमत कहन न जाई, अचर जरूब वड्डी वड्याई, भगत दान मंगै जन तेरा, नानक बल बल जावना, मारू वार महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सलोक

पाई है। जे बहुत लोचाही आवै जाए जम्मै मरै, गुर शब्द छुटाही आप करे किस आखिए, दूजा को नाही। श्लोक महला तीजा। इस जग मैं संती तन खटिया, जिन्ना सतगुर मिलिया प्रभ आए, सतगुर सच दृढ़ाया इस धन की कीमत कही ना जाए। ए तन पाया भुख लथी सुख वसिया मन आए, जिन्ना कहो तुर लिखिया तिन्नी पाया आए। मनमुख जग तो निरतन है माया नू बिल लाए, अंदन फिरदा सदा रहे भुख न कदे जाए। सांत ना कदे आवई न सुख वसे मन आए, सदा चिंत चितवदा रहे सहसा कदे ना जाए। नानक विण सतगुर मत पवी, सतगुर नो मिले ता शब्द कमाए, सदा सदा सुख में रह सच्चे महे समाए। महला तीजा। जिन उपाई मेदनी सोई सार करे, एको सिमरो पाए रहो जिस बिन अवर ना कोए। खाना शब्द चंगियाईया जित खादे सदा तृप्त होए, पहनन सिफत सुनाए है सदा सदा ओ उजला मैला कदे ना होए। सहजे सच तन खटिया थोड़ा कदे ना होए, देही नो शब्द सिंगार है जित सदा सदा सुख होए। नानक गुरमुख बुझी है जिसनो आप विखाले सोए, पौड़ी अंतर जप तप संजमो गुर शब्दी जप, हर हर नाम ते आई है हमें अज्ञान गवापै। अंदर अमृत भरपूर है चाखिया साध जापै, जिन चाखिया से निरपो पए से हर अस्त्रापै, हर कृपा धार पी आया फिर काल ना व्यापै। श्लोक महला तीजा। लोक अवगणा की बन्ने गंठड़ी, गुणना विहाजै कोए, गुण का गाहक नानका विरला कोई होए। गुर प्रसादी गुण पाईयान जिसनो नजर करे, महला तीजा। गुण अवगुण समान है जे आप कीते करतार, नानक हुक्म मन्या सुख पाई है गुर शब्दी विचार। पौड़ी अंदर राजा तख्त है आपे करे न्याओ, गुर शब्दी दर जानी है अंदर महल असराओ। खरे परख खजाने पाईयान खोटिया नाही थाओ, सब सचो सच वर्तदा सदा सच ने आओ। अमृत का रस आया मन वसिया नाओ। श्लोक महला पहला। हो मैं करी ता तू नाही, तू होवे हो नाहे बुझो ज्ञानी बुझना, एह अकथ कथा मन माहे बिन गुर तत ना पाई है। अलख वसै सब माहे सतगुर मिले ता जानी है, जा शब्द वसै मन माहे आप गया भ्रम पहो गया। जन्म मरण दुख जाहे गुरमत अलख लखाई है, उतो मत तराहे नानक सो हं हंसा जप जापो त्रिपवन तसै समाहे। महला तीजा। मन मानक जिन परखिया गुर शब्दी विचार, से जन विरले जानी है कल युग विच संसार। आपै नो आप मिल रहा हमें दुबधा मार, नानक नाम रते दुत्र तरे पौ जल विखम संसार। पौड़ी मनमुख अंदर ना पालनी मुठे अमते, चारे कुंडा भव थके अंदर तिख तत्ते, सिमरत शास्त्र ना सोधनी मनमुख विगुते, बिन गुर किने ना पायो हर नाम हर सत्ते। तत् ज्ञान विचारिया हर जप हर गते।

मैं बोलत ही बड़ लाज, राम जे पाया राम ते भवे न बार बार रहाओ, झूठा जग डह कै कना दिन दोए बर्तन की आस, राम उदक जेह जन पिया ते बौर न पई प्यास, गुर प्रसाद जे बूझे आया सा ते भया निरास, सब सच नदरी आया जवा तुम भया उदास, राम नाम रस चाखिया हर नामा हर तार, कहो कबीर कंचन पया प्रम गया समुंदर है पार, उदक समुंद सलल की साखिया नदी तरंग समावेंगे, सुन्ने सुन मिलिया समदर्शी पवन रूप होए जावेंगे, बहुर हम काहे आवेंगे आमन जाना हुक्म तिसा का, हुक्मे बुझ समावेंगे रहाओ, जब चुके पंच तात की रचना ऐसे परम चुकावेंगे, दर्शन छोड़ पे समदर्शी एको नाम ते आवेंगे, जित हम लाए तिथि लागे तैसे कर्म कमावेंगे, हर जी कृपा करे जाओ अपनी तो गुर के शब्द समावेंगे, जीवत मरो मरो फिर जीवो, जीवत मरो मरो फुन जीवो, पुनरप जन्म ना होई, कहो कबीर जो नाम समाने सुन रहा लिव सोई, जाओ तुम को दूर करत हो तो तुम मुक्त बतावो, एक अनेक हो रहो सगल मैं अब कैसे परमावो, राम मोक अवतार कहां ले जई है, सो दो मुक्त कहां देव कैसी, कर प्रसाद मोहे पाई है रहाओ, तारन तरन तवे लग कही है जब लग तत न जानिया, अब तो बिमल भय कट ही मैं कह कबीर मन मानिया, जिन गढ़ कोट किए कंचन के छोड़ गया सो रावन, काहे की जित है मन पावन, जब जब आए केस ते पकड़े तै हर को नाम छडावन रहाओ, काल अकाल खसम का कीना एहो परपंच बधावन, कहे कबीर ते अंते मुक्ते जिन हृदय राम रसायन, देही गावा जियो तर महतो बसे पंच किरसाना, नैनू नगटू श्रम नू रसपत इंद्री कया न माना, बाबा अब ना बसो एह गाओ, करी करी का लेखा मांगे काहित चेतू नाओ रहाओ, धर्म राय जब लेखा मांगे बाकी निकसी पारी, पंच किरसान वा पा गए ले बांधे ओ जियो दरबारी, कह कबीर सुनो रे संतो खेत ही करो नबेरा, अब की बार बख्श बंदे को बहोर ना पाओ जल फेरा, राग मारू बाणी कबीर जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अन पाओ किने

दा करते जन्म सिरानो कबू ना सिमरियो राम। कह कबीर चेतै नहीं मूर्ख मुक्त गवार, राम नाम जान्यो नहीं कैसे उत्तर सपार। राग मारू बाणी जय देओ जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चंद सत भेदया नाद सत पूरिया, सूर सत खोड़सा दत किया। अबल बल तोड़िया अचल चल थपिया, अखड़ घड़िया तहां अप्यो पिया। मन आदि गुण आदि वखाणिया, तेरी दुबदा दृक्ष समानिया रहाओ। अर्ध कौ अर्धया सर्द कौ सर्दया, सलल कौ सलल समान आया। बदत जय देव जय देव कौ रम्या, ब्रह्म निर्वाण लिवलीन पाया। कबीर मारू राम सिमर पछताहेगा मन, पापी जियारा लोभ करत है आज काल उठ जाहेगा रहाओ। लालच लागे जन्म गवाया, माया परम पुलाहेगा। तन जोबन का गर्भ ना की जय, कागद ज्यों गल जाहेगा। जो जम आए केस गह पटकै, ता दिन किश ना बसाहेगा। सिमरन भजन

मेरे मन हर हर गुण कहो रे, सतगुरु के चरण तोए तोए पूजो, इन बिद मेरा हर प्रबलहो रे रहाओ। काम क्रोध लोभ मोह अवमान बिखै रस, इन संगत ते तू रहो रे। मिल सत संगत कीजै हर गोष्ट, साधु स्यों गोष्ट, हर प्रेम रसायन राम नाम रसायन, हर राम नाम राम रमहो रे। अंतर का अवमान जोर तू किश किश किश जानता, एहो दूर करो अपन गहोरे। जन नानक कहो हर दयाल हो स्वामी, हर संतन की तूर कर हरे। केदारा महला पंजवां कर दूजा, एको ओंकार सतगुर प्रसाद, माई संत संग जागी।

अनक जतन गमन करो, खट कर्म जुगत ध्यान धरो, उपाव सगल कर हारो, नय नय हुटै बिकराल, शरण बंदन करना पते, पव हरण हर हर हर हरे, एक तू ही दीन दयाल, प्रभ चरण नानक आसरो, उदरे परम मोह सागर, लग संतना पग पाल, केदारा महला पंजवा, कर चौथा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, सरनी आयो नाथ निदान, नाम प्रीत लागी मन पीतर, मांगन कौ हरदान, रहाओ सुखदाई पूर्ण परमेश्वर, कर कृपा राखो मान, देहो प्रीत साधु संग स्वामी, हर गुण रसन बखान, गोपाल दयाल गोबिंद दमोदर, निर्मल कथा ज्ञान, नानक कहो हर कै रंग रंगो, चरण कमल संग ध्यान, केदारा महला पंजवा, हर के दर्शन को मन चाओ, कर कृपा सत्संग मिलावो, तुम देवो अपनो नाओ, रहाओ करो सेवा सतपुरख प्यारे, जत सुनिए तत मन रहसाओ, वारी फेरी सदा कुमाई, कमन अनूप तेरो ठाओ, सर्व प्रतपालय सगल समालय, सगलियां तेरी छाओ, नानक के प्रपुरख विदाते, घट घट तुझे दिखाओ, केदारा महला पंजवा, प्रेकी प्रीत प्यारी, मगर मनै मैं चितवो वासा, नैनो तार तुहारी, रहाओ ओए दिन पहर मूर्त पल कैसे, ओए पल करी किहारी, खूले कपटो तबट बुझ तृष्णा, जीवो पेख दरसारी, कौन सो जतन उपाओ कनेहा, सेवा कौन बिचारी, मान अवमान मोह तज नानक, संतै संग उदारी, केदारा महला पंजवा, हर हर हर गुण गावो, करो कृपा गोपाल गोबिंदे, अपना नाम जपावो, रहाओ काड लिए प्रभयान बिखैते, सासंग मन लावो, भ्रम पौ मोह कट्यो गुरबचनी, अपना दर्श दिखावो, सब की रेन होए मन मेरा, अहम बुद्ध तजावो, अपनी भगत देह दयाल लावड़, भागी नानक हर पावो, केदारा महला पंजवा, हर बिन जन्मया कार्थ जात, तज गोपाल आन रंग राचत, मिथ्या पहरत खात, रहाओ तन जोबन संपै सुख पुगवै, संग ना निभत मात, मृग तृष्णा देख रचियो बावर, द्रुम छाया रंग रात, मान मोह महामद मोहत, काम क्रोध कै खात, कर गै लेहो दास नानक कहो, प्रभ जियो होए सहात, केदारा महला पंजवा, हर बिन कोई न चालस साथ, दीना नाथ करना पत स्वामी, अनाथा के नाथ, रहाओ सुत संपत बिख्या रस भुगवत, नह निबहत जम कै पाथ, नाम निधान गाओ गुण गोबिंद, उदर सागर के खात, सरण समरथ या काथया गोचर, हर सिमरत दुखलाथ, नानक दीन तूर जन बांशत, मिलै लिखत तुरमाथ, केदारा महला पंजवा, घर पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, बिसरत नाहे मन ते हरी, अब एह प्रीत महाप्रबल पई, आन बिखै जरी रहाओ, बूंद कहां त्याग चात्रक मीन, रहत ना करी, गुण गोपाल उचार रसना, टेव एह परी, महानाद कुरंक मोहयो, बेद तीखन सरी, प्रभ चरण कमल रसाल नानक, गाठ बांध तरी, केदारा महला पंजवा, प्रीतम बस्तो रिद मै खोर, परम पीत निवार ठाकर, गह लेहो अपनी ओर, रहाओ अदक गर्त संसार सागर, कर दया चारो तोर, संत संग हर चरण बोयथ, उदर ते लै मोर, गर्भ कुंट मैं जिने तारियो, नहीं बिखै मन मैं होर, हर सकत सरन समरथ नानक, आन नहीं निहोर, केदारा महला पंजवा, रसना राम राम बखान।

साच शब्द बिन कबो न छूट सो बिरथा जन्म भयो रहाओ। तन मह काम क्रोध हो ममता कठिन पीर अत भारी। गुरमुख राम जपो रस रसना इन बिद तर तू तारी। बहरे करन अगल पई होची शब्द सहज नहीं बूझिया। जन पदार्थ मन मुख हारिया बिन गुरे अंद न सूझिया। रह उदास आस निराशा सहज ध्यान बैरागी। प्रणमत नानक गुरमुख छूटस राम नाम लिव लागी। पहराओ महला पहला पूंडी चाल चरण कर खिसरे तुचा देह कुमलानी। नेत्री तुहंद करन पै बहरे मनमुख नाम ना जानी। अंदले क्या पाया जग आए राम हृदय नहीं गुर की सेवा। चाले मूल गवाए रहाओ जेहवा रंग नहीं हर राती। जब बोले तब फीके संत जना की निंदा व्यापस। पशु पहे कदे होहे नानी के अमृत का रस विरली पाया। सतगुर मेल मिलाए जब लग शब्द भेद नहीं आया। तब लग काल संताए अनको दर कर कबहू ना जानस। एको दर सचियारा गुर प्रसाद परम पद पाया। नानक कह विचारा पहरो महला पहला। सगली रैन सोबत गलफाही दिन से जंजाल गवाया। खिन पल कड़ी नहीं प्रभ जानिया जिन एहो जगते उपाया। मन रे क्यों छूटस दुख भारी। क्या ले आवस क्या ले जावस राम जपो गुणकारी रहाओ। ऊंदो कवल मन मुख मत होची मन अंध सिर तंदा। काल बिकाल सदा सिर तेरे बिन्ना मैं गलफंदा। डगरी चाल नेत्र फुन अंधले शब्द सुरत नहीं पाई। शास्त्र वेद त्रै गुण है माया अंधलो तंद कमाई। खोयो मूल लाभ कह पावस दुर्मत ज्ञान में होने। शब्द विचार राम रस चाखिया नानक साच पतीने। पहरो महला पहला गुर कै संग रह दिन राती। राम रसन रंग राता अवर न जानस शब्द पछाणस। अंतर जान पछाता सोजन ऐसा मैं मन भावे। आप मारे परंपर राता गुर की कार कमावे रहाओ। अंतर बाहर पुरख निरंजन आदि पुरख या देसो। घट घट अंतर सर्ब निरंतर रव रहया सच वेसो। साच रते सच अमृत जिहवा मिथ्या मैल नाराई। निर्मल नाम अमृत रस चाखिया शब्द रते पत पाई। गुणी गुणी मिल लाह पावस गुरमुख नाम वडाई। सगले दुख मिटै गुरसेवा नानक नाम सखाई। पैरो महला पहला हिरदय नाम सर्ब तन धारण। गुर प्रसादी पाई है अमर पदार्थ ते कृतार्थ सह ध्यान लिवलाई है। मन रे राम भगत चित लाई है। गुरमुख राम नाम जप हिरदय सह सेती कर जाई है रहाओ। परम भेद पौ कबो ना छूटस आवत जात ना जानी। बिन हर नाम को मुक्त ना पावस डूब मोए बिन पानी। धंधा कर तो सगली पत खोबस भरम ना मिटस गवारा। बिन गुर शब्द मुक्त नहीं कभी अंधले तंत पसारा। अकुल निरंजन स्यो मन मानिया मन ही ते मन मुआ। अंतर बाहर एको जानिया नानक अवर ना दुआ। पहरो महला पहला जगन होम पुनता पूजा देह दुखी ने दुख सह। राम नाम बिन मुक्त ना पावस मुक्त नाम गुरमुख लह। राम नाम बिन बिरथे जग जन्मा बिख खावे बिख बोली बोले। बिन नामे नेफल मर भ्रम ना रहाओ। पुस्तक पाठ व्याकरण वखाणे संध्या कर्म तिकाल करे। बिन गुर शब्द मुक्त कहां प्राणी राम नाम बिन उर्ज मरे। डांड कमंडल सिखा सूत धोती तीर्थ गवन अत भ्रमण करे। राम नाम बिन सांत न आवे जप हर हर नाम सो पार पर। जटा मुकुट तन पसम लगाई
बस्त्र छोड़ तन नग्न पया, राम नाम बिन तृप्त न आवै, किरत कै बांधै पेख पया। जेते जी जंत जल थल महियल, जतर कतर तू सर्ब जिया। गुर प्रसाद राख ले जन को, हर रस नानक झोल पिया। राग पहरो महला तीजा, चौप दे कर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद जात का गर्व ना करियो कोई, ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई। जात का गर्व ना कर मूर्ख गावारा, इस गर्व ते चले बहुत विकारा। रहाओ चारे वर्ण आख्या सब कोई, ब्रह्म बिंद ते सब उपत होई। माटी एक सगल संसारा, बहुविध भांड है कड़ै कुमारा। पंच तत् मिल देही काया कारा, घट वध को करै बिचारा। कहत नानक एहो जियो कर्म बंद होई, बिन सतगुर पेटे मुक्त ना होई। पैरो महला तीजा, जोगी गृही पंडित भेख तारी। ए सूते अपने अहंकारी, माया मद माता रहया सोए। जागत रह ना मूसै कोए, रहाओ सो जागै जे सतगुर मिलै। पंच दूत ओ वसकत करै, सो जागै जो तत् बिचारै। आप मरै अवरा नै मारै, सो जागै जो एको जाणै। पर किरत छोड़ै तत् पछाणै, चहो वरना विच जागै कोए। जमै कालै ते छूटै सोए, कहत नानक जन जागै सोए। ज्ञान अंजन जाकी नेत्री होए। पैरो महला तीजा, जा कौ राखै अपनी सरनाई। साचै लागै साचा फल पाई, रे जन कैस्यो करो पुकारा। हुक्मे होवा हुक्मे वर्तारा, रहाओ एहो आकार तेरा है तारा। खिर मैं बिनसै करत ना लागै बारा। कर प्रसाद एक खेल दिखाया, गुर कृपा ते परम पद पाया। कहत नानक मार जी वाले सोए, ऐसा पूजो परम ना पूलो कोए। पैरो महला तीजा, मैं कामण मेरा कंत करतार। जिहा कराए तिहा करी सिंगार, जात सपावै ता करे भोग। तन मन साचे साहिब जोग, रहाओ उसत निंदा करे क्या कोई। जाया पे वरतै एको सोई, गुर प्रसादी प्रेम कसाई। मिलोगी दयाल पंच शब्द बजाई, पंत नानक करे क्या कोए। जिसनो आ मिलावै सोए, पैरो महला तीजा। सो मुन जे मन की दुबदा मारे, दुबदा मार ब्रह्म बिचारे। इस मन को कोई खोजो पाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। रहाओ मूल मोह कर करतै जगतो पाया, ममता लाए परम पुलाया। इस मन ते सब पिंड पुराणा, मन कै विचार हुक्म बुझ समाणा। कर्म होवै गुर कृपा करै, एहो मन जागै इस मन की दुबधा मरै। मन का स्वभाव सदा बैरागी, समय वसै अतीत अनरागी। कहत नानक जो जाणै पेओ, आद पुरख निरंजन देओ। पैरो महला तीजा, राम नाम जगत निस्तारा। पवजल पारो तारनहारा, गुर प्रसादी हर नाम समालो। सदी निभाए तेरे नाल, रहाओ

नदर करे सतगुरु मिलाए, नानक हिरदय नाम वसाए, पहरो महला तीजा। नामे उदरे सब जितने लो, गुरमुख जिन्ना प्राप्त होए। हर जियो अपनी कृपा करे, गुरमुख नाम वड्याई दे रहाओ। राम नाम जिन प्रीत प्यार, आप उदरे सब कुल उदाहरण हार। बिन नावें मनमुख।

संत संग ले चढ़ियो शिकार, मृग पकड़े बिन कोर हथियार। रहाओ अखेर बिरत बाहरे आयो ताए, अहेरा पायो करके गाए। मृग पकड़े कर आने हाट, चुख चुख ले गए बांडे बाट। एहो अहेरा कीनो दान, नानक कह कर केवल नाम। पैरो महला पंजवा, जे सौ लोच लोच खावाया, सागत हर हर चीत न आया। संत जना की लेहो मते, साध संग पावो परम गते। रहाओ पाथर को बहु नीर पवाया, नह पीगे अधिक सुकाया। खट शास्त्र मूर्ख है सुनाया, जैसे दैदिस पवन चुलाया। बिन कण खलहान जैसे गहन पाया, त्यों साकत ते को न बरासाया। तित ही लागा जित को लाया, कहो नानक प्रबणत बनाया। पैरो महला पंजवा, जियो प्राण जिन रचियो शरीर, जिनै उपाय तिसको पीर। गुरु गोबिंद जी कै काम, हलत पलत जाकी सद शाम। रहाओ प्रभ आराधन निर्मल दीत, साध संग बिनसी विपरीत। मीत हीत तन नह पारना, तन तन मेरे नारायणा। नानक बोले अमृत बाणी, एक बिना दूजा नहीं जानी। पैरो महला पंजवा, आगे दय पाछे नारायण। मध पाग हर प्रेम रसायण, प्रभु हमारे शास्त्र साउण। सुख सहजानंद ग्रह पाउण। रहाओ रसना नाम करन सुन जीवे, प्रभ सिमर सिमर अमर थिर थीवे। जन्म जन्म के दुख निवारे, अनहद शब्द बजे दरबारे। कर कृपा प्रभ लिए मिलाए, नानक प्रभ शरणागत आए। पैरो महला पंजवा, कोट मनोरथ आवे हाथ। जब मार कै संगी पांथ, गंगा जल गुरु गोबिंद नाम। जो सिमरै तिसकी गत होवै, पीवत बहुना जोन प्रमाम। रहाओ पूजा जाप ताप इशनान, सिमरत नाम पै नह काम। राजमाल साधन दरबार, सिमरत नाम पूर्ण आचार। नानक दास एहो किया विचार, बिन हर नाम मिथ्या सबसार। पैरो महला पंजवा, लेप न लागो तिल का मूल, दुष्ट ब्राह्मण मुआ होए कैसूल। हर जन राखे पार ब्रह्म आप, पापी मुआ गुर प्रताप। रहाओ अपना खसम जन आप ते आया, याना पापी ओ आप चाया। प्रभ मात पिता अपने दास का रखवाला, निंद का माथा यहां हुआ काला। जन नानक की परमेश्वर सुनी अरदास, मलेश पापी पचिया पया निराश।

नाम बिना सब दुनिया शार, अचरज तेरी कुदरत तेरे कदम सलाह, गनीम तेरी सिफत सच्चे पातशाह, नी तरिया तरपने खुदाए, गरीब निवाज दिन रहन ते आए, नानक कहो खुद खसम मेहरवान, अलो न विसरै दिल जी प्राण, पहराओ महला पंजवा, साच पदार्थ गुरमुख लहो, प्रभ का पाना सतकर सहो, जीवत जीवत जीवत रहो, राम रसायन ने तुठ पीवाओ, हर हर हर हर रसना कहो रहाओ, कलयुग मैं कनाम उदार, नानक बोले ब्रह्म विचार, पहरो महला पंजवा, सदगुर सेव सर फल पाए, जन्म जन्म की मैल मिटाए, पदत पावन प्रभ तेरो नाओ, पूर्व कर्म लिखे गुण गाओ, रहाओ साधु संग होवे उदार, सोभा पावे प्रभ कै द्वार, सर्व कल्याण चरण प्रभ सेवा, तूर बंछ है सब सुर नर देवा, नानक पाया नाम निधान, हर जप जप उदरिया सगल जहान, पहरो महला पंजवा, अपने दास कौ कंठ लगावे, निंद कौ अगन में पावे, पापी ते राखे नारायण, पापी पापी की गत कथू नाही, पापी पचया आप कमायण, रहाओ दास राम जीओ लागी प्रीत, निंद की होई विपरीत, पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगटाया, दुखी अपना कीता पाया, आए ना जाई रहया समाई, नानक दास हर की सरनाई, राग पहराओ महला पंजवा, चौप दे कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद श्री धर मोहन सगलियो पावन, निरंकार सुखदाता, ऐसा प्रभ छोड़ करे अन सेवा, कौन बिख्या रस माता, अरे मन मेरे तू गोविंद पाज, अवर्यो पाव सगल मैं देखे, जो चितवीय तित बिगरस काज, रहाओ ठाकर छोड़ दासी को सिमरै, मनमुख अंध अज्ञाना, हर की भगत करै ते निंदै, निगुरे पशु समाना, जियो पिंड तन तन सब प्रभ का, सागत कहते मेरा, अहम बुद्ध दुर्मत है मैली, बिन गुर भव जल फेरा, होम जग जप तप सब संयम, तड़ तीर्थ नहीं पाया, मिटाया पै सरनाई, गुरमुख नानक जग तराया, पहरो महला पंजवा, बन मैं पेख्यो तरण मैं पेख्यो, ग्रह पेख्यो उदासाए, दंड तार जट तारै पेख्यो, वर्त नेम तीर्थाए, संत संग पेख्यो मन माए, ऊब पयाल सर मैं पूर्ण, रस मंगल गुण गाए, रहाओ जोग पेख सन्यास पेख्यो, जत जंगम कपड़ाए, तपी तपी सरमन मैं पेख्यो, नट नाटक निरताए, चहो मैं पेख्यो खट मैं पेख्यो, दस अष्टी सिमरताए, सब मिले को एक बखाने, तव किस्ते कहो दुराए, अगह अगह बेअंत स्वामी, न कीम कीम कीम आए, जन नानक तन कै बल बल जाइए, जेह कट प्रगटी आए, पहरो महला पंजवा, निकट बुझै सो बुरा क्यों करै, बिख संचै नित डरता फिरै, है निकट यार भेद न पाया, बिन सतगुर सा मोही माया, नेड़ै नेड़ै सब को कहै, गुरमुख भेद बिरला कोल है, रहाओ निकट ना देखै पर ग्रह जाए, दर्भ हिरै मिथ्या कर खाए, पई ठगौरी हर संग ना जानिया, बाज गुरु है परम पुलानिया, निकट ना जाने बोले कूड़, माया मोहे मूठा है मूड़, अंतर वास्तव दिसंतर जाए, बाज गुरु है परम पुलाए, जिस मस्त कर्म लिखिया ललाट, सदगुर सेवे खुले कपाट,
अंतर बाहर निकटे सोए, जन नानक आवै ना जावै कोए, पहरो महला पंजवा जिस तू राखै तिस कौन मारै, सब तुझ ही अंतर सगल संसार है, कोट पाव चितवत है प्राणी, सो होवै जे करै चोज विडाणी। राखो राखो कृपा तार, तेरी शरण तेरा दरबार, रहाओ जिन सेव्या निरपौ सुखदाता, तिन पौ दूर किया एक पराता, जो तू करै सोई फन होए, मारै ना राखै दूजा कोए, क्या तू सोचै।

कर्तार, जैसे ऊपर नजर करे करतार, तेह जन के सब का सवार, तिसका राखा को सोए, जन नानक पढ़ ना सके कोए। पैरो महला पंजवा, तौ कड़िया जे होवै बाहर, तौ कड़िया जे विसरै नर हर, तौ कड़िया जे दूजा पाए, क्या कड़िया जा रहा समाए। माया मोहे कड़े कड़ पचिया, बिन नामै भ्रम भ्रम भ्रम खपिया रहाओ, तौ कड़िया जे दूजा करता, तौ कड़िया जे अन्याय को मरता, तौ कड़िया जे कह जाने नाही, क्या कड़िया जा भरपूर समाही। तौ कड़िया जे किछ होए तिंगाणे, तौ कड़िया जे भूल रजाणे, गुर कहिया जो होए सब प्रभ ते, तब काड़ा छोड़ अचिंत हम सोते, प्रभ तू है ठाकर सब को तेरा, जो पावे त्यों करे निबेरा। दुतिया नास्त एक रया समाए, राखो पैज नानक सरनाए, पैरो महला पंजवा, बिन बाजे कैसो निर्तकारी, बिन कंठे कैसे गवनहारी, जील बिना कैसे बजर बाप, नाम बिना बिरथे सब काज, नाम बिना कहो को तरिया, बिन सतगुर कैसे पार परिया रहाओ। बिन जेहवा कहाँ को बगता, बिन श्रवना कहाँ को सुनता, बिन नेत्रा कहाँ को पेख, नाम बिना नर कहीं ना लिख, बिन विद्या कहाँ कोई पंडित, बिन अमरा कैसे राजमंडित, बिन बुझे कहाँ मन ठहराना, नाम बिना सब जग बौराना, बिन बैराग कहाँ बैरागी, बिन हो त्याग कहाँ को त्यागी, बिन बस पंच कहाँ मन चूरे, नाम बिना ससद ही चूरे, बिन गुर दीख्या कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान, बिन पै कखनी सर्व बेकार, कहो नानक दर का विचार। पैरो महला पंजवा, हम मैं रोग मानख कौ दीना, काम रोग मैंगल बस लीना, दृष्ट रोग पचमोए पतंगा, नाद रोग खप गए कोरंगा, जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु।

चीत आवै ता महा आनंद, चीत आवै ता सब दुख भंज, चीत आवै ता श्रद्धा पूरी, चीत आवै ता कबै ना चूरी। अंतर राम राय प्रगटे आए, गुरपुरे दियो रंग लाए रहाओ। चीत आवै ता सर्ब को राजा, चीत आवै ता पूरे काजा, चीत आवै ता रंग गुलाल, चीत आवै ता सदा निहाल। चीत आवै ता सद धनवंता, चीत आवै ता सद निपरंता, चीत आवै ता सब रंग माणे, चीत आवै ता चुकी काणे। चीत आवै ता सहज कर पाया, चीत आवै ता सुन समाया, चीत आवै सद कीर्तन करता, मन मानिया नानक भगवंता। पैरो महला पंजवां। बाप हमारा सद चिरंगजीवी, भाई हमारे सद ही जीवी, मीत हमारे सदा बनासी, कुटुंब हमारा नी करवासी। हम सुख पाया ता सवै सुहेले, गुरपुरे पिता संग मेले रहाओ। मंदिर मेरे सब ते उच्चे, देश मेरे बेअंता पूछे, राज हमारा सदी निचल, माल हमारा खूटा बेचल। शोभा मेरी सब जुग अंतर, बाज हमारी थान थनंतर, कीर्त हमरी कर कर होई, भगत हमारी सबनी लोई। पिता हमारे प्रगटे मांज, पिता पुत्रल किन्नी सांझ। कहो नानक जो पिता पतीने, पिता पूते कै रंग लीने। पैरो महला पंजवां। निर्वैर पुरख सतगुर प्रभ दाते, हम अपराधी तुम बख्साते। जिस पापी को मिले ना टोई, शरण आवै ता निर्मल होई। सुख पाया सतगुरु मनाए, सब फल पाए गुरु ते आए रहाओ। पार ब्रह्म सतगुर आदेश, मन तन तेरा सब तेरा देश। चूका पड़दा ता नदरी आया, खसम तू है सबना के राया। तिस पाणा सूके काष्ट हरिया, तिस पाणा ता थल सिर सरिया। तिस पाणा ता सब फल पाए, चिंत गई लग सतगुर पाए। हराम खोर निर्गुण कौ तूठा, मन तन शीतल मन अमृत बूठा। पार ब्रह्म गुर पय दयाला, नानक दास देख पय निहाला। पैरो महला पंजवां। सतगुर मेरा बेमोहताज, सतगुर मेरे सच्चा साज, सतगुर मेरा सबसका दाता, सतगुर मेरा पुरख बिदाता। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव रहाओ। सतगुर मेरा सर्ब प्रतपाल है, सतगुर मेरा मार जीवाल है, सतगुर मेरे की वड्याई, प्रगट पई है सबनी थाई। सतगुर मेरा तान नितान, सतगुर मेरा कर दीबाण, सतगुर कहो सद बल जाया, प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया। जिन गुर सेव्या तिस पौ ना ब्यापै, जिन गुर सेव्या तिस दुख ना संतापै। नानक सो दे सिमरत बेद, पार ब्रह्म गुर नाही भेद। पैरो महला पंजवां। नाम लैत मन प्रगट पया, नाम लैत पाप तंते गया। नाम लैत सगल पुरबाया, नाम लैत अठ सठ मजनाया। तीर्थ हमरा हर को नाम, गुरु उपदेसया तत् ज्ञान रहाओ। नाम लैत दुख दूर पराना, नाम लैत अतमूढ़ सुगयाना। नाम लैत प्रगट उजियारा, नाम लैत छुट्टे जंजारा। नाम लैत जम नेड़ ना आवै, नाम लैत दरगह सुख पावै। नाम लैत प्रभ कह सबास, नाम हमारी साची रास। गुर उपदेश कयो एहो सार, हर कीर्त मन नाम आधार। नानक उधरे नाम पुनै चार, अवर कर्म लोकै पतियार। पैरो महला पंजवां। नमस्कार ता कौ लख बार, एहो मन दीजै ता कौ वार। सिमरन ता कै मिटै संताप।

गुर सो प्रसन्न होए पौ गए नाम निरंजन मन मै लय दीन दयाल सदा कृपाल बिरस गए सगले जंजाल सुख सहज आनंद कने साह संग मिटे पै परमा अमृत हर हर रसन भने रहाओ चरण कमल स्यो लागो हेत खिर मैं बिरस्यो महाप्रेत आठ पहरो हर हर जप जाप रखनहार गोविंद गुरे आप अपने सेवक कौ सदा प्रतपार है पग जना के सास निहार है मानस की कहो केतक बात जम ते राखै दे कर हाथ निर्मल शोभा निर्मल दीत पार ब्रह्म आया मन चीत कर कृपा गुरदीनो दान नानक पाया नाम निदान भैरव महला पंजवां करण कारण समर्थ गुर मेरा जी प्राण सुखदाता नेरा पै पंजन अबनासी राय दर्शन देखे सब दुख जाए जत कत पेखो तेरी सरना बल बल जाई सतगुर चरना रहाओ पूर्ण काम मिले गुरदेव सफल दाता निर्मल सेव कर गहलीने अपने दास राम नाम रिद्धियो निवास सदा आनंद नाही के सोग दुख दर्द न व्यापै रोग सब किश तेरा तू करने हार पार ब्रह्म गुर अगम अपार निर्मल सोभा अचरज बाणी पार ब्रह्म पूर्ण मन पाणी जल थल महियल रविया सोए नानक सब किश प्रभ ते होए पैरव महला पंजवा मन तन राता राम रंग चरने सर्ब मनोरथ पूर्ण करने आठ पहर गावत भगवंत सतगुर दीनो पूरा मंत सो वड भागी जिस नाम प्यार तिसके संग तरह संसार रहाओ सोई ज्ञानी जे सिमरै एक सो तनवंता जिस बुद्ध बबेक सो कुलवंता जे सिमरै स्वामी सो पतवंता जे आप पिछानी गुर प्रसाद परम पद पाया गुण गोपाल दिन रहन ते आया टूटे बंधन पूर्ण आसा हर के चरण रिदमाहे निवासा कहो नानक जाके पूर्ण कर्मा सो जना आया प्रभ की सरना आप पवित्र पावन सब कीने राम रसायन रसना चीने भैरो महला पंजवा नाम लै तो किश बिग ना लागे नाम सुन तो जम दूरों भागे नाम लै तो सब दुख है नास नाम जप तो हर चरण निवास निर्विघ्न भगत पज हर हर नाओ रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ हर सिमरत किस चाख ना जो है हर सिमरत दैत देव ना पुहै हर सिमरत मोह मान ना बदै हर सिमरत गर्भ जो ना रुदै हर सिमरन की सगली बेला हर सिमरन बहु माया अकेला जात अजात जपै जन कोए जो जापै तिसकी गत होए हर का नाम जपिए साध संग हर के नाम का पूर्ण रंग नानक कहो प्रभ कृपा तार सा सा सर देहो चितार पैरो महला पंजवा आपे सास्ते आपे बेद आपे कटकट जाने भेद ज्योत स्वरूप जाकी सब वथ करण कारण पूर्ण समरथ प्रभ की ओट गहो मन मेरे चरण कमल गुरमुख आराधो दुश्मन दुख न आवै नेरे रहाओ आपे वन त्रिण त्र पवन सार जाकै सूत परोया संसार आपे शिव शक्ति संजोगी आप निर्वाणी आपे भोगी जत कत पेखो तत तत सोए तिस बिंदूजा नाही कोए सागर तरिय नाम कै रंग गुण गावै नानक साध संग
ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਵਸ ਜਾਂ ਕੈ ਊਣਾ ਨਾਹੀ ਕਿਸ ਜਨਤਾ ਕੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਹੋਏ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਹੀ ਜਨ ਧਨ ਪਹਿਰਾਉ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਗਤਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਅਸਥਿਤ ਭਏ ਬਿਨਸੀ ਸਭ ਚਿੰਦ ਭੈ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਨਸ ਗਏ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸੰਤ ਸਦਾ ਸਹਾਏ ਘਰ ਬਾਹਰ ਨਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਵ ਰਹਿਆ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਏ ਰਹਾਓ ਧਨ ਮਾਲ ਜੋਬਨ ਜੁਗਤ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਤ ਸੁਖ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕਉ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਾਥ ਨਿਮਖ ਨਾ ਛੋੜੈ ਸਦ ਹੀ ਸਾਥ ਹਰ ਸਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਸਰ ਸਮਾਲੇ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤਬੰਧ ਨਾਰਾਇਣ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਾਇਣ ਤਿਸ ਕੀ ਧਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਮਨ ਜੋਰ ਏਕ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨ ਇਹੋ ਪੁਰਖਾਰਥ ਪ੍ਰਭੂ ਹਮਾਰਾ ਸਾਰੇ ਸਵਾਰਥ ਪਹਿਰਾਉ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭੈ ਕਉ ਭਉ ਪੜਿਆ ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਸਗਲ ਵਿਆਦ ਮਿਟੀ ਤ੍ਰਿਹ ਗੁਣ ਕੀ ਦਾਸ ਕੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ਰਹਾਓ ਹਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਤਿਨਕੋ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰਨ ਧਾਮ ਜਨ ਕਾ ਦਰਸ ਬਾਂਛੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਹੋਏ ਪੁਨੀਤ ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਾਮ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮਦ ਨਿੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਐਸੇ ਸੰਤ ਭੇਟੈ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੈ ਸਤ ਕੁਰਬਾਨ

नाव मेरे बंधप नाव मेरे भाई, नाव मेरे संग अंत होए सखाई। माया मैं जिस रखे उदास, कह कबीर हाँ ता को दास। नंगे आवन नंगे जाना, कोई न रह है राजा राना। राम राजा नौनद मेरे, संपै हेत कला तो तन तेरा रहाओ। आवत संग न जा संगाती, कहां पयो दर बांधे हाथी। लंका गढ़ सोने का पया, मूर्ख रावण क्या ले गया। कहे कबीर किश गुण बीचार, चले दुवारी चले जुआरी दो हथ चार। मैला ब्रह्मा मैला इंद, रव मैला मैला है चंद। मैला मलता है संसार, एक हर निर्मल जा कांत ना पार। रहाओ मैले ब्रह्मंडा एक ईस, मैले निस्बा सिर जंतीस। मैला मोती मैला हीर, मैला पौन पाव क्यार नीर। मैले शिव शंकरा महेश, मैले सिद्ध साध क्यार पेख। मैले जोगी जंगम जटा सहेत, मैली काया हंस समेत। कह कबीर ते जन परवान, निर्मल ते जोरा मैं जान। मन कर मक्का किबला कर देही, बोलनहार परम गुर यही। कहरे मुल्ला बाग निवाज, एक मसीत दसै दरवाज। रहाओ मिसमिल तामस परम कदूरी, पाखले पंचै हुए सबूरी। हिंदू तुर्क का साहिब एक, कह करे मुल्ला कह करे शेख। कह कबीर हाँ पया दीवाना, मुस मुस मनुमा सही समाना। गंगा कै संग सलता बिगरी, सो सलता गंगा हुई निबरी। बिगरियो कबीरा राम दुहाई, साच पायो अन कत न जाई। रहाओ चंदन कै संग तरवर बिगरियो, सो तरवर चंदन हुए निबरियो। पारस कै संग तांबा बिगरियो, सो तांबा कंचन हुए निबरियो। संतन संग कबीरा बिगरियो, सो कबीर रामे हुए निबरियो। माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। जौ हौ बौरा तौ राम तोरा, लोग मरम कह जाने मोरा। रहाओ तोरो ना पाती पूजो ना देवा, राम भगत बिन्ने फल सेवा। सदगुर पूजो सदा सदा मनावो, ऐसी सेव दरगह सुख पावो। लोग कहे कबीर बौराना, कबीर का मर्म राम पहचाना। उल्ट जात कुल दो बिसारी, सुन सहज में बुंत हमारी। हमरा झगड़ा रहा ना को, पंडित मुल्ला छाडे दो। रहाओ बुन बुन आप वा पैरावो, जै नहीं आप तहां होए गावो। पंडित मुल्ला जो लिख दिया, छाड़ चले हम किशु ना लिया। हृदय इखलास निरखले मीरा, आप खोज खोज मिले कबीरा। निरतन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे ओ चेतना तरे। रहाओ जाओ निरतन सरतन कह जाए, आगे बैठा पीठ फिराए। जो सरदन निर्दन कह जाए, दिया यादर लिया बुलाए। निर्दन सरदन दोनों पाई, प्रभ की कला न मिटी जाई। कह कबीर निर्दन है सोई, जाके हृदय नाम ना होई। गुर सेवा ते भगत कमाई, ताबे मानस देही पाई। इस देही को सिमरै देव, सो देही पज हर की सेव। पजो गोबिंद पूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। रहाओ जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया। जब लग बिकल पई नहीं बानी, भजले रेह मन सारंग पानी। आब ना भजस भजस का उपाई, आवै अंत ना भजया जाई। जो किश करे सोई अवसार, फिर पछताओ ना पावो पार। सो सेवक जो लाया सेव, तिन ही पाए निरंजन देव। गुरमिल ताके खुले कपाट, बहुर ना आवे जोनी बाट। इही तेरा अवसर एह तेरी बार, कट पीतर तू देख बिचार। कहत कबीर जीत कह हार, बहुबिद कहो पुकार पुकार। शिव की पुरी बसै बुध सार, तह तुम मिलके करो विचार। ईतूत की सोजी पर, कौन कर्म मेरा कर कर मरै। निज पद

सो सुल्तान जो दोए सर तन है, बाहर जाता पीतर यान है, गगन मंडल में लश्कर करे, सो सुल्तान शत्र सर तरे, जोगी गोरख गोरख करे, हिंदू राम नाम उचरे, मुसलमान का एक खुदा है, कबीर का स्वामी रया सुमाए। महल्ला पंजवा, जो पाथर को कहते देव ताकि बिरथा हो वैसे, जो पाथर की पाई पाए तिसकी काला जाई जाए। ठाकर हमरा सदबोलंता, सर्ब जिया को प्रभ दान देता रहा, अंतर देव न जन अंध, भ्रम का मोहया पावे फंद, ना पाथर बोले ना किश दे, फोकट कर्म ने फल है सेव, जे मृतक कहो चंदन चढ़ावे उसते कहो कवन फल पावे, जे मृतक कहो बिष्टा माहे रुलाई ता मृतक का क्या कट जाई। कहत कबीर हाँ कहो पुकार, समय देख सकत गावार, दूजे पाए बहुत कर गाले, राम भगत है सदा सुखाले, जल में मीन माया के बेदे, दीपक पतंग माया के शेदे, काम माया कुंचर को व्यापे, भयंगम प्रेंग माया में खापे, माया ऐसी मोनी पाई, जेते जीते ते डेकाई। रहाओ पंखी मृग माया में राते, साकर माखी अधिक संतापे, तुरे उष्ट माया में पेला, सिद्ध चौरासी माया में खेला, छे जति माया के बंदा, नवे नाथ सूरजर चंदा, तपे रखीसर माया मैं सूता, माया मैं काल यार पंच दूता, स्वान स्याल माया मैं राता, बंतर जीते अर सिंघाता, मांजार गाडर अर लुबरा, बिरख मूल माया मैं परा, माया अंतर पीने देव, सागर इंद्रा यार तार तेव। कहे कबीर जैसे उधर तिस माया, तब छूटे जब साधु पाया, जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं सरे, जब मेरी मेरी मिट जाए तब प्रभ काज सवार आए, ऐसा ज्ञान विचार मना, हर कीना सिमरो दुख भंजना रहाओ। जब लग सिंह रह बन माहे, तब लग बन फूल ही नाहे, जब ही स्यार सिंह को खाए फूल रही सगली बन राय, जीतो बूढ़े हार उतरे गुर प्रसादी पार उतरे, दास कबीर कह समझाए केवल राम रहो लिवलाए, सत्र सह सलाह रह जाके सवा लाख पै कंबरता के, सेख जो कही है कोट अठासी छप्पन कोट जाके खेल खासी, मो गरीब की को गुजरावे मजरस दूर मैल को पावे रहाओ, तेतीस करोड़ी है खेल खाना चौरासी लख फिर दीवाना, बाबा आदम कहो किशन दर दिखाई उन पी पिस्त कनेरी पाई, दिल खल हल जाके जर्द रूबानी छोड़क तेब करे सैतानी, दुनिया दोस रोस है लोई अपना किया पावे सोई, तुम दाते हम सदा पिखारी देव जवाब होए बजगारी, दास कबीर तेरी पने समाना पेस्तन जीक राख रह माना, सब कोई चलन कहत है उहां ना जानो बैकुंठ है कहां रहाओ, आप आपका मर्म ना जाना बात नहीं बैकुंठ बखाना, जब लग मान बैकुंठ की आस तब लग नाही चरण निवास, खाई कोट ना परलप गारा ना जानो बैकुंठ द्वारा, कह कमीर अब कहिए काहे साध संगत बैकुंठ आहे, क्यों लीजे गढ़बंका पाई दोवर कोटियार तेवर खाई रहाओ, पांच पचीस मोह मद मत सर आडी प्रबल माया, जन गरीब को जोर न पहुंचे कहां करो रगराया, काम केवारी दुख सुख दरवानी पापुन दरवाजा, क्रोध प्रधान महा बड़ दुंदर तै मनमावासी राजा, स्वाद सनाहा टोप ममता को कबुद कमान चढ़ाई, तसना तीर रहे गढ़ पीतर इं गढ़ लियो न जाई, प्रेम पलीता सुरत हवाई गोला ज्ञान चलाया, ब्रह्म यगन सहजे परजाली एक चोट सजाया,
सत संतोख लै लरने लागा।

कहे कबीर को संग ना साथ, जल थल रखन है रघुनाथ। पहराओ कबीर जी अष्टपति कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आगम द्रुगम गढ़ रचियो बास, जामै जोत करे प्रगास। बिजली चमकै होय आनंद, जे पौड़े प्रभ बाल गोबिंद। एहो जियो राम नाम लिव लागै, जरा मरण छूटै परम भागै। रहाओ अबरन बरन स्यो मन ही प्रीत, हमै गावन गावै गीत। अनहद शब्द होत चुनकार, जे पौड़े प्रभ श्री गोपाल। खंडल मंडल मंडल मंडा, त्रया शांति त्रे खंडा। आगमै गोचर रहया अभयंत, पार ना पावै को तरनी तरमंत। कदली पोहप तू प्रगास, राज पंकज मै लियो निवास। द्वादश दल अभयंतर मंत, जय पौड़े श्री कमलाकंत। अर्ध उर्ध मुख लागो कास, सुन मंडल मै कर प्रगास। उहा सूरज नाही चंद, आद निरंजन करे आनंद। सो ब्रह्मांड पिंड सो जान, मान सरोवर कर स्नान। सो हंसो जा को है जाप, जा को लिप्त न होए पुण्य अर पाप। अबरन बरन काम नहीं शाम, अवर न पाइये गुर की साम। तारी न टर आवे न जाए, सुन सज मेरे उसमाए। मन मध्ये जाने जे कोए, जो बोले सो आपे होए। जोत मंत्र मन असर करे, कह कबीर सो प्राणी तरे। कोट सूर जा कै प्रगास, कोट महादेव अर कबलास। दुर्गा कोट जा कै मर्दन करे, ब्रह्मा कोट वेद उचरे। जो जाचो तो केवल राम, आन देव स्यो नाही काम। रहाओ कोट चंद्र में करे चिराक, सुरत पीसो जे वै पाक। नाम ग्रह कोट ठांडे दरबार, धर्म कोट जा कै प्रतहार। कवन पवन कोट चौ बारे फिरे, बास कोट सेज बिस्थर। समुंद कोट जा कै पानी हार, रुमावल कोट अठारह पार। कोट कमेर पर है पंडार, कोट क लक्ष्मी करे सिंगार। कोट क पापन बहरे, इंद्र कोट जाके सेवा करे। छप्पन कोट जाके प्रतहार, नगरी नगरी ख्यात्या पार। लट छुट्टी वरते बिकराल।

नाम असंख कोटियन पूजा करी, एक ना पूजस नामे हरि। प्रणवै नाम दे हो करना, अनंत रूप तेरे नारायणा। पर तन पर दारा पर हरि, ताके निकट बसै नर हरि। जो ना भजंते नारायणा, तिनका मैं ना करो दर्शना। रहाओ जिनके पितर है अंतरा, जैसे पस तैसे होए नरा। प्रणवत नाम दे हो ना कै बिना, ना सो है बत्तीस लखना। दूध कटोरे गड़वै पानी, कपल गाए नामै दुहयानी। दूध पियो गोबिंदे राए, दूध पियो मेरो मन पति आए। नाही ता कर को बाप रसाए, रहाओ सोयन कटोरी अमृत भरी। लैना मैं हरिया गै तरी, एक भगत मेरा हृदय बसै। ना मैं देख नारायण हसै, दूध पी आए भगत गर गया। ना मैं हर का दर्शन भया, मैं बौरी मेरा राम पतार।

अंतर्यामी प्रभ दयाल, अपने दास को नजर निहाल, कर कृपा मोह देहो दान, जप जीवे नानक तेरो नाम। बसंत महला पंजवां, राम रंग सब गए पाप, राम जप तो कछ नहीं संताप, गोविंद जप तो समटे अंधेर, हर सिमर तो कछ नाए फेर। बसंत हमारे राम रंग, संत जना स्यों सदा संग रहाओ, संत जनी किया उपदेश, जय गोविंद भगत सो धन देस। हर भगत

सोई तुझे पछाण है, तेरिया भगता कौ बलिहारा, थान सुहावा सदा प्रभ तेरा, रंग तेरे अपारा रहाओ, तेरी सेवा तुझते होवे और ना दूजा करता, भगत तेरा सोई तुद पावे, जिसनों तू रंग तरता, तू वडदाता तू वडदाना और नहीं को दूजा, तू समरथ स्वामी मेरा हो क्या जाना तेरी पूजा, तेरा महला गोचर मेरे प्यारे, बिखम तेरा है पाना, कहो नानक टह पया द्वारा, रख ले वो मुगद्या जाना, बसंत हिंडोल महला पंजवा, मूल ना बुझे अपना सूजे, भरम व्यापी अहमनी, पिता पार ब्रह्म प्रभ धनी, मोहे निस्तारो निर्गुणी रहाओ, उपत परलो प्रभ ते होवे ए बिचारी हर जनी, नाम प्रभु के जो रंग राते, कल मैं सुखिए से गनी, आवरियो पाओ ना को सूजे, नानक तरिये गुरबचनी, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, राग बसंत हिंडोल महला नावा, साधो एहो तन मिथ्या जानो, या पितर जो राम बस्त है, साचो ताहे पछानो रहाओ, एहो जग है संपत सुपने की, देह का ऐडानो, संग तिहार है कछु ना चल है, ताहे कहां लपटानो, उस्तत निंदा दो पर हर, हर कीर्त और अनो, जन नानक सब ही मैं पूर्ण, एक पुरख भगवानो, बसंत महला नावा, पापी ही है मैं काम बसाए, मन चंचल जाते गयो ना जाए, रहाओ जोगी जंगम अर संन्यास, सब ही पर डारिये फास, जेह जे अर को नाम समार, ते पव सागर उतरे पार, जन नानक हर की शरणाए, दीजे नाम रह गुण गाए, बसंत महला नावा, माई मैं तन पायो हर नाम, मन मेरो धामन ते छूटो, कर बैठो विश्राम रहाओ, माया ममता तन ते भागी, उपजो निर्मल ज्ञान, लोभ मोए परसना साकै, गही भगत भगवान, जन्म जन्म का संसार चूकार, तन नाम जप पाया, तृष्णा सकल बिनासी मन ते, नहीं सुख माए समाया, जा कहो दयाल कृपा निध, सो गोविंद गुण गावे, कहो नानक बिद की संपै, को गुरमुख पावे, बसंत महला नावा, मन कहा बिसार्यो राम नाम, तन बिनसै जम स्यों परे काम रहाओ, एहो जग तुए का पहार, तै साचा मानिया के विचार, तन दारा संपत ग्रेह, कह संग ना चल समझ ले, एक भगत नारायण होए संग, कहो नानक भजते एक रंग, बसंत महला नावा, कहां पूले ओरे झूठे लोभ लाग, कश बिगड़ियो नाहन अजहो जाग रहाओ, सम सुपने कहो जग जान, बिन सैशन मैं साची मान, संग तेरे हर बस्त नीत, निस्बासर पाइता है मीत, बार अंत की होए सहाय, कहो नानक गुणता के गाए, बसंत महला पहला, अष्टपदियां कर पहला, दो तुकिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जग कौआ नाम नहीं चीत, नाम बिसार ग्रह देख पीत, मनुआ डोले चीता नीत, जग स्यों टूटी झूठ प्रीत, काम क्रोध बिख बज्र भार, नाम बिना कैसे गुणचार रहाओ, कर बालू का कुमन केर, बरखस बाणी बुध बुदा हेर, मात्र बूंद ते तार चक फेर, सर्ब जोत नामे की चेर, सर्ब उपाय गुरु सिर मोर, भगत करो पगला गौ तोर, नाम रता चाहो तुझे और, नाम दुराए चले सो चोर,
ਪਤ ਖੋਈ ਬਖਿਅੰਚਲ ਪਾਏ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਰਤੋ ਪਾਸਿਓ ਕਰ ਜਾਏ, ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਨਸ ਪ੍ਰਭ ਰਜਾਏ। ਪੈ ਮਾਨੈ ਨਿਰਭਉ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਕਾਮਨ ਚਾਹੈ ਸੁੰਦਰ ਭੋਗ, ਪਾਨ ਫੂਲ ਮਿੱਠੇ ਰਸ ਰੋਗ, ਖੀਲੈ ਬਿਕਸੈ ਤੇ ਤੋ ਸੋਗ, ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤ ਕੀਨਸ ਹੋਗ। ਕਾਪੜ ਪਹਿਰਸ ਅਧਿਕ ਸਿੰਗਾਰ, ਮਾਟੀ ਫੂਲੀ ਰੂਪ ਬੇਕਾਰ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬਾਂਧੋ ਬਾਰ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸੁਨਾ ਘਰ ਬਾਰ। ਗਾਛੋ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਨਾਮ ਭਣੋ ਸੱਚ ਦੋਤ ਸਵਾਰ, ਪ੍ਰਿਉ ਸੇਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੇਮ ਆਧਾਰ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਬਿਖਤਿਆਸ ਨਿਵਾਸ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਬਿਖਤਿਆਸ ਨਿਵਾਰ, ਮੋਹਨ ਮੋਹੇ ਲੀਆ ਮਨ ਮੋਹੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਨਾ ਤੋਹੇ, ਨਾਨਕ ਠਾਂਡੇ ਚਾਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਰ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਨ ਭੁੱਲੋ ਪਰਮਸ ਆਏ ਜਾਏ, ਅਤ ਲੁਬਧ ਲੁਬਾਨੋ ਬਿਖੁਮਾਏ, ਨਏ ਅਸਰ ਦੀ ਸਹਿਕ ਪਾਏ, ਜੋ ਮੀਨ ਕੁੰਡਲੀਆ ਕੰਠ ਪਾਏ, ਮਨ ਭੁੱਲੋ ਸਮਝਸ ਸਾਚ ਨਾਏ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਸਹਿਜ ਪਾਏ। ਰਹਾਓ ਮਨ ਭੁੱਲੋ ਪਰਮਸ ਭਵਰ ਤਾਰ, ਬਿਲ ਬਿਰਥੇ ਚਾਹੈ ਬਹੁ ਬੇਕਾਰ, ਮੈਂਗਲ ਜਿਉ ਫਾਸਸ ਕਾਮਹਾਰ, ਕੜਬੰਧਨ ਬਾਂਧਿਓ ਸੀਸ ਮਾਰ, ਮਨ ਮੁਗਧੋ ਦਾਦਰ ਭਗਤਹੀਨ, ਦਰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਸਰਾਪੀ ਨਾਮ ਬੀਨ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਜਾਤ ਨਾ ਪਾਤੀ ਨਾਮ ਲੀਨ, ਸਭ ਦੁਖ ਸਖਾਈ ਗੁਣ ਹੈ ਬੀਨ, ਮਨ ਚਲੈ ਨਾ ਜਾਈ ਠਾਕ ਰਾਖ, ਬਿਨ ਹਰ ਅਸਰਾਤੇ ਪਤ ਨਾ ਸਾਖ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਸੁਰਤਾ ਆਪ ਰਾਖ, ਧਰ ਧਾਰਨ ਦੇਖੈ ਜਾਣੈ ਆਪ, ਆਪ ਭੁਲਾਏ ਕਿਸ ਕਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰਮੇਲੇ ਬਿਰਥਾ ਕਹੋ ਮਾਏ, ਅਵਗਣ ਛੋਡੋ ਗੁਣ ਕਮਾਏ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਰਾਤਾ ਸੱਚ ਸਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਮਤ ਉਤਮ ਹੋਏ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹਉਮੈ ਕੱਢੈ ਧੋਏ, ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਬੰਧ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ।

सब हुक्मों वरतै हुक्म समाए, दुख सुख सब ते सिर जाए। तू भुल ना भूलो कदे नाहे, गुर शब्द सुनाए माता गाहे। तू मोटो ठाकर शब्द माहे, मन नानक मानिया सच सलाहे। बसंत महला पहला, दर्शन की प्यास जिस नर होए, एक तरह चै पर हर दोए। दूर दर्द माथे अमृत खाए, गुरमुख बूझे एक समाए। तेरे दर्शन को केती बिललाए, विरला को चीनस गुर शब्द मिलाए। रहाओ बेद वखाण कह एक कही है, ओह बेअंत अंत के लही है। एको करता जिन जा किया, बाज कला तर गगन तरिया। एको ज्ञान ध्यान तुन बाणी, एक निराल मवा कथ कहानी। एको शब्द सच्चा निशान, पूरे गुरते जाने जान। एको धर्म दृढ़ सच कोई, गुरमत पूरा जुजुग सोई। अनहद राता एक लिवतार, ओ गुरमुख पावे लख्या पार।

तू सर सागर गुण गहीर, तू अकुल निरंजन निरंजन परमहीर, तू आपे करता करण योग, ने केवल राजना सुखी लोग, नानक त्रापे हर नाम स्वाद, बिन हर गुर प्रीतम जन्म बाद। बसंत हंडोल महला पहला, कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद, नौ सत चौदह तीन चार, कर महल चार बहाली, चारे दीवे चौ हथ दीए एका एका वारी, मेहरवान मधुसूदन माधव, ऐसी संगत तुम्हारी रहाओ, घर कर लश्कर पावक तेरा, धर्म करे सिकदारी, धरती देग मिलै कवेरा, भाग तेरा भंडारी, ना सा बूर होवै फिर मंगै, नारद करे खुआरी, लाभां देरा बंदी खाना, अवगुण पैर लोहारी, पूंजी मार पवै नित मुदगर, पाव करे कोटवारी, पावै चंगा पावै मंदा, जैसी नजर तुम्हारी, आद पुरख को अल्लाह कही है, सेखा आई वारी, देवल देवत्या कर लागा, ऐसी कीर्त चाली, कूंजा बाग निवाज मुसल्ला, नील रूप बनवारी, घर घर मियां सब ना जिया, बोली अवर तुम्हारी, जे तू मीर महीपत साहिब, कुदरत कौन हमारी, चारे कुंट सलाम करेंगे, घर घर सिफत तुम्हारी, तीर्थ सिमरत पुन दान, किश लाहा मिलै दिहाड़ी, नानक नाम मिलै वडियाई, मेका कड़ी संभाली, बसंत हिंडोल कर दूजा महला चौथा, एको अंकार सतगुर प्रसाद, काया नगर एक बालक वसिया, खिन पल थिर ना रहाई, अन क्यो पाव जतन कर थाके, बारंबार परमाई, मेरे ठाकुर बालक इकत कर आन, सतगुर मिलै ता पूरा पाई है, भज राम नाम निशान रहाओ, एहो मृतक मड़ा शरीर है सब जग, जित राम नाम नहीं वसिया, राम नाम गुर उदक चुआया, फिर हरिया हुआ रसिया, मैं निरखत निरखत शरीर सब खोजिया, एक गुरमुख चलत दिखाया, बाहर खोज मोए सब सागत, हर गुरमति कर पाया, दीना दीन दयाल पय है, जो कृष्ण बिद्र कर आया, मिलियो सुदामा भावनी तार, सब किश आगे दालद पंज समाया, राम नाम की पैज वडेरी, मेरे ठाकरे आ परखाई, जे सब सागत करे बखीली, एक रत्ती तिल ना कटाई, जन की उसत है राम नामा, दे दे सोभा पाई, निंदक साकत खब ना सकै तिलो, अपने कर लू की लाई, जन को जन मिल सोभा पावै, गुण में गुण परगासा, मेरे ठाकर के जन प्रीतम प्यारे, जो होवै दासन दासा, आपे जल परंपर करता, आपे मिल मिलावै, नान गुरमुख सहज मिलाए, ज्यों जल जलै समावै, बसंत महला पंजवां, कर पहला दो तुगिया, एको अंकार सतगुर प्रसाद, सुन साखी मन जप प्यार, अजामल उदरिया कहे एक बार, बाल्मीकि होवा साध संग, ध्रुव को मिलिया हर निसंग, तेरिया संतां जाचौ चरण रेन, ले मस्तक लावो कर कृपा देन रहाओ, गुण का उदरी हर कह तोत, गज इंद्र त्यायो हर कियो मोख, बिपर सदामे दालद पंज, रे मन तू पी पज गोबिंद, बदक उदारियो खम परहार, कुबजा उंदरी अंगुष्ट तार, पिदर उदारियो दास्त पाए, रे मन तू पी हर ते आए, प्रहलाद रखी हर पैज आप, बस्तर शीनत द्रौपदी रखी लाज, जिन जिन सेव्यांत बार,
ਰੇ ਮਨ ਸੇਵ ਤੂੰ ਪਰੈ ਪਾਰ, ਧੰਨੈ ਸੇਵਿਆ ਬਾਲ ਬੁੱਧ, ਤਰਲੋਚਨ ਗੁਰਮਿਲ ਪਈ ਸਿੱਧ। ਬੇਣੀ ਕਹੋ ਗੁਰ ਕੀਓ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਪੀ ਹੋਏ ਦਾਸ, ਜੈ ਦੇਵ ਤਿਆਗਿਓ ਅਹੰ ਮੇਵ, ਨਾਈ ਉਦਰਿਓ ਸੈਨ ਸੇਵ। ਮਨ ਡੀਗ ਨਾ ਡੋਲੈ ਕਹੂੰ ਜਾਏ, ਮਨ ਤੂੰ ਪੀ ਤਰਸੈ ਸਰਨ ਪਾਏ, ਜਿਹਾ ਨਗਰੋ ਠਾਕਰ ਕੀਓ ਆਪ, ਸੇ ਤੈ ਲੀਨੇ ਭਗਤ ਰਾਖ। ਤਿਨਕਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ ਕੋਏ, ਇਹ ਵਿਦ ਦੇਖ ਮਨ ਲੱਗਾ ਸੇਵ, ਕਬੀਰ ਧਿਆਇਓ ਏਕ ਰੰਗ, ਨਾਮ ਦੇਵ ਹਰਜੀਓ ਬਸੈ ਸੰਗ। ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਅਨੂਪ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ। ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਅਨਕ ਜਨਮ ਭਰਮੇ ਜੋਨ ਮਾਹੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨ ਨਰਕ ਪਾਹੇ, ਭਗਤ ਬਿਹੂਨਾ ਖੰਡ ਖੰਡ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਜਮ ਦੇਤ ਡੰਡ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਮੀਤ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਸਦਾ ਪ੍ਰੀਤ। ਰਹਾਓ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਆਵਤ ਕਹੂੰ ਕਾਜ, ਤੂੰ ਬਾਦਰ ਸਭ ਮਾਇਆ ਸਾਜ।

काम क्रोध मन वस किया, सुपने नाम ना हर लिया। कभी राजा कब मंगनहार, दुख सुख बंधो संसार। मन उदरण का साजना है, पाप बंधन नित पौत जाहे। ईठ मीत को सखा ना है, आप बीज आपे ही खाहे। जा कह कीने होत बेकार, से छोड़ चलिया खिन मैं गावार। माया मोहे बहु परमया, किरत रेख कर करमया। कर्ण हारा लिपत आप, नहीं लेप प्रपुन पाप। राख लेहो गोबिंद दयाल, तेरी शरण पूर्ण कृपाल। तुझ बिन दूजा नहीं ठाओ, कर कृपा प्रभ देहो नाओ। तू करता तू करनहार, तू ऊंचा तू बहु अपार। कर कृपा लड़ ले हो लाए, नानक दास प्रभ की शरणाए। बसंत की वार महल पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर का नाम ते आए कै, हो हरिया पाई। कर्म लिखन तै पाई है, एहरुत सुहाई। वन त्रैण त्र पौन मौलिया, अमृत फल पाई। मिल साधु सुखी उपजै, लथी सब शाई। नानक सिमरै एक नाम, फिर बहुना ताई। पंजे बद्दे महाबली, कर सच्चा टोवा। अपने चरण जपायन, विच दै खड़ोवा। रोग सोग सा मिट गए, नित नवा निरोवा। दिन रैण नाम त्याईंदा, फिर पाए ना मोवा। जिस ते उपजिया नानका, सोई फिर होवा। किथों उपजै कह रहै, कै माए समावै। जी जंत सब खसम के, कौन कीमत पावै। कह न त्याय न सुन नित, से भगत सुहावै। अगमा गोचर साहेबो, दूसर लवै ना लावै। सच पूरै गुरु उपदेसिया, नानक सुनावै। बसंत बाणी भगतां की, कबीर जी कर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मौली धरती मौलिया आकाश, कटकट मौलिया आत्म प्रगास। राजा राम मौलिया अंत पाए, जै देखा तै रहा समाए। रहाओ द्वितीया मौले चार वेद, सिमरत मौली स्यो कतेब। शंकर मौल्यो योग त्यान, कबीर को स्वामी सब समान। पंडित जन माते पढ़ पुराण, जोगी माते जोग त्यान। सन्यासी माते हमेव, तपसी माते तब कह पेव। सब मत माते को न जाग, संग ही चोर कर मुसन लाग। रहाओ जागै सुख देओ आर्यकूर, हनुमंत जागै तर लंकूर। शंकर जागे चरण सेव, कल जागे नामा जय देव। जागत सुबत बहु प्रकार, गुरमुख जागे सोई सार। इस देही के अधिक काम, कह कबीर भज राम नाम। जोय खसम है जाया, पूत बाप खेलाया। बिन श्रवणा खीर पिलाया, देखो लोगा कल को पाओ। सुत मुकलाई अपनी माओ। रहाओ पग्गा बिन हुरिया मारता, बदने बिन खिर खिर हासता। निंद्रा बिन नर पैसोवै, बिन बासन खीर बलोवै। बिन असन गऊ लवेरी, पेंडे बिन बाट कनेरी। बिन सतगुर बाट ना पाई, कहो कबीर समझाई। प्रहलाद पठाए पंड साल, संग सखा बहुलिए बाल। मोको कहां पढ़ाव सियाल जाल, मेरी पटिया लिख दे हो श्री गोपाल। नहीं छोड़ रे बाबा राम नाम, मेरो और पढ़ने से नहीं काम। रहाओ संडे मर कह कहो जाए, प्रहलाद बुलाए बेगताए। तू राम कहन की छोड़ बान, तुझ तुरत छिड़ाऊ मेरो कहो मान। मोको कहां सतावो बार बार, प्रभ जल थल गिर किए पहार। एक राम ना छोड़ो गुरहगार, मोको काल जार पावे मार डार। काड़ खड़ग को प्यो रसाए, तुझ रख नहारो मोहे बताए। प्रभ थमते निकसे कै विस्तार, हर नक्ष छेदियो नख बिदार। ओए परम पुरख देवाद देव, भगत हेत नरसिंह पेव। कह कबीर को लखे ना पार, प्रहलाद उधारे अनकबार।
ਇਸ ਤਨ ਮਨ ਮੱਧੇ ਮਦਨ ਚੋਰ, ਜਿਨ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਹਿਰਲੀਨ ਮੋਰ। ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਪ੍ਰਭ ਕਹੋ ਕਾਹੇ, ਕੋ ਨਾ ਬਿਗੂਤੋ ਮੈਂ ਕੋ ਆਹੇ। ਮਾਦਾ ਦਾਰਨ ਦੁਖ ਸਯੋ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੇਰੋ ਚਪਲ ਬੁੱਧ ਸਿਓ ਕਹਾਂ ਬਸਾਏ। ਰਹਾਓ ਸਨਕ ਸਨੰਦਨ ਸਿਵ ਸੁਕਾਦ, ਨਾਭ ਕਮਲ ਜਾਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾਦ। ਕਬ ਜਨ ਜੋਗੀ ਜਟਾ ਤਾਰ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਅਵਸਰ ਚੱਲੇ ਸਾਰ। ਤੂੰ ਅਥਾਹ ਹੋ ਮੋਹੇ ਥਾਹ ਨਾਹੇ, ਪ੍ਰਭ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦੁਖ ਕਹੋ ਕਾਹੇ। ਮੋਰੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖਿਆਥ ਤੀਰ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੁਣ ਰਹੁ ਕਬੀਰ। ਨਾਇਕ ਏਕ ਬਨਜਾਰੇ ਪਾਚ, ਬਰਦ ਪਚੀਸਕ ਸੰਗ ਕਾਚ। ਨਹੋ ਬਹੀਆਂ ਦਸ ਗੁਣ ਆਹੇ, ਕਸਨ ਬਹੱਤਰ ਲਾਗੀ ਤਾਹੇ। ਮੋਹੇ ਐਸੇ ਬਣਜ ਸਿਓ ਨਹੀਂ ਨਕਾਜ, ਜਿਹੇ ਘਟੈ ਮੂਲ ਨਿਤ ਬੜੈ ਬਿਆਜ। ਰਹਾਓ ਸਾਤ ਸੂਤ ਮਿਲ ਬਨ ਯਕੀਨ, ਕਰਮ ਭਾਵਨੀ ਸੰਗ ਲੀਨ। ਤੀਨ ਜਗਾਤੀ ਕਰਤਰਾਰ, ਚਲੋ ਬਨਜਾਰਾ ਹੱਥ ਚਾਰ। ਪੂੰਜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਬਨਜ ਟੂਟ, ਦਹਿ ਦਿਸ ਟਾਂਡੋ ਗਯੋ ਫੂਟ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਮਨ ਸਰਸੀ ਕਾਜ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੋ ਤਾਂ ਭਰਮ ਪਾਜ। ਬਸੰਤ ਹਿੰਡੋਲ ਕਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ।

आया पागे। कहो पंडित सूचा कवन ठाओ, जहां बैस हो भोजन खाओ रहाओ। जेहबा जूठी बोलत जूठा, कर्ण नेत्र सब जूठे। इंद्री की जूठ उतर सनाही, ब्रह्म अग्न के लूठे। अग्न पी जूठी पानी जूठा, जूठी बैस पकाया। जूठी करसी प्रोसन लगा, जूठे ही बैठ खाया। गोबर जूठा चौका जूठा, जूठी दीनी कारा। कह कबीर ते नर सूचे, साची परी बिचारा। रामानंद जी कर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। कत जाइए रे कर लागो रंग, मेरा चेतना चले मन पयो पंग रहाओ। एक दिवस मन पहियो मांग, कह चंदन चोवा बहु सुगंध। पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माहे। जहां जाइए तह जल पखान, तू पूर रहो है सब समान। वेद पुराण सब देखे जोए, उहां तव जाइए जो इहां ना होए। सतगुर मैं बलिहारी तोर, जिन सगर बिकल भ्रम काटे मोर। रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुर का शब्द काटे कोट कर्म। बसंत बाणी नाम देव जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। साहेब संकट वै सेवक पजै, चिरंकाल ना जीवै दो को लज्जै। तेरी भगतना छोड़ो पावै, लोग हसै। चरण कमल मेरा ही अरे बसै रहाओ। जैसे अपने तरह प्राणी मरन मांडै, तैसे संत जना।

सुख का स्यो वर्ण सुनावत अंध बिनोद पेख प्रभ दर्शन मन मंगल गुण गावत रहाओ विषम पई पेख विषमादि पूर रहे कृपावत पियो अमृतो नाम अमोलक ज्यो चाख गुंगा मुस्कावत जैसे पवन बंद कर राखे ओ बूझ ना आवत जावत जाको हृदय प्रगास पयो हर उवा की कही ना जाए कहावत आन्यो पाव जेते किश कहिय तेते सीखे पावत अचिंत लाल ग्रह पीतर प्रगटेयो अगम जैसे परखावत निर्गुण निरंकार अवनाशी तुल्लो तुल्यो ना जावत कहो नानक अजर जिन जरिया तिस ही कहो बनयावत सारंग महला पंजवा बिखई दिन रैन इवही गुदार है गोविंद ना भजै अहं बुद्ध माता जन्म जुवै ज्यों हारै रहाओ नाम अमोला प्रीत ना तेस्यों पर निंदा हितकार है छापर बांध सवारै तरण को द्वारै पाप गजारै कालर पोट उठावै मुंडै अमृत मंते डारै ओडै बस्त्र काजर मैं परया बहुर बहुर फिर चारै काटै पेड़ डाल पर ठंडो खाए खाए मुस्कारै गिरो जाए रसातल परयो छिटी छिटी सिर पारै निर्वैरै संग वैर रचाए पहुंच न सकै गवारै कहो नानक संतन का राखा पार ब्रह्म निरंकार है सारंग महला पंजवा अवर सब भूले भ्रमत ना जानिया एक सुधाखर जाकै हृदय वसिया तिन बेदै तत् पछानिया रहाओ परविरत मार्ग जेता किश होई है तेता लोक पिचारा जौ लौ हृदय नहीं प्रगासा तौ लोवंद अंधारा जैसे धरती साधै बहु बिद बिन बीजै नहीं जामै राम नाम बिन मुक्त ना हुई है तुटै नाही अभिमानै नीर बिलोवै अत श्रम पावै नैनू कैसे रीसै बिन गुर भेटे मुक्त ना काहू मिलत नहीं जगदीसै खोजत खोजत है बिचार्यो सर्व सुखा हर नामा कहो नानक तिस भयो प्राप्त जाके लेख मथामा सारंग महला पंजवा अन दिन राम के गुण कहिए सगल पदार्थ सर्व सुख सिद्ध मन बांशत फल लहिए रहाओ आवो संत प्राण सुखदाते सिमरै प्रभ अबनासी अनाथ नाथ दीन दुख पंजन पूर रहो कटवासी गावत सुनत सुनावत सरदा हर रस पी वड भागे कल कलेश मिटे सब तंते राम नाम लिव जागे काम क्रोध झूठ तज निंदा हर सिमरन बंधन टूटे मोह मगन अहं अंध ममता गुर कृपा ते छूटे तू समर्थ पार ब्रह्म स्वामी कर कृपा जन तेरा पूर रहो सर्व मैं ठाकर नानक सो प्रभ नेरा सारंग महला पंजवा बलिहारी गुरदेव चरण जाके संग पार ब्रह्म त्याई है उपदेश हमारी गत करन रहाओ दुख रोग पै सगल बिनासे जो आवे हर संत सरण आप जपै अवरै नाम जपावै वड़ समर्थ तारन तरन जा को मंत्र उतारै सहसा ऊने को सुभर भरन हर दासन की आग्या मानत ते नाही फुन गर्भ परन भगतन की टहल कमावत गावत दुख काटे ताके जन्म वरण जाको भयो कृपाल बीठला तिन हर हर अजर जरन हर रसै अगाने सह समाने मुक्ते नाही जात बरन गुरप्रसाद नानक संतोखे नाम प्रभु जप जप उदरन सारंग महला पंजवा गायो री मैं गुणित मंगल गायो भले संजोग भले दिन अवसर जौ गोपाल रिजायो रहाओ संतै चरण मोर लो माथा हमरे मस्तक संत तरे हाथा साधै मंत्र मोर लो मनुआ ताते गत होए त्रै गुनिया भगतै दर्स देख नै नरंगा लोभ मोह टूटे भ्रम संगा कहो नानक सुख सहज आनंदा खोल पीत मिले परमानंदा सारंग महला पंजवा कर दूजा एको ओंकार सतगुर प्रसाद कैसे कहो मोहे जी बेदनाई दर्शन प्यास प्रे प्रीत मनोहर मन ना रह बहुबिद उमकाई रहाओ
ਚਿਤਵਨ ਚਿਤਵਾ ਉਪਰੇ।

ना पीजै तीर्थ भवै नंग, ना पीजै दाती कीते पुन, ना पीजै बाहर बैठिया सुन, ना पीजै पेड़ मरे पेड़ सूर, ना पीजै केते होवे धूड़, लेखा लिखिया मन कै पाए, नानक पीजै साचै नाए। महला पहला नाम से खटका करे बिचार, निस दिन उचरे पार अठार, तिन पियंत ना पाया तो हे, नाम बिहून मुक्त क्यों होए। नाभ वस्त ब्रह्म अंत न जानिया, गुरमुख नानक नाम पछाणिया। पौड़ी आपे आप निरंजना, जिने आप पाया आपे खिलर चायो, न सब जगत सवाया। त्रै गुण आप सिरजन, माया मोह वधाया, गुर प्रसादी उबरे जन भाणा पाया। नानक सच वरतदा सब सच समाया, श्लोक महला दूजा। आपो पाए नानका, आपे रखै वेक, मंदा किसनो वाखिया, जा सबना साहिब एक। सबना साहिब एक है, वेखै तंदै लाए, किसै थोड़ा किसै अगला, खाली कोई नाहे। आवै नंगे जाहे नंगे, विचे करै विथार, नानक हुक्म न जानिए अगै काई कार। महला पहला जिनस थाप जिया को भेजै, जिनस थाप लै जावै, आपे थापो थापै आपे, एते विस्करावै। जेते जी फिर औदूती, आपे पिख्या पावै, लेखै बोलण लेखै चलण, काय तो कीचै दावे, मूल मत प्रवाणा ए हो, नानक आख सुनाए। करनी उपर होए तपावस, जे को कहे कहाए। पौड़ी गुरमुख चलतर चायोन, गुण प्रगटी आया, गुरबाणी सद उचरै हर मन वसाया। सगत गई प्रम कटिया, शिव जो जगाया, जिनकै पोतै पुन है गुरपुरख मिलाया। नानक सहजे मिल रहे हर नाम समाया, श्लोक महला दूजा। साह चले वन जा रहा, लिखिया देवै नाल, लिखे उपर हुक्म होए लइए वस समाल। वस लई वन जा रही, वखर बद्दा पाए, केई लाह लै चले चले मूल गवाए। थोड़ा किने ना मंगियो, किस कही ऐसा बास, नजर तिना कहो नानका, जे सबत लाए रास। महला पहला जोड़ जोड़ विछड़े, विछड़ जुड़े, जी

जैसा करै कहावै तैसा, ऐसी बनी जरूरत। होवै लिंग चिंग न होवै, ऐसी कही है सूरत। जो उस इच्छे सो फल पाए, ता नानक कही है मूर्त पौड़ी। सतगुर अमृत बिरख है, अमृत रस फलिया, जिस प्राप्त सो लहै गुर शब्दी मिलिया। सतगुर कै पाणे जो चलै, हर सेती रलिया, जम काल जोहे न सकई कर चानन बलिया। नानक बख्श में लाया न फिर गर्भ ना गलिया, श्लोक महला पहला। सच वर्त संतोख तीर्थ, ज्ञान ध्यान इशनान, दया देवता खिमा जप माली, ते मानस प्रधान। जुगत धोती सुरत चौका, तिलक करनी होए पाओ पाओ जुन नानका, विरला ता कोई कोए। महला तीजा, नौमी नेम सच जे करै, काम क्रोध तृष्णा उचरै। दसवीं दसे द्वार जे ठाकै, एकादशी एक कर जाणै। द्वादशी पंच वसगत कर राखै, तौ नानक मन मानै। ऐसा वर्त रही जय पांडे, होर बहुत सिख क्या दीजै। पौड़ी भुगत राजे रंग राय, संचय विखमाया, कर कर हेत वधाए दे पर दर्प चुराया। पुत्र कलत्र नाम विस है, बहुप्रीत लगाया, वेखद्या ही माया तुहे गई, पछतै पछताया। जम दर बदे मारिए नानक हर पाया, श्लोक महला पहला। ज्ञान में हूणा गावै गीत, भुखे मुला करे मसीत। मखटू होए कै कन पढ़ाए, फकर करे होर जात गवाए। गुरपीर सदाए मंगन जाए, ता कै मूल न लगिए पाए। काल खाए किश हथों दे, नानक राहो।

तिस जन को करह सब नमस्कार। नानक अंदर नाम ते आए तू अंतर जित पावे मुख द्वार। महला तीजा माया मोहे विसारिया सच मरना हर नाम। तंदा करत्या जन्म गया अंदर दुख सहाम। नानक सतगुर सेव सुख पाया जन पूर्व लिखिया कराम। पौड़ी लेखा पढ़िए हर नाम फिर लेखना होई। पुछ न सकै कोई हर दर सद ढोई। जम काल मिला दे भेट सेवक नित होई। पूरे गुरते महल पाया पत प्रगट लोई। नानक अनहद तुनी दर वज दे मिलया हर सोई।

काम ना बिसरियो, क्रोध ना बिसरियो, लोभ ना छूटियो देवा, पर निंदा मुक्ते नहीं छूटी, निफल पई सब सेवा। बाट पार कर मूस बिरानो, पेट भरे अपराधी, जेह पर लोग जाए अपकीर्त, सोई अविद्या साधी। हिंसा तो मनते नहीं छूटी, जी दया नहीं पाली, परमानंद साध संगत मिल, कथा पुनीत ना चाली। शाड मानो हर बिमुखन को संग, सारंग महला पंजवां, सूरदास एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर के संग बसे हर लोक, तन मन अर्प सर्बस सब अर्पयो, आनंद सहज धुन चोक रहाओ, दर्शन पेख पय निर्भखई, पाए है सगले थोक, आन बस्त स्यों काज ना कछु है, सुंदर बदन्या लोक। श्याम सुंदर तज आन जो चाहत, जो कुष्टी तन जोक, सूरदास मन प्रभ हथ लीनो, दीनो इहो परलोक। सारंग कबीर जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर बिन कौन सहाई मन का, मात पिता भाई सुत बंता, हित लागो सब फन का रहाओ, आगे कहो किस तुल्हा बंद हो, क्या परवासा तन का, कहां बिसासा इस भांडे का, इतनक लागे ठनका। सगल धर्म पुन फल पावहो, तूर बांछो सब जन का, कह कबीर सुनोरे संतो, एहो मन उडन पंखे रू बन का। राग मलार चौप दे महला पहला, कर पहला एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भउ निर्वैर, अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद। खाना पीना हसना सौना, विसर गया है मरना, खसम विसार खुवारी कीनी, त्रिग जीवन नहीं रहना। प्राणी एको नाम ते आवो, अपनी पासेती कर जावो रहाओ, तुदनो सेव है तुझ क्या देव है, मांगे ले वह रह नहीं। तू दाता जिया सबना का, जिया अंदर जियो तुही, गुरमुख त्यावै से मृत पावै, से ही सुचे हो ही, अहनिस नाम जपोरे प्राणी, मैले हच्छे हो ही। जेही रुत काया सुख तेहा, तेहो जेही देही, नानक रुत सुहावी साई, बिन नाम है रुत के ही। मलार महला पहला, करो बिनो गुरे अपने प्रीतम, हर वर आण मिलावै, सुन कन कोर शीतल मन मोरा, लाल रती गुण गावै। बरस घना मेरा मन पीना, अमृत बूंद सुहानी ही आरै, गुरमोही मन हर सलीना रहाओ। सहज सुखी वर कामन प्यारी, जिस गुर बचनी मन मानिया, हर वर नार भई सुहागण, मन तन प्रेम सुखानिया। अवगण त्याग भई बैरागण, आस्तर वर सोहाग हरी, सोग विजोग तिस कदे ना व्यापै, हर प्रभे अपनी कृपा करी। आवन जान नहीं मन निर्मल, आवन जान नहीं मन निचल, पूरे गुर की ओट गही, नानक राम नाम जप गुरमुख, तन सुहागण सच सही। मलार महला पहला, साची सुरत नाम नहीं तृप्ते, हों मैं करत गवाया, पर तन पर नारी रत निंदा, बिख खाई दुख पाया, शब्द चीन पै कपट ना छूटे, मन मुख माया माया। अजगर पार लदे अत भारी, मर जन्म जन्म गवाया, मन पावै शब्द सुहाया। भ्रम भ्रम जोन पेख बहु कीने, गुर राखे सच पाया रहाओ। तीर्थ तेज निवार ना नाते, हर का नाम ना पाया, रतन पदार्थ पर हर त्याग गया, जत को तत ही आया। बिष्टा कीट पय उतही ते, उतही महे समाया, अधक स्वाद रोग अधकाई, बिन गुर सहज नाम पाया। सेवा सुरत रहस गुण गावा, गुरमुख ज्ञान बिचारा, खोजी उपजय बादी बिनसै, हम बल बल गुर करतारा। हम नीच होते हीन मत झूठे, तू शब्द सवारनहारा, आत्म चीन तहा तू तारण, सच तारे तारनहारा। बैस सुथान कहां गुण तेरे, क्या क्या कथों अपारा, अलख न लखिए अगमा जोनी, तू नाथा नाथनहारा। किस पै देख कहो तू कैसा, सब जाचक तू दा तारा, भगतहीन नानक दर देखो, एक नाम मिले उर तारा। मलार महला पहला, जिन तन पिर का साधना जानिया, सा बिलख बदन कुमलानी, पई निरासी कर्म की फासी।
ਬਿਨ ਗੁਰ ਭਰਮ ਭੁਲਾਨੀ ਬਰਸ ਘਨਾ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਘਰ ਆਇਆ ਬਲ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭਿਆਨ ਮਿਲਾਇਆ ਰਹਾਉ ਨਵ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦਾ ਠਾਕਰ ਸਿਉ ਅੰਦਨ ਭਗਤ ਸੁਹਾਵੀ ਮੁਕਤ ਭਏ ਗੁਰਦਰਸ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਜੋ ਭਗਤ ਸੁਭਾਵੀ ਹਮ ਥਾਰੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਜਗ ਤੁਮਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹਉ ਤੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਇਆ ਬਹੁਰ ਨਾ ਪਵਜਲ ਫੇਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿਰਹਰ ਦੇਖ ਵਿਗਾਸੀ ਤਉ ਧਨ ਸਾਜ ਸਿੰਗਾਰੋ ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿਉ ਸੱਚ ਸਾਚੀ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਆਧਾਰੋ ਮੁਕਤ ਭਈ ਬੰਧਨ ਗੁਰ ਖੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਪਤ ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ।

बरसै मेघ सखी कर पा होने आए, मोहे दीन कृपा निध ठाकर नवनिध नाम समाए रहाओ। अनक प्रकार भोजन बहु किए बहु व्यंजन मिष्टाए, करी पागसाल सोच पवित्रा हुण लावो भोग हर राय। दुष्ट बिदारे साजन रहसे एह मंदर कर अपनाए, जौ ग्रह लाल रंगी हो आया तौ मैं सब सुख पाए। संत सवाय ओट गुर पूरे तुर मस्तक लेख लिखाए, जन नानक कंत रंगीला पाया फिर दुख ना लागे आए। मलार महला पंजवा खीरा धार, बारक जब होता बिन खीरा रहन न जाई। सार संभाल माता मुख नीरै तबो तृप्त अगाई। हम बारक पिता प्रभदाता भूलै बारक अनक लख बरिया, अनठौर नाही जय जाता रहाओ। चंचल मत बारक बपरे की सर्प अगन कर मेलै, माता पिता कंठ लाए राखै आनंद सही तब खेलै। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी तिस बारक भूख कैसी, नवनिध नाम निदान ग्रह तेरा मन बांछै सो लैसी। पिता कृपाल आज्ञा है दीनी बारक मुख मांगै सो देना, नानक बारक दर्स प्रभ चाहै मोहे हृदय बसै नित चरना। मलार महला पंजवा सगल विधि जो रिया हर करया, तजो सगल देसा कार्य सगल अरंभ्यो घर का ठाकर का पारोसा। सुनिया बाजै बाज सुहावी भोर भया मैं प्रेम मुख पेखे, गृह मंगल सोहलावी रहाओ। मनुआ लाए सवारे थाना पूछो संतां जाए, खोजत खोजत मैं पाहुन मिलियो भगत करो ने उपाए। जब प्रे आए बसे गृह आसन तब हम मंगल गाया, मीत सजन मेरे पए सुहेले प्रभु पूरा गुरु मिलाया। सखी सहेली पए आनंदा गुर कार्ज हमरे पूरे, कहो नानक वर मिलिया सुखदाता छोड़ ना जाई दूरे। मलार महला पंजवा राज ते कीट कीट ते सुरपत कर दोख जठर कौ भरते, कृपा निध छोड़ आन कौ पूजै आत्म काती हरते। हर बिसरत ते दुख दुख मरते, अनक बार प्रमै बो जोनी टेक न काहू धरते रहाओ। त्याग स्वामी आन कौ बिचर चितवत, मूड मुग्ध खल खरते। कागर नाव लंघै कथ सागर बिरथा कथत हम तरते। शिव बिरंच असुर सुर जेते काल अग्न में जरते, नानक सरन चर